FM 103 MHz पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 मई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 21 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि

0: देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: जैसे अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। समय हो चुका है खेती की बातें कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में यही सुनते हैं विश्व विज्ञान संबंधी सुझाव। आलेख और वाचन स्वर है प्रतिमा वर्मा का।
2: तमाम किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें पशुधन के लिए विश्व विज्ञान संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव की। पशुधन आमतौर पर जीविका अथवा लाभ के लिए पाले जाते हैं। पशुओं को पालना आधुनिक कृषि का एक महत्वपूर्ण भाग भी है। पशुपालन कई सभ्यताओं में किया जाता रहा है। यह कृषि का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। पशुओं के खान पान में थोड़ी सी भी असावधानी पशु के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। गर्मी में उगाया गया ज्वार या इसके काटने के बाद जड़ों से निकली हुई छोटी छोटी फुनगी काफी जहरीली होती है। पशुओं को इसे बिल्कुल ना खिलाएं। खेसारी, शरीफा, अकवन, धतुरा, कनैल की पत्ती या फिर फल चूर्ण रूप से जहरीले होते हैं। कनैल के पौधे के नीचे जमा पानी, जिसमें कनैल की पत्तियां गिरती रहती हैं, काफी जहरीला हो जाता है। पुटुश और थेथर के पौधे खाने से अपने जानवरों, खासकर बकरी और भेड़ों को बचाएं। इसके सेवन से पशु की मृत्यु तक हो सकती है। इसके साथ ही किसान भाइयों, बागवानी में लगे हुए पौधे के कतरन और दूब और अन्य घास, जिसमें अत्यधिक मात्रा में यूरिया या कीटाणुनाशक दवाओं का व्यवहार किया गया हो, खास तौर पर गर्मी के दिनों में जानवरों को बिल्कुल ना खिलाएं। किसान भाइयों, कीटाणुनाशक दवाओं का प्रयोग करते समय सावधानी जरूर बरतें। बची हुई दवाई

0: या फिर शीशी को जमीन के अंदर गाड़ दें। छिड़काव के कम एक सप्ताह के बाद ही खेतों से निकाली गई घास और साग सब्जी मनुष्य और जानवरों के खाने योग्य हो सकती है। जीवाणुनाशक और कीटाणुनाशक दवाओं के व्यवहार के बाद पशुओं से उत्पादित दूध, मांस और मुर्गियों के मांस और अंडे कम से कम 72 घंटे तक मनुष्य के खाने योग्य नहीं रहते हैं। किसान भाइयों, घर में शादी विवाह या अन्य समारोह के बाद बचे हुए जूठन, अन्य सब्जी और मिठाई का शीरा पशुओं को भूलकर भी ना खिलाएं। इससे प्रत्येक वर्ष काफी जानवरों की मृत्यु हो जाती है। पशुओं को चराते समय हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है, तब जाकर हम विषैले पदार्थों के सेवन से अपने पशुओं को रोक सकते हैं। पशुधन या मवेशी को प्रतिदिन ठीक समय पर भरपेट पौष्टिक चारा दाना देना चाहिए। उनकी खुराक में सूखा चारा के साथ हरा चारा, खल्ली दाना और थोड़ा सा नमक शामिल करना जरूरी है। साफ बर्तन में ताजा पानी भरकर मवेशी को आवश्यकता अनुसार पीने का मौका दें। मवेशी का बथान साफ और ऊंची जगह पर बनाएं। घर इस प्रकार बनाएं कि उसमें सूरज की रोशनी और हवा पहुंचने की पूरी गुंजाइश रहे। घर में हर मवेशी के लिए काफी जगह होनी चाहिए। बथान की नियमित सफाई और समय समय पर रोगाणु नाशक दवाएं जैसे फिनाइल या दूसरी दवा के घोल से उसकी धुलाई भी जरूरी है। मवेशियों या दूसरे पशुधन के खिलाने की नाद ऊंची जगह पर गाड़ी जाए। नाद के नीचे कीचड़ ना बनने दें। घर बथान से गोबर और पशु मूत्र जितना जल्दी हो सके खाद के गड्ढे में हटा देने का इंतजाम करें। बथान को प्रतिदिन साफ कर कूड़ा करकट को खाद के गड्ढे में डाल दें। मवेशियों को प्रतिदिन टहलने घूमने का मौका दें। मवेशियों के शरीर की सफाई पर पूरा ध्यान दें। इसके साथ ही उनके साथ प्यार भरा व्यवहार भी करें। जी हाँ किसान भाइयों, इस प्रकार अपने पशुओं के खान पान में विषैली चीजों के प्रयोग से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही इनके साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें, जिससे हमारे पशु स्वस्थ रह सकें। किसान भाइयों, इसके साथ ही कार्यक्रम खेती की बातें से हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें, विश्व विज्ञान संबंधी सुझाव। समय हो चुका है तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस गान का। ये सुनते हैं कड़ी संख्या 145।
2: नंबर 145, 145। एपिसोड नंबर 145, 145।

मंत्रीवर सुमंत्र को अपने महल में आया देख श्री राम ने उन्हें पिता तुल्य आदर सम्मान दिया। सुमंत्र महाराज की आज्ञा सुना उन्हें अपने साथ ले चले। कोप भवन का दृश्य देख श्री राम स्तब्ध रह गए। राजा ऐसी दयनीय हालत में थे मानो वृद्ध अवश गजराज क्रुद्ध सिंघनी के सामने गिरा पड़ा हो। पास क्रोध की साक्षात प्रतिमा सी खड़ी कैकेयी। जीवन में पहली बार श्रीराम ने ऐसा दुख भरा करुण दृश्य देखा।

शांत गंभीर मुद्रा में वे बोले, हे माता, पिताजी के दुख का कारण बताइए ताकि उसके निराकरण का उपाय किया जाए। कैकेयी ने बताया कि राजा के दुख का कारण स्वयं श्री राम के प्रति उनका स्नेह है। वे मुझे दो वरदान देने को वचनबद्ध थे, मुझे जो जचा मैंने मांग लिया। बस वही सुनकर राजा सोच में पड़ गए। एक ओर है पुत्र स्नेह और दूसरी ओर वचन की मर्यादा। यदि तुम सको तो इनकी आज्ञा का पालन करके इनका संताप मिटाओ। कैकेयी ने, जो निष्ठुरता की प्रतिमूर्ति बन गई थी, बड़ी सहजता से ये सब कुछ कह दिया। रघुवंश मणि सारा वृत्तांत सुन मन ही मन मुस्काते हुए बोले, हे माता, वो पुत्र बड़ा बड़भागी होता है जो माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य करता है। पिता की आज्ञा और आपकी सहमति पाकर वन गमन में मेरा कल्याण है। मेरे प्रिय भारत राज्य पाएंगे ये तो मेरा परम सौभाग्य है।

भारत की पावन भूमि पर कई संत महात्मा अवतरित हुए हैं, जिन्होंने धर्म से विमुख सामान्य मनुष्य में अध्यात्म की चेतना जागृत कर उसका नाता ईश्वरीय मार्ग से जोड़ा है। ऐसे ही एक अलौकिक अवतार गुरु नानक देव जी हैं,

कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी का आगमन ऐसे युग में हुआ जो इस देश के इतिहास के सबसे अंधेरे युगों में था। उनका जन्म 1469 में लाहौर से 30 मील दूर दक्षिण पश्चिम में तलवंडी रायभोय नामक स्थान पर हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। बाद में गुरुजी के सम्मान में इस स्थान का नाम नानकाना साहिब रखा गया। श्री गुरु नानक देव संत, कवि और समाज सुधारक थे। धर्म काफी समय से थोथी रस्मों और रीति रिवाजों का नाम बनकर रह गया था। उत्तरी भारत के लिए यह कुशासन और अफरा तफरी का समय था। सामाजिक जीवन में भारी भ्रष्टाचार था और धार्मिक क्षेत्र में द्वेष और कश्मकश का दौर था। न केवल हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में ही, बल्कि बड़े धर्मों के भिन्न भिन्न संप्रदायों के बीच भी। इन कारणों से भिन्न भिन्न संप्रदायों में और भी कट्टरता और बैर विरोध की भावना पैदा हो चुकी थी। उस वक्त समाज की हालत बहुत बदतर थी। ब्राह्मणवाद ने अपना एकाधिकार बना रखा था। उसका परिणाम यह था कि जाति का भेदभाव बहुत अधिक था। निम्न जाति के लोगों को पढ़ना लिखना बिल्कुल वर्जित था। इस ऊंच नीच का गुरु नानक देव जी पर बहुत असर हुआ। वे कहते हैं, ईश्वर की निगाह में सब समान हैं। ऊंच नीच का विरोध करते हुए गुरु नानक देव जी अपनी मुखवाणी जपुजी साहिब में कहते हैं कि नानक उत्तम नीच न कोई, जिसका भावार्थ है कि ईश्वर की निगाह में छोटा बड़ा कोई नहीं है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति किसी को छोटा समझता है तो यह बिल्कुल गलत है। जब व्यक्ति ईश्वर के नाम द्वारा अपना अहंकार दूर कर लेता है, तभी वह ईश्वर की निगाह में सबसे बड़ा है, उसके समान कोई नहीं। नानक देव की वाणी में नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अति नीच, नानक तिन के संगी साथ, वडियां सिउ किया रीस। समाज में समानता का नारा देने के लिए नानक देव ने कहा कि ईश्वर हमारा पिता है और हम सब उसके बच्चे हैं, और पिता की निगाह में छोटा बड़ा कोई नहीं होता। वही हमें पैदा करता है और हमारे पेट भरने के लिए खाना भेजता है। नानक जंत उपाय के संभाले सब नाह, जिन करते कर ना किया चिंता भी करनी ताहर। जब हम एक पिता एकस के हम वारिक बन जाते हैं तो पिता की निगाह में जात पात का सवाल ही पैदा नहीं होता। गुरु नानक जात पात का विरोध करते हैं। उन्होंने समाज को बताया कि मानव जाति तो एक ही है, फिर यह जाति के कारण ऊंच नीच क्यों? गुरु नानक देव ने कहा है कि मनुष्य की जाति न पूछो। जब व्यक्ति ईश्वर की दरगाह में जाएगा तो वहां जाति नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ आपके कर्म ही देखे जाएंगे। गुरु नानक देव ने पितर पूजा, तंत्र मंत्र और छुआछूत की भी आलोचना की। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु नानक साहिब हिंदू और मुसलमानों में एक सेतु के समान हैं। हिंदू उन्हें गुरु एवं मुसलमान उन्हें पीर के रूप में मानते हैं। हमेशा ऊंच नीच और जाति पाति का विरोध करने वाले नानक ने सबको समान समझकर गुरु का लंगर शुरू किया, जो एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करने की प्रथा है। गुरु नानक जी की गुरुवाणी। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पूरक अकाल मूरत अजूनी सैभम, गुरु प्रसाद जप आड़ सच जुगाड़ सच, है भी सच नानक हो से भी सच, सोच सोच न होवे जो सोची लाख वार, छुपे छुपे न होवे जे लाई हर लखता, रोखिया पुख न उतरी जे बनिया पुरिया पार, सहास्या पा लाख वह है ता एक न चले नाल, केवे सच यारा होइए केवे कूड़े टूटते पाल, हुकुम रजाई चलना नानक लिखिए नाल।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन कार्यक्रम, आलेख और वाचन स्वर था अनुपमा तिवारी का। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम आराधना। कलाकार हैं हरिओम।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम आराधना। अब समय हो चुका है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं भेंट वार्ता। युवाओं में बढ़ता काम का तनाव और उपचार, भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर सुरजीत प्रसाद।
1: मित्र नमस्कार। मित्रों, आजकल देखा जा रहा है कि काम के प्रति लोगों में काफी तनाव दिख रहा है। चाहे हमारे युवा साथी नौकरी कर रहे हों, व्यवसायिक जगत में हों, या फिर मल्टीनेशनल कंपनी में वो कार्य कर रहे हैं, उनमें काम के प्रति काफ़ी तनाव है, काम का बहुत ज़्यादा बोझ है, और फिर वो अपने आप को तनाव से घिर जाते हैं, और जब तनाव होता है तो फिर अवसाद से वो घिरने लग जाते हैं। आखिर हमारे युवाओं में इस तरह का तनाव क्यों हो रहा है, क्यों उतने काम के प्रति वो तनाव से घिर जाते हैं, और जब ज़्यादा तनाव होने लगता है तो फिर बहुत सारी बीमारियां भी अंदर आने लगती हैं। तो युवाओं में इतना तनाव क्यों पैदा हो जा रहा है, और इससे बचने का कौन से उपाय है? क्या हमारी जीवन शैली प्रभावित कर रही है, या हमारा खान पान बिगड़ गया है?

0: है या हमारा सोचने के तरीके में परिवर्तन आ गया है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरजीत प्रसाद। डॉक्टर साहब स्वागत है।
1: नमस्कार सर।
0: डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि यत्र तत्र सर्वत्र तनाव व्याप्त है और हमारे युवा साथी भी इससे अछूते नहीं हैं। काम काम काम, दिन भर वो काम के प्रति वो लगे रहते हैं, चाहे सुबह हो या दोपहर हो या शाम, और यह काम उन्हें तनाव बढ़ा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा?
1: युवाओं में आजकल ये देखा गया है कि स्ट्रेस बहुत ही बढ़ रहा है। जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ ये तनाव काफ़ी बढ़ रहा है। उसके कुछ इम्पॉर्टेंट कारण जो हैं, ऐसे तो बहुत कारण होते हैं, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो एक बैलेंस जो होना चाहिए काम और अपने पर्सनल लाइफ का, वो एक नहीं रख पाते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट काम है कि उनको जो काम कर रहे हैं उनको वर्कलोड बहुत मिल रहा है, ज़्यादा वर्कलोड मिल रहा है, समय कम है, वो एक हो सकता है कारण। तीसरा कि एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हैं वो कैसा है। अगर वो बहुत ही, मतलब जिसे कहते हैं कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट हम लोग कहते हैं, अगर टॉक्सिक है तो उसमें उनकी एफिकेसी भी नहीं बढ़ पाती है और काम का लोड वैसा ही है तो फिर अगेन तनाव हो जाती है। उसके अलावा कुछ कुछ है, जैसे लोगों में आजकल के युवाओं में स्पेशली ये देखा गया है कि एक आगे बढ़ने की इच्छा, किसी भी कीमत पे अचीव करने की इच्छा, ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमें समझना होगा कि सब लोग सब कुछ नहीं पा सकते हैं। अपनी लिमिटेशन हमें जाननी होगी, हम एक हद तक ट्राई करें, अगर वो ट्राई करने में कमी ना करें लेकिन इतना भी ट्राई ना करें कि वो हमारा मेंटल हेल्थ उससे हैम्पर हो जाए, तो वो हमें एक पहचानना होगा कि हमारी लिमिटेशन कहाँ तक है, हम कहाँ तक अचीव कर सकते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट कारण हो जाएगा। दिनचर्या बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो भी तनाव है वो हमारे अच्छी दिनचर्या से वो एटलीस्ट 50-60% कम हो सकता है। अच्छी दिनचर्या जैसे अच्छी नींद लेना, नींद लेने पे जो भी आपकी टेंशन या तनाव है वो लगभग 50% आपका कम जाएगा, 50-60%। कुछ हल्का एक्सरसाइज करना, सही खान पान और सही समय पे लेना, ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम रेगुलर उस पालन नियमित रूप से करें तो स्ट्रेस में हमें बहुत कमी रहेगी, और उसके साथ अगर फिर भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आपको है तो आपको फिर किसी पेशेवर से मिलने की ज़रूरत है।
0: क्योंकि काम का बोझ हमारे युवा साथी में इतना है कि वो दिन रात काम में लगे रहते हैं और सोने उठने बैठने जागने के तरीके में काफ़ी बदलाव आ गया है और खान पान हमारा बिगड़ गया है, और इसके साथ साथ नशे की प्रवृत्ति भी बहुत बढ़ गई है, और ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर को खोखला करता जा रहा है। क्योंकि युवा साथी हमारे देश के भावी कर्णधार हैं, और जब युवा इस तरह के गर्त में जाएंगे तो फिर देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। तो युवा साथी कैसे अपने आप को व्यवस्थित करें? काम तो हमेशा लगा रहेगा, और ज़्यादा काम ज़्यादा पैसा, मंजिल पे जाना, यदि हम सपना ज़्यादा देखते हैं और जब भी हमारे सपने साकार नहीं होते हैं तो फिर हम अपने आप को कमज़ोर और असहाय महसूस करने लगते हैं।
1: युवा साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि जैसा मैंने बताया कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको वो प्रायोरिटाइज करना होगा कि कितना काम करना है और कितना मुझे अपने लाइफ को जीना है, क्योंकि एक सर्टेन समय के बाद आप फैमिली में फिर आइएगा, वाइफ बच्चे होंगे, उस समय फिर ये चीज़ें बहुत ही मैटर करेगी। तो अगर शुरू से ही वो इस चीज़ को बना के चले कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे रखना है, तो वो बहुत उनके लिए लाभदायक है। फॉर एग्जांपल, जैसे काम ठीक है, बहुत वर्कलोड है, दैट इज़ ओके, बट वो वर्कलोड आप घर लेके ना जाएं, बिस्तर पे सोने समय वो वर्कलोड ना ले जाएं, आप ऑफिस छोड़े, बस वर्कलोड वहीं पे छोड़िए, फिर अगले दिन ऑफिस आइए, फिर उसको स्टार्ट कीजिए। दूसरी चीज़ होता है स्मार्ट वर्क करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई एक काम 5 मिनट में कर सकता है, कोई वही काम को करने में 2 घंटे लगाता है, तो हम कैसे स्मार्टली, कैसे कम टाइम में उसको कर पाएँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज़ हम लोग कहते हैं नो कहना, नो मतलब असर्टिवनेस ट्रेनिंग कहते हैं हम लोग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ में नो कहना, सही समय पे किस रूप में नो कहें। फॉर एग्जांपल, आपको बहुत वर्कलोड आपके बॉस दिए जा रहे हैं आपको, तो आपको ना कहना आना पड़ेगा, उनको समझाना होगा, उनको बताना होगा किसी भी तरीके से कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं कि चुप हो गए और चुप होके जितना काम दे रहे हैं हम लेते जा रहे हैं, उससे आपका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ हैम्पर होगा, बॉस का नहीं। तो एक नो कहने का भी हमें वो सीखना होगा। चौथा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आजकल देखा गया है कि इन चीज़ों के कारण युवाओं, जैसा आपने बताया, नशे की ओर बहुत अग्रसित हो रहे हैं, तो नशा करना इसका उपाय नहीं है, उससे और आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब ही होगा। इसके अलावा जो दिनचर्या है उसे बहुत ही संतुलित रख सकते हैं। सही समय पे सोना, भरपूर नींद लेना, सही समय पे खाना और न्यूट्रिशियस फूड लेना जो स्वास्थ्यवर्धक

0: खाने वो जितना हो सके नेचुरल चीज़ें आप खाएं, जंक फूड को अवॉइड करें, थोड़ा एक्सरसाइज के लिए सुबह शाम घूमें और आपस में बातचीत करें। बात करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन द फैक्ट कि अगर आप ऑफिस में हैं, आपको किसी तरह का तनाव हो रहा है, अगर आपके साथी संगति वाले लोग हैं जो आपकी बात सुन सकते हैं, तो अगर आप उनसे बात करेंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपका तनाव बहुत हद तक कम रहा है। इसके साथ साथ कुछ कुछ जिम्मेदारियां तो मेरे ख्याल से ऑफिस या जो एम्प्लॉयर है उनकी भी बनती हैं कि वो ऐसा माहौल तैयार करें जो उनके जो एम्प्लॉई हैं वो लोग करने में, उस माहौल में उनको काम करने में ज़्यादा दिक्कत की परेशानी ना हो।
1: जी डॉक्टर साहब, जमाना मेटरलिस्टिक हो गया है, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हमारे युवा साथी भी पैसा अधिक कमाना चाहते हैं और फिर पैसे कमाने के चक्कर में वो दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और इसका विपरीत प्रभाव उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो क्या कहेंगे, सिर्फ पैसा ही सब कुछ है या आपका स्वास्थ्य सर्वोपरि है?
0: नहीं, मैं तो कहूँगा हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ
1: जी
0: है तो पैसा है, पैसा से हेल्थ आप नहीं खरीद सकते लेकिन हेल्थ से आप पैसा खरीद सकते हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ ये पुरानी कहावत है, वो ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप हर चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे, पैसा रहेगा हेल्थ नहीं रहेगा तो आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं पास्ट में कोट करूँ तो दीपिका पादुकोण बहुत ही फेमस एक्टर थी, लेकिन जैसे ही उनको डिप्रेशन हुआ जो सबको पता है, तो उसके बाद वो कहाँ उसको एंजॉय कर पाई वो लाइफ को। शी वॉज स्ट्रगलिंग विथ, वो डिप्रेशन से स्ट्रगल की हैं, तब उन्होंने फाइट बैक किया है, उन्होंने पेशेवर की मदद ली, फिर वो वापस आए हैं। तो अब उन्होंने फिर उनसे उसने सीखा है उन्होंने कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे रखना, अपना मेंटल हेल्थ कैसे प्रायोरिटाइज करना। इसीलिए ये इतना इम्पॉर्टेंट है, जस्ट मुझे एक याद आया कि इतना इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि इस बार की जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है उसका थीम भी यही था कि लेट्स प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस। रिलेटेड है इस चीज़, मतलब युवाओं से थोड़ा रिलेटेड है क्योंकि वर्क प्लेस पे मेंटल हेल्थ की बात की जा रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रैम्पेंट है ऑल ओवर वर्ल्ड में। सरकार के साथ साथ जो एम्प्लॉयर है उनके साथ साथ अपनी पर्सनल जिम्मेदारी भी बनती है कि हम कैसे अपना मानसिक स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं।
1: जी, ऑफिस के कार्य, दफ्तर के कार्य, या आप कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, वहाँ के कार्य को आप घर लेकर नहीं है, यदि आप दोनों को मिक्सअप करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। खुश रहना भी एक कला है, खुश कैसे रहें और काम को हम किस प्रकार व्यवस्थित करें, और जैसा आपने बताया स्मार्ट वर्क।
0: मैं कहूँगा जैसे मैंने बताया स्मार्ट वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है, और खुशी किन किन चीज़ों में है। मटेरियलिस्टिक खुशी है कि आपको खुशी मिलती है नेचर में, संगीत में, ये सब कुछ कुछ चीज़ें जो इननेट है वो सब में रहती है। तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें ठीक है, खुशी होती है वो आप करें, लेकिन उसके पीछे इतना ना भागें कि आपका वो हेल्थ उसमें ख़राब हो। और नेचुरल चीज़ों का आनंद लें, नेचुरल फूड लें, आप घूमने जाएं बागानों में, पर्वतों में।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के तहत युवाओं में बढ़ते काम और तनाव पर भेंटवार्ता डॉक्टर सुरजीत प्रसाद से। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यही समाप्त होता है। आइए समाचारों के लिए हम आपको दिल्ली के अंदर लिए चलते हैं, जहां से आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। पश्चिमैशियायाः सङ्घर्षः दशकस्य बृहत्तमेषु सङ्कटेषु अन्यतमः इति वर्णयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी राष्ट्रियसंसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरानगरे सरदारधामछात्रावासस्य उद्घाटनानन्तरं जनसभां सम्बोधयन् आसीत्।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकट में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। वडोदरा में कल सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए

0: ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडप्पडी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस पहल से लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
2: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
1: खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया है। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी गिरफ्तार पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है। 211 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। माधव तिवारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduce consumption of petrol and diesel, stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis. Prime Minister said there is a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources.
0: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें।
3: Prime Minister Narendra Modi will be on a six-day visit to United Arab Emirates UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy from Friday. On the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach UAE on Friday, where he will meet the President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Senior BJP leader Himanta Biswa Sharma will be sworn in as the Chief Minister of Assam in Guwahati today. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya will administer him the oath of office and secrecy at a ceremony to be held at the Veterinary College playground in Khanapara area of the city. Four ministers, including two from the BJP and one each from the AGP and BPF, will also take oath along with the Chief Minister. They are Rameshwar Teli, Atul Bora, Charan Boro and Ajanta Niyog. In a social media post, Mr. Sharma said that former Minister Ranjit Kumar Das will be the NDA's candidate for the Assam Assembly Speaker's position. This will be the second consecutive term for Mr. Sharma as Chief Minister and third term for an NDA government in Assam. The swearing-in ceremony will be attended by Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and BJP President Nitin Naveen, among others. The NDA, comprising the BJP, Ahom Gana Parishad, AGP and the Bodoland People's Front, BPF, secured a sweeping mandate in the assembly polls, winning 102 seats in the 126-member house. The BJP bagged 82 seats, while AGP and BPF won 10 seats each. Enforcement Directorate ED has arrested former Fire and Emergency Services Minister of the Government of West Bengal, Sujit Basu, in Kolkata in connection with the South Domdom municipality recruitment scam. Officials at the ED said that the boss allegedly recommended around 150 candidates for various posts under the South Domdom municipality in exchange for pecuniary benefits during the former TMC regime. The officials noted that ED has traced direct proceeds of crime in the form of flats allegedly acquired by him in lieu of providing municipal jobs to various individuals. The probe agency have also identified substantial cash deposits in bank accounts under his control. Mr. Bose will be produced before the special court today. US President Donald Trump has said the ceasefire with Iran was at its weakest and on a massive life support a day after he rejected Tehran's proposal to end the months-long war as totally unacceptable. In response to a question on the ceasefire with Iran in the wake of the rejection of the peace proposal, Trump told reporters at the Oval Office that it is at its weakest. After reading that piece of garbage they sent, it's on life support, massive life support, he added. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. According to IMD, thunderstorms and hailstorms are likely to prevail over Himachal Pradesh, Ladakh and Jammu and Kashmir for the day. The Met Department has predicted thunder squall with wind speed reaching up to 60 km per hour over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Bihar and Uttarakhand today. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Punjab Kings by 3 wickets in Dharmashala last night. Chasing a target of 211 runs set by Punjab Kings, Delhi Capitals scored 216 for 7 in 19 overs. And that is the end of this news bulletin.

अब से बस कुछ ही पलों के बाद 7:15 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे गायन पंडित सी आर व्यास जी राग भैरव बिहार में। स्वर सरिता कार्यक्रम का समय होगा 7:45। कलाकार होंगे अशोक खोसला। समाचारों के लिए हम आपको दिल्ली के अंदर लिए चलेंगे, जहाँ से सुबह के 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। कुछ पुराने फिल्मी गीत लेकर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे सुबह के 8:45 पर। जोहार पलामू कार्यक्रम का समय है सुबह के 9:00। 9:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम। सुबह के 10:00 हिंदी में समाचार और 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 10:10 पर मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले होंगे। दिन के 1:00 समाचारों के लिए हम चलेंगे दिल्ली केंद्र। 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 1:10 पर रांची केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 1:20 पर मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

ढाई बजे आप सुनेंगे मुंबई के दूसरे विविध भारती के कार्यक्रम 2:55 पर रांची के दूर से प्रादेशिक समाचार। 3 बजे विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे। शाम 4 बजे रांची के दूर से प्रादेशिक समाचार। 4:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई के दूर से। 5 बजे विविध रांची के दूर से प्रादेशिक समाचार। 5:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे और 5:30 पर पुनः हमारे स्टूडियो से होगा कार्यक्रम विवरण। 5:35 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी। गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों का रखें ख्याल और प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम पर होगी चर्चा। शाम 6 बजे रांची के दूर से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 6:02 पर खेती बाड़ी कार्यक्रम आप सुनेंगे। शाम 6:30 पर किसान वाणी कार्यक्रम होगा। शाम 7 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। 7:10 पर जिले में आजकल। 7:15 पर विधानसभा समीक्षा। 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा एक रंग। 7:45 पर आप सुनेंगे खुला आकाश कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट से। 8:30 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा देशगान। रात्रि 8:45 पर दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार रिले होंगे। 9 बजे अंग्रेजी में समाचार। 9:15 पर उर्दू समाचार और 9:30 मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे। रात्रि 10 बजे हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे रजनीगंधा। रात्रि 11 बजे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 11:10 पर होगी हमारी सभा की समाप्ति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। समय हो चुका है शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग का। आइए इस कार्यक्रम में सुनते हैं गायन पंडित सी आर व्यास से राग भैरव बिहार में।

आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। अब समय हो चुका है स्वर सुरता कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अशोक खोसला को।

मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
4: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov

0: www.aipensionsmumbai.in पर लॉगिन करें।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
5: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
4: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
6: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
4: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
7: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिनम ऑफ केयर पर।
4: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
0: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष

0: में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
2: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, PM नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. 4 ministers, 2 from BJP and 1 each from AGP and BPF to also take oath. ADRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Damdam Municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने और एकजुट होने का किया आह्वान। खान विभाग ने राज्य के 17 जिलों के लंबित 35 बालोघाटों की लीज प्रक्रिया अगले 10 दिनों के भीतर पूरी करने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों के अनुसंधान की धीमी प्रगति पर पुलिस की कार्यशैली पर जताई नाराजगी। कहा, पुलिस हर मामले में अदालत के आदेश का न करे इंतजार। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार से ट्रेजरी घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। विभिन्न जिलों की ट्रेजरी से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी को बताया चिंताजनक। और मौसम विभाग ने झारखंड में 17 मई तक आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहने का जताया अनुमान। तेज हवा चलने और वज्रपात को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में कल सरदारधाम छात्रावास के लोकार्पण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नागरिकों से एक बार फिर ईंधन बचाने और कार्यालयों में ऑनलाइन व्यवस्था को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां।

0: अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: इस बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री की अपील देश पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए की गई है। देश में कच्चा तेल, रसोई गैस या अन्य किसी भी तरह के ईंधन की कोई कमी नहीं है। झारखंड में अवैध बालू खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए खान विभाग के सचिव अरवा राजकमल ने 17 जिलों के 35 बालू घाटों की लीज प्रक्रिया अगले 10 दिनों के भीतर पूरी करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। खनन टास्क फोर्स की कल आयोजित बैठक में उपायुक्तों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर लीज एग्रीमेंट पूरा कर सफल बोलीदाताओं को बालू घाट सौंपने पर सहमति दी। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में अपराध के मामलों और उनके अनुसंधान की धीमी प्रगति पर पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कल एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आदेश का इंतजार न करें। जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हाल के आपराधिक मामलों का जिक्र करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो रही है। प्रदेश भाजपा ने कल धनबाद में बिजली पानी संकट को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन किया। मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नल से जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई।
2: बिजली और पानी को लेकर के पूरे झारखंड प्रदेश में जनता तराही तराही मांग कर रही है। आज घर में सब सूख रहा है भाई, पानी नहीं है, चापाकल खराब पड़े हुए। प्रधानमंत्री की जल जीवन मिशन दम तोड़ रहे हैं भ्रष्टाचार की झारखंड में। कहीं टंकी बना हुआ है तो सप्लाई नहीं है। आम जनता ग्रामीण क्षेत्रों में तराही तराही कर।
1: वहीं धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि भीषण गर्मी में महिलाएं घरों में रहने के बजाय घड़ा लेकर सड़क पर उतरने को विवश हैं, जो राज्य सरकार की विफलता को दिखाता है।
3: कहीं गांव देहात में चापाकल भी काम नहीं कर रहा और बिजली की हालत तो देख ही रहे हैं। धनबाद में 19 में यहां लगभग 900 करोड़ रुपए की योजना का शिलान्यास भी हुआ था, मैथन फेज 2 और फिर जामाडोवा, लेकिन जो योजना 22 में पूरा होना था वह योजना आज तक नहीं पूरा हुआ। पूरे प्रदेश के अंदर पानी के लिए जनता त्राहि त्राहि कर रही है, तो इसलिए सब प्रदेश भर में आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं।
1: प्रदेश भाजपा ने झारखंड में हुए ट्रेजरी घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कहा कि विभिन्न जिलों की ट्रेजरी से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी चिंताजनक है। उन्होंने राज्य सरकार से श्वेत पत्र जारी करने, अनियमितताओं की जानकारी सार्वजनिक करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य में रक्त से जुड़ी आपात सेवाओं के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने के साथ जिलों में ब्लड सेवाओं को और सुरक्षित और सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कल गुड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड में विरामचक दियाजोरी बलबड्डा सड़क सुदृढ़ीकरण योजना का शिलान्यास किया। इस योजना की लागत 1,47,00,000 रुपए है। इस दौरान मंत्री ने भुस्का पहाड़ को पर्यटन केंद्र बनाने और पार्क निर्माण की योजना की जानकारी दी। राज्य के श्रम एवं रोजगार मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कल जमशेदपुर में झारक्राफ्ट के नए एम्पोरियम का उद्घाटन किया। मौके पर श्री यादव ने कहा कि यह एम्पोरियम 25,000 बुनकरों, 120 बुनकर समितियों और 220 कर्मियों की मेहनत, हुनर और सपनों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि नया एम्पोरियम वोकल फॉर लोकल अभियान को मजबूती देने के साथ स्थानीय शिल्प

0: पकारों को बाजार से जोड़ेगा।
1: सरकार की सोच है माननीय मुख्यमंत्री आनंद जी का, रोजगार का बढ़ापा मिलेगा, गांव घर देहात में 25,000 लोगों को अभी तक इस रोजगार में हम लोग जोड़े हैं। हम लोग का टारगेट है कि कम से कम 2-2.5 लाख लोगों को हम लोग रोजगार से जोड़ेंगे, और ये इम्पोर्ट भी होगा, बाहर भी विदेश भी जाएगा, तो इससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
0: चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड ने स्वच्छ ऊर्जा और सौर परियोजना के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। पीएम कुसुम योजना का लाभ सफलतापूर्वक उठाने के बाद गिद्धौर का चयन अब पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए मॉडल सोलर गांव के लिए किया गया है। चतरा के जिला कृषि पदाधिकारी गौतम कुमार ने कहा कि यहां के किसान अब खेती के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रख रहे हैं।
2: पीएम सूर्य घर योजना जो हम लोग को मिलने वाला है, इससे पूरा घर सौर ऊर्जा से घर में बिजली उत्पादन होगा, और ये गिद्धौर के लिए बहुत अच्छा मौका मिला है कि सरकार हम लोग के देगी, इससे बिजली उत्पादन होगा।
0: और अब मौसम का हाल। झारखंड में 17 मई तक आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ने इस दौरान झारखंड के अधिकतर हिस्सों में बादल छाए रहने, गरज चमक और तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार आज और कल रांची, बोकारो, हजारीबाग समेत मध्य और पूर्वी झारखंड के जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने ईंधन बचाने, ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने और विदेशी मुद्रा बचाने की प्रधानमंत्री की दोबारा की गई अपील को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, पीएम के आह्वान पर मंथन, केंद्रीय मंत्रालय खुद भी कम करेंगे पेट्रोल डीजल की खपत। प्रभात खबर ने लिखा है, अब जमीन से जुड़े फैसले ग्राम पंचायतें लेंगी, रजिस्टर 2 की कॉपी देने का आदेश। दैनिक भास्कर ने जेटेट 2026 में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा के शामिल नहीं होने की खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने जमशेदपुर में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को 23 माह बाद जमानत मिलने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का किया आह्वान। खान विभाग ने राज्य के 17 जिलों के लंबित 35 बालू घाटों की लीज प्रक्रिया अगले 10 दिनों के भीतर पूरी करने का दिया निर्देश। झारखंड हाई कोर्ट ने आपराधिक मामलों के अनुसंधान की धीमी प्रगति पर पुलिस की कार्यशैली पर जताई नाराजगी, कहा पुलिस हर मामले में अदालत के आदेश का ना करे इंतजार। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार से ट्रेजरी घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। विभिन्न जिलों की ट्रेजरी से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी को बताया चिंताजनक। और मौसम विभाग ने झारखंड में 17 मई तक आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहने का जताया अनुमान, तेज हवा चलने और वज्रपात को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

समाचारों के बाद स्वागत है आपका पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।

रेडी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अमृता काक और मीका सिंह की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे थे आशीष पंडित ने और धुन बनाई थी देवी श्री प्रसाद ने। अब आइए सुनते हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

देव फिल्म का नगमा भी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी कैलाश खेर, महुआ कामत और श्रद्धा पंडित की। इस गीत के साथ ही गीत गुंजन कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है। समय हो चुका है जोहार पलामू कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जोहार

जोहार पलामो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, सुप्रभात, जोहार। कार्यक्रम की शुरुआत आज के सुविचार से, चुपचाप मेहनत करो, सफलता को शोर मचाने दो। जी हाँ, आपकी मेहनत खामोश होनी चाहिए और शोर मचाएगी आपकी सफलता। बात करें मौसम की तो अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है आज और कल, यानी कि 13 मई को अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। धूप खिली रहेगी, उमस भरा मौसम रहेगा, कहीं कहीं बादल भी छाए रहेंगे। तो मौसम की इस जानकारी के बाद आइए कार्यक्रम का पहला गीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।

शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ब्रेक के बाद स्वागत है आपका जोहार पलामू कार्यक्रम में। समय हो चुका है समाचार सुर्खियों का। पलामू की 3000 जवानों का होगा मानसिक स्वास्थ्य सर्वे, तनाव मुक्त पुलिसिंग की दिशा में पलामू पुलिस की बड़ी पहल। अक्सर पुलिसकर्मियों को सिर्फ वर्दी और ड्यूटी के नज़रिए से देखा जाता है, लेकिन पलामू के पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने सोच से आगे बढ़ते हुए पुलिसकर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक परिस्थितियों और भावनात्मक चुनौतियों को समझने की दिशा में एक अनूठी पहल शुरू की है। झारखंड में अपनी तरह की इस विशेष कार्य योजना के तहत जिले के लगभग 3000 पुलिसकर्मियों की समसामयिक स्थिति का विस्तृत सर्वे कराया जा रहा है। यह पहल इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि आमतौर पर पुलिसकर्मी दूसरों के संकट को संभालते संभालते अपने तनाव, थकान और मानसिक दबाव को भीतर ही भीतर दबा कर जीते रहते हैं। ऐसे में पलामू पुलिस पहली बार अपने जवानों के मन की बात सुनने और उनके दर्द के समझ को समझने के लिए आगे आई है। एसपी महोदय के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पदस्थापित पुलिसकर्मियों का सर्वे किया जा रहा है। इसमें उनकी ड्यूटी की प्रकृति, लगातार कार्य का दबाव, पारिवारिक चुनौतियाँ, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य की स्थिति और कार्यस्थल की परिस्थितियों से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है। इसका उद्देश्य केवल आंकड़े तैयार करना नहीं बल्कि प्रत्येक पुलिसकर्मी की जरूरत और मनःस्थिति को समझकर उनके कल्याण के लिए ठोस कदम उठाना है। एसपी कपिल चौधरी का मानना है कि पुलिसकर्मी 24 घंटे समाज की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। त्योहार हो, आपदा हो, दुर्घटना हो या कोई संकट, पुलिस हमेशा सबसे आगे खड़ी रहती है। ऐसे में जो पुलिसकर्मी समाज की चिंता करते हैं उसकी चिंता करना भी पुलिस नेतृत्व की जिम्मेदारी है। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। गुड्डा में सड़क सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास मंत्री दीपिका पांडे ने कहा। राज्य के ग्रामीण विकास कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सोमवार को महागामा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मेहरमा प्रखंड के गुड्डा पीरपैती एनएच पथ विरामचक से दिया जोरी बलबड्डा पथ के सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। 147 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह सड़क क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करेगी और ग्रामीणों को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध कराएगी। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि सड़क निर्माण के साथ साथ भूसका पहाड़ पर पार्क निर्माण की योजना भी क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि भगैया ककरघट में विकसित नेचर पार्क की सफलता के बाद अब भूसका पहाड़ को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी की जा रही है। झारखंड की पहचान को वैश्विक पटल तक पहुंचाने पर चर्चा, इन्फ्लुएंसर इंगेजमेंट पोर्टल का हुआ शुभारंभ। सुदिव्य कुमार ने कहा कि हमारी कोशिश है युवा क्रिएटर्स राज्य की ब्रांडिंग मजबूत करें। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने सोमवार को कहा कि झारखंड के पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए बड़े महानगरों के क्रिएटर्स को आमंत्रित किया जा सकता है, लेकिन झारखंड की असली पहचान यहाँ की सादगी, संस्कृति और लोक जीवन को सबसे बेहतर ढंग से हमारे अपने राज्य के इन्फ्लुएंसर ही प्रस्तुत कर सकते हैं। मंत्री पतरातू स्थित होटल पर्यटन विहार में सोमवार को पर्यटन विभाग झारखंड की ओर से राज्य स्तरीय इन्फ्लुएंसर मीट 2026 के सफल आयोजन के दौरान बोल रहे थे। सुदिव्य कुमार ने कहा कि हमारी कोशिश है कि झारखंड के युवा क्रिएटर्स जब किसी पर्यटन स्थल पर कंटेंट निर्माण करें तो वे गर्व से कहें कि वे झारखंड पर्यटन विभाग के साथ जुड़े हुए हैं। इससे न केवल राज्य की ब्रांडिंग मजबूत होगी बल्कि स्थानीय क्रिएटर्स को भी नई पहचान और अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विजन एवं पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य झारखंड के पर्यटन स्थलों, कला संस्कृति, विरासत एवं स्थानीय खान पान को डिजिटल माध्यमों से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी पहचान दिलाना है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री की ओर से इन्फ्लुएंसर गेमिंग पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के कंटेंट क्रिएटर्स एवं इन्फ्लुएंसर्स को पर्यटन विभाग से औपचारिक रूप से जुड़कर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। राज्य से 80 से अधिक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने लिया भाग। डीडीयू जंक्शन पर शिशु आहार कक्ष का शुभारंभ, मातृ दिवस पर रेलवे की अनूठी पहल। खबर मोहम्मदगंज से। मातृ दिवस के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल द्वारा डीडीयू जंक्शन के कॉन्कोर्स एरिया में महिला यात्रियों एवं उनके शिशुओं की सुविधा के लिए शिशु आहार कक्ष का शुभारंभ किया गया। पूर्व मध्य रेल ECR महिला कल्याण संगठन की डीडीयू मंडल अध्यक्ष चित्रा सिंह ने फीता काट कर इस सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना सहित कई अधिकारी कर्मचारी व महिला कल्याण संगठन की सदस्याएं उपस्थित रहीं। रेलवे द्वारा सुविधा कॉन्कोर्स एरिया तथा प्लेटफॉर्म संख्या 3-4 स्थित वातानुकूलित प्रतीक्षालय में निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना ने कहा कि यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और सम्मान रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मातृ दिवस पर शिशु आहार कक्ष की शुरुआत एक संवेदनशील और जनहितकारी पहल है। महिला कल्याण संगठन के अध्यक्ष चित्रा सिंह ने कहा कि इस सुविधा का उद्देश्य धात्री महिलाओं को यात्रा के दौरान सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराना है ताकि वे अपने बच्चों को सहजता से आहार करा सके। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस 15 मई को बच्चों को खिलाई जाएगी दवा। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस को लेकर चतरा समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त अमरिंद्र कुमार सिन्हा ने की। बैठक में 15 मई को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस और 18 मई को मॉपअप दिवस आयोजित करने का निर्णय लिया गया। अभियान के तहत 1 से 19 साल तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल दवा खिलाई जाएगी। उप विकास आयुक्त ने सभी विभागों को विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में दवा एवं प्रचार प्रसार सामग्री उपलब्ध कराने तथा व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश

स्वगणना में तेजी लाने का निर्देश, केवल 4 दिन शेष, कहना है उपायुक्त का। शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर व्यापक जागरूकता अभियान चलाने को कहा। पलामू उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने जनगणना 2027 के तहत चल रही स्वगणना प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। सोमवार को उन्होंने अपने कार्यालय कक्ष से जिला शिक्षा पदाधिकारी BRP CRP समेत शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर स्वगणना को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार अभियान चलाने को कहा। उपायुक्त ने कहा कि स्वगणना अभियान 1 मई से 15 मई तक संचालित किया जा रहा है और अब इसमें केवल 4 दिन बचे हैं। ऐसे में सभी अधिकारी एवं कर्मी अपने अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक कर अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि साल 2011 की जनगणना के अनुपात में जिले में स्वगणना की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी है। इसे गति देने में शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। BRP, CRP और शिक्षक गांव-गांव जाकर लोगों को स्वगणना की प्रक्रिया की जानकारी दें और उन्हें इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करें। उपायुक्त ने विद्यालयों में स्थानीय स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाने पर जोर देते हुए कहा कि लोगों को डिजिटल माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया समझाई जाए ताकि अधिक से अधिक लोग समय रहते इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मियों से सक्रिय सहयोग की अपील करते हुए निर्धारित समय के भीतर लक्ष्य पूरा करने पर बल दिया है। बैठक में अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, जिला योजना पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर क्विज और पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित। मेरा युवा भारत पलामू युवा कार्यक्रम में खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में स्थानीय गिरवर +2 उच्च विद्यालय में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर क्विज एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान, नवाचार और तकनीकी प्रगति के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। प्रतियोगिता में विद्यालय के लगभग 100 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान छात्रों ने विज्ञान एवं तकनीक से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य

विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने और उन्हें तकनीकी क्षेत्र के प्रति प्रेरित करने का प्रयास किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को शील्ड एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। मातृ दिवस पर संत मरियम आवासीय विद्यालय में सजी सुर संध्या। मातृ दिवस के अवसर पर संत मरियम आवासीय विद्यालय में सुर संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मातृत्व, संगीत और भावनाओं से सराबोर रहा, जहां कलाकारों और विद्यार्थियों ने मां को समर्पित गीत, भजन और कविताओं की प्रस्तुति देकर सभी को भावुक कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मदर टेरेसा ग्रुप सेवा सदन की पूनम मिंज, अमलिका खलखो एवं वर्णिका गुड़िया उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस दौरान हाल ही में हुई जयपुर क्रूज दुर्घटना में माँ बेटे से जुड़ी मार्मिक घटना को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। मातृ दिवस की इस विशेष संध्या में पलामू के प्रसिद्ध लोक कलाकार उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने गीतों से समा बांध दिया। इन खबरों के बाद अब आइए सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का।

और अब आइए पलटते हैं इतिहास के पन्ने। क्या कुछ है खास आज के इतिहास में। आज है 12 मई। आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1459 में राव जोधा ने जोधपुर शहर की नींव आज की तारीख को रखी थी। 1797 में नेपोलियन बोनापार्ट ने विनिस पर आज ही के दिन विजय प्राप्त की थी। 1945 में भारत के 37वें मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन का जन्म हुआ था 12 मई को। 1989 में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी शिखा पांडे का जन्म हुआ था आज ही की तारीख को। 2002 में भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी का जन्म हुआ था। 1933 में आज ही की तारीख को नंदू नाटेकर, जो पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने इंटरनेशनल खिताब जीता था, इनका जन्म हुआ। 1784 में पेरिस समझौता आज ही की तारीख से प्रभावी हुआ था। तो यह थी बातें आज के इतिहास की। और अब कार्यक्रम का अगला

0: इस गीत के साथ ही आज के जोहार पलामू कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है। हमें इस कार्यक्रम से अनुमति दें।
1: जोहार पलामू।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार पलामू, प्रस्तुति स्वर शर्मिला वर्मा का, संयोजन श्री एस के लाल का। और अब समय हो चुका है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। आइए सुनते हैं कड़ी संख्या 1282।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
0: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
0: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिल का पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
0: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
0: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
0: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
0: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास हो
2: जी,
0: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
2: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मतिभ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
0: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
0: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
2: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
0: जी।
2: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
0: क्या कहते हैं?
2: थर्मल लैग।
0: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है
2: जी।
0: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
2: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
0: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
0: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
2: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें। और हाँ, प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिएं। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं
0: जी।
2: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
0: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने
2: जी।
0: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो
2: जी।
0: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
2: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो, क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है, और धूप का चश्मा जरूर पहने क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
0: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
2: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न है,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है आग बरसाती धूप।
2: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है, और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
3: आग बरसाती धूप।
4: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।

0: क्यों? वहाँ बहुत सारे आम हैं।
1: अच्छा, तुमने खुद देखे हैं?
0: हाँ।
1: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
0: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
1: हाँ हाँ, धीरे से चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: आओ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चले।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो, देखो मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा। भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलूं देखूं। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया। यही पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन मोहन, क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
0: विद्या विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं। मैं उठाता हूँ। हाँ ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ चलिए चलिए।
2: आ गया डॉक्टर साहब का घर। इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
1: जी।
2: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
3: कौन है भाई, अभी आया?
2: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
3: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
2: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है।
3: ओहो अच्छा, इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई। हाँ। और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए।
2: हाँ।
3: ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
2: अच्छा डॉक्टर साहब।
3: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
1: जी।
3: लाओ अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
2: हाँ जी।
3: ऐसे। लाओ अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
2: जी।
3: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है
2: जी।
3: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
1: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
3: बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के

0: प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
1: जी,
0: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
1: इससे क्या होता है?
0: भाई, तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
2: डॉक्टर साहब, कैसे बच सकते हैं इससे?
0: भाई, सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
0: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए।
2: जी,
1: और अगर लू लग जाए तो?
2: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
0: भाई, लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए।
1: जी।
0: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
1: मोहन को होश आ गया। डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
0: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
2: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
1: जी।
2: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
1: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
0: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
2: गर्म हवा से रहे हम दूर,
3: ठंडक में खेले भरपूर।
2: ठंडक
3: में खेले भरपूर।
0: आग बरसाती धूप।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक का।
5: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
6: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
7: इन्हें हमारा सलाम।
6: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का। नमस्कार साथियों।
8: साथियों नमस्कार।
6: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
8: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
6: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक का।
8: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
6: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक एल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे

0: असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
1: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा।
0: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: उनके शौर्य को देखकर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
0: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
1: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहां के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा, पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक अल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगी।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गनें बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक एल्बर्ट इक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
0: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
1: फिर क्या था, लांस नायक एल्बर्ट इक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
0: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। एल्बर्ट इक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक एल्बर्ट इक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
1: लेकिन इस युद्ध में एल्बर्ट इक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
0: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
1: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक एल्बर्ट इक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम। परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
1: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
0: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। समाचारों के बाद 10:10 पर मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे। आइए समाचारों के लिए हम आपको दिल्ली लिए चलते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्वा सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी सरकार होगी। श्री सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमुड़ी को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा है। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडापड़ी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल

0: हाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर में व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा ने पुंछ जिले के सुरनकोट सेक्टर के परिचालन क्षेत्रों का दौरा किया और आतंकवाद रोधी अभियानों की समीक्षा की। इस दौरान कोर कमांडर को वरिष्ठ अधिकारियों ने आतंकरोधी ग्रिड, खुफिया नेटवर्क और अंतर एजेंसी समन्वय तंत्र के बारे में भी जानकारी दी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी। आईपीएल क्रिकेट में कल रात धर्मशाला में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स ने 211 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाए। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid the West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel. Stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis, Prime Minister said there is a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources.
2: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाए, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दे। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है, लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च हो। जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाए, और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
1: He said that India spends lakhs of crores of rupees in foreign exchange to import many products from abroad, and the crisis has led to a steep rise in imported goods and severely disrupted global supply chains. Assam is set to witness a historic political event today with the swearing-in of Himanta Biswa Sarma as the Chief Minister of the state for a second consecutive term, making him the first non-Congress leader in Assam's history to hold the post for back-to-back terms. Dr. Sarma and his Council of Ministers will be administered the oath of office in secrecy by Governor Lakshman Prasad Acharya. Along with Dr. Himanta Biswa Sarma as Chief Minister, four other members of the Council of Ministers will also be sworn in today. The four cabinet ministers are Rameshwar Teli, Atul Bora, Charan Boro and Ajanta Niyog. The swearing-in ceremony will be witnessed by Prime Minister Narendra Modi Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several union ministers and chief ministers from BJP.

0: ruled states. U.S. President Donald Trump has said he expected Taiwan and energy security to dominate discussions during his upcoming visit to China, while praising his relationship with Chinese President Xi Jinping and expressing confidence that tensions over Taiwan would not escalate. Speaking during a White House maternal health care event yesterday, Trump said his administration was now doing great with China after accusing previous U.S. administrations of allowing Beijing to take advantage of the United States. Trump repeatedly praised Xi during the interaction with reporters. International Nurses Day is being observed today. The day is observed every year on the 12th of May to celebrate nurses and their contribution to healthcare around the world. The theme for this year is Our Nurses, Our Future. Empowered Nurses Save Lives. On the occasion, Nagaland Chief Minister Neo Foryo honored the nurses who serve with compassion, resilience and professionalism every day. The Cannes Film Festival, the annual celebration of independent cinema on the French Riviera, will kick off today with John Travolta, Adam Driver and Barbara Streisand among the superstars set to walk the red carpet. Cannes is the world's biggest film festival, first conceived in 1939 as an alternative to Venice's film extravaganza, which was then under the sway of the ruling fascists. The India Met Department has issued an orange alert for rain in Uttarkashi, Chamoli, Rudraprayag, Bageshwar and Pithoragarh districts of Uttarakhand for the next 36 hours, while a yellow alert has been issued for the remaining districts. According to the department, there is a possibility of hailstorms and gusty winds in various parts of the state during this period. In IPL cricket, Gujarat Titans will take on Sunrisers Hyderabad at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad today. The match will start at 7:30 p.m. Indian time. Earlier, Delhi Capitals defeated Punjab Kings by 3 wickets at the Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala last night. Chasing a target of 211 runs set by Punjab Kings, Delhi Capitals scored 216 for 7 in 19 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: अन्यथा इनमें कोई लक्षण की इतना अभाव ही रहता है। दूसरा जो होता है थैलेसीमिया इंटरमीडिया, अभी ये जो होता है इसमें पूरी तरह से थैलेसीमिया तो नहीं आ जाता है, ये जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होती है, मुख्यतः जो मुंह के बोन्स होते हैं, हड्डियां होती है, वो काफी बढ़ जाती है। अच्छा। जिससे इनका जो शरीर में अब सर देखेंगे तो बाकी धड़ से वो अलग लगता है कि काफी बड़ा दिखता है। दांत अलग अलग हो सकते हैं, मतलब दांतों में कुछ कमियां आ सकती है इन बच्चों में, और इनमें पीलिया भी दिखाई दे सकता है। इन बच्चों को हमेशा तो नहीं पर बीच बीच में रक्त संक्रमण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। सबसे डरावना इसमें जो है वो है तो थैलेसीमिया मेजर, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें पूर्णतः थैलेसीमिया बीमारी आती है। यह बच्चे उनके उम्र के 3 से 6 महीने से बाहर के रक्त के संक्रमण के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर इनको ये रक्त नहीं दिया गया तो ये जानलेवा हो सकता है कि इनके इसमें रक्त बनने की पूरी प्रणाली खराब हो गई होती है,
2: जो मेजर होता है,
1: जो थैलेसीमिया मेजर कहते हैं हम इसे। तो ये जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे उम्र के 3 से 6 महीने में ही सफेद दिखने लगते हैं, माए देखती है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, कंटिन्यूअसली रोते रहता है, तो उसी की वजह से दिखाए जाते हैं। जब बच्चे का रक्त परीक्षण करते हैं तो हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है, और जब आगे जाके हम लोग फर्दर टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है। ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं, अगर आप उनको ढंग से रक्त संक्रमण ना दे तो अपने शरीर में जो रक्त बनाने वाली हड्डियां होती है, बचपन में मेनली होती है अपनी सर की हड्डियां, ये बढ़ने लगती है साइज में, और वो अपने बाकी धड़ से अलग दिखने लगती है। इनका सर बड़ा होने लगता है, आंखें छोटी होती है, नाक अंदर चला जाता है, दांत खराब होने लगते हैं, तो इस तरह से अपने सर की हड्डियों पे इनका एक असर होने लगता है।
2: अच्छा, तो डॉक्टर साहब जैसे आप बता रहे हैं कि मेजर थैलेसीमिया, और बात आपने शुरू में की थी कि माइनर भी होता है, तो क्या दो ही प्रकार के थैलेसीमिया पाए जाते हैं?
1: देखिए, अल्फा थैलेसीमिया जो होता है ये भारत में इतना पाया नहीं जाता है, ये जो दिखता है मेनली अरब रीजन में देखा जाता है। अल्फा थैलेसीमिया इंडिया के पॉपुलेशन में तभी प्रॉब्लमेटिक होता है जब सिकल सेल या किसी अन्य बीमारी के साथ में वो जुड़ जाता है। अल्फा थैलेसीमिया जो होता है भारत में इतना मुख्य कारण नहीं है जितना है कि बीटा थैलेसीमिया।
2: बीटा,
1: हम लोग जो आज बात कर रहे हैं मेनली वो बीटा थैलेसीमिया के बारे में है। तो वही मैं बताना चाहता हूं कि बीटा थैलेसीमिया माइनर जो होता है, या हम लोग जिसे ट्रेट कहते हैं या कैरियर स्टेज कहते हैं,

0: इसमें उस व्यक्ति को विशेष तकलीफ तो नहीं होती है, पर किसी ठराविक अवस्था में जैसे कि शरीर में लोहे की कमी हो गई या किसी और चीज की कमी हो गई तो उसका हीमोग्लोबिन धड़ाधड़ नीचे आने लगना ही लगता है। दूसरी जो व्यवस्था होती है, जो हमने बताया कि थैलेसीमिया इंटरमीडिया होता है, जिसमें थैलेसीमिया के साथ और कोई बीमारी जुड़ने की वजह से या किसी वजह से व्यक्ति को बीच बीच में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमेशा तो नहीं पड़ती है। और तीसरा जो बताया मैंने, जो थैलेसीमिया मेजर जो होता है, उसमें हर महीने या कभी कभी 3 से 4 हफ्ते में ब्लड संक्रमण या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है।
1: ये भी होता है कि साथ में एनीमिक होने के साथ में वो थका हुआ सा दिखता है बच्चा?
0: हाँ, मतलब वही होता है कि जो बच्चा थका हुआ सा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, उसकी जो बढ़त होती है वो नॉर्मल बच्चों से कंपेयर करें तो बहुत कम होती है। तो ये अलग अलग लक्षण दिखते हैं, बच्चों में पीलिया दिखता है। जो बच्चे थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया इंटरमीडिया से प्रभावित होते हैं, उनमें लीवर और प्लिया यानी स्प्लीन की साइज भी बढ़ जाती है। कभी कभी उसकी वजह से पेट दर्द या पेट में गांठ लगना, ऐसे भी लक्षण पाए जाते हैं।
1: जैसे आपने ये भी बताया तो यहाँ जिक्र करना होगा दोस्तों आपके लिए कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि सर कुछ ज्यादा बड़ा दिखाई देता है क्योंकि अनुपात में शरीर सिकड़ा हुआ होता है और पेट निकला हुआ सा दिखाई देता है।
0: अब देखेंगे ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको ढंग से रंगतरल संक्रमण नहीं मिला होता है और ढंग से उनका उपचार नहीं चल रहा होता है, या तो इस बीमारी को ना जानने के कारण या तो किसी अलग विषय जैसे कि फैमिली गरीब हो और वो ढंग से इसका इलाज नहीं कर पा रही हो।
1: अच्छा, इसके कारण पे यदि हम जाएं मूल रूप से इसका रीजन जो है कि भाई क्यों होता है, तो अक्सर पारंपरिक रूप से लोग ये कह देते हैं भाई इनके माँ बाप को भी बीमारी थी। तो ये सत्य है कि अनुवांशिकता जैसे कि आपने कहा हेरिडेटरी कैरेक्टर होता है उसमें, तो माँ को होता है या पिता को होता है या दोनों को होता है?
0: इसमें अभी देखिए जरूरी है कि जैसे हम लोग जेनेटिक्स या आनुवंशिकता जो कहते हैं ये माँ और पिताजी दोनों से ही आती है। ये जो बीमारी है मूल रूप से आधी बीमारी पिताजी से और आधी बीमारी माँ से आती है। कैसे होता है कि बहुत बार मुझे पेरेंट्स कहते हैं, मतलब माँ पिता कहते हैं, हमारे तो पूरे खानदान में बीमारी किसी को नहीं थी और हमारे बच्चे को ऐसे आ गई। अभी ऐसे है कि जो थैलेसीमिया माइनर यानी कैरियर स्टेट होता है वो बहुत बार पता ही नहीं चलता है, तो उनमें तो ये आधी बीमारी होती है। अगर आप देखेंगे तो हम लोग बनाएंगे कि माँ के जीन्स के 2 सेट है जिसमें एक बीमारी ग्रस्त है, पापा के 2 जीन्स के सेट है जिसमें एक बीमारी ग्रस्त है, तो 50-50% बीमारी पापा और मम्मी दोनों में है। अब बच्चे जो पैदा होंगे उसमें तो उसमें 25% चांस होता है कि वो थैलेसीमिया मेजर से ग्रस्त होते हैं, 50% चांस होता है कि वो थैलेसीमिया माइनर अपने माँ पिताजी से होंगे, पर अगर नॉर्मल हिस्सा दोनों साइड से आ गया तो वो नॉर्मल बच्चा भी हो सकता है।
1: अच्छा,
0: तो माँ पिताजी अगर दोनों में ये बीमारी आधी आधी है तो 25% चांस है कि बच्चे को आगे चल के थैलेसीमिया मेजर बीमारी होती है। ये बीमारी इसीलिए माँ से और पिता से दोनों साइड से ही आती है। बहुत कम बार, मतलब लाखों में एक हाथ कैसे ऐसे होगा जिसमें सिर्फ माँ को या पिताजी को ही बीमारी है और जो माँ से या पिताजी से जो नॉर्मल जीन आ गया उसमें वो शांति रह गया और जो 2 क्षतिग्रस्त जीन है वही चल गया तो बीमारी आती है। पर मुख्य रूप से माँ और पिताजी दोनों से ही आधी आधी बीमारी आके एक पूरी बीमारी तैयार होती है बच्चे में।
1: डॉक्टर साहब, एक प्रश्न यहाँ पर उभरता है कि जैसे आपने बताया कि माता पिता दोनों को होती है और जीन्स में जेनेटिकली ये समावेश होता है गर्भ के दौरान। जैसे कई माँ बाप आते हैं मरीज को लेकर बच्चे के रूप में आपके सामने कि भाई हमारे बच्चे को ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन की क्या कंडीशन आप पाते हैं, कितना होना चाहिए, कैसे आपको पता चलता है कि वाकई थैलेसीमिया है?
0: क्या होता है कि जो शुरुआती जो हीमोग्लोबिन रहता है इसे हम लोग कहते हैं हमारी भाषा में HbF, यानी जो माँ के पेट में रहते वक्त जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी मात्रा पैदा होते वक्त काफी ज्यादा होती है और इसीलिए तकलीफ नहीं होती है। 3 से 6 महीने में जो अपने युवा अवस्था का हीमोग्लोबिन है वो धीरे धीरे तैयार होने की प्रक्रिया शुरू होने लगती है। ये प्रक्रिया जब शुरू होती है तभी हीमोग्लोबिन नीचे चले जाने लगता है तो बच्चा सफेद दिखने लगता है। जब भी हम लोग देखते हैं तो हर वक्त ये हीमोग्लोबिन जो होता है 10 से नीचे तक आ गया होता है। जब और कोई वजह नहीं दिखती है, जैसे कि ये उम्र में हीमोग्लोबिन होने के ज्यादा कारण नहीं होते हैं अलग, अनलेस किसी को ब्लीडिंग या और किसी चीज की तकलीफ होती हो या बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया हो। अगर हम लोग, मैं अगर ऐसे 10 बच्चे ले लूं तो 8 बच्चों में थैलेसीमिया यही कारण होगा हीमोग्लोबिन कम होने का, और मेनली ये 10 से नीचे ही पाए जाते हैं।
1: अच्छा भाई, देखिए बहुत ही गहन जानकारी आपने दी है क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ऐसा घटक है जो कि पता चलता है कि कमजोरी कितनी है और किस ढंग से

0: इसका उपचार होगा। हम आगे बढ़ेंगे और वही हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद का कोई गाना सुनवा दीजिए ताकि चर्चा फिर से जारी रहे।
1: देखिए धर्मेंद्र जी जो है वो हिमैन के रूप में जाने जाते हैं, पर उनका कोई रोमांटिक भी हिस्सा मुझे पसंद है, वो है ब्लैकमेल पिक्चर का और गाना है पल पल दिल के पास।

0: डॉक्टर साहब, वाकई आपने गीत बहुत अच्छा सुनवाया। और बीमारी की बात चल रही दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है थैलेसीमिया, उपचार और इससे बचाव। डॉक्टर साहब, यहाँ प्रश्न ये होगा कि इस बीमारी के उपचार के जो मुख्य मुख्य घटक होते हैं वो क्या हैं?
1: देखिए, कैसे होता है कि एक बार ये बीमारी आ गई बच्चे में तो इसे ठीक करने के उपचार बहुत ही कम अवेलेबल है आज की तारीख में। इन बच्चों का मुख्य जो इलाज होता है वो तो रक्त संक्रमण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि इनमें रक्त बनने की प्रणाली अब बंद पड़ चुकी है या गलत तरीके से काम कर रही है। इसकी वजह से क्या लगता है कि इनको हर महीने रक्त संक्रमण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है, और जो लाइफ लॉन्ग यानी जिंदगी भर चलते रहता है। मुख्य रूप से अगर आप देखा जाए तो रक्त एक लोह का मुख्य स्रोत होता है, रक्त में जो हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं, या आयन का स्रोत होता है। तो क्या हो जाता है कि जब 20 से ऊपर ब्लड यूनिट ट्रांसफ्यूज हो जाते हैं तो लोह की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है। तो इसीलिए रक्त संक्रमण के साथ लोह कम करने के इंजेक्शंस या टैबलेट्स इनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाते हैं। तो रक्त संक्रमण और आयन चिलेशन यानी लोह कम करने की दवाइयां, ये एक सबसे मुख्य उपचार पद्धति है और यही कारगर करती है। कुछ कुछ दवाइयां भी अवेलेबल है इस चीज में, पर इतनी कारगर नहीं है। बीमारी को अगर मुख्य तरीके से ठीक करा जाए तो स्टेम सेल ट्रीटमेंट यानी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, ये एक मुख्य ट्रीटमेंट है इसमें।
0: आपने बताया है कि उसको एक अवधि के बाद बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो वो कितनी मात्रा में होता है और कितने महीने या दिनों के अंतराल के बाद उसको होना जरूरी होता है?
1: ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो हम लोग फ्रीक्वेंसी तय करते हैं वो होती है हीमोग्लोबिन की स्तर के ऊपर। यह हीमोग्लोबिन का स्तर बच्चों में हम लोग 9 से 10 के बीच में रखना पसंद करते हैं। वही वो जब बच्चा पूरा बड़ा हो जाता है 17-18 साल का, तो यही स्तर हम लोग 7 से 8 के बीच में रखना शुरुआत कर देते हैं। ट्रांसफ्यूजन के फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर हम लोग बात करें यानी ब्लड चढ़ाने कितना जरूरी होता है,
0: कब, तो
1: शुरुआती जो होता है हर 3 से 4 हफ्ते में एक बार लगता है, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है

0: उसका आकारमान भी बड़ा जो होता है, उसका वजन बड़ा होता है। तो पहले जो सिर्फ एक यूनिट हर महीने में लगता था, फिर हर महीने दो दो यूनिट लगने लगते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, अब हम लोग बार बार जो ब्लड चढ़ाते हैं उसके वजह से ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज यानी प्रतिजैविक तैयार हो जाते हैं ब्लड में, और जो बाहर से ब्लड दिया जाता है वो शरीर में टिकता नहीं है। इसलिए जब हम लोग दूसरे या तीसरे दशक में आते हैं इन पेशेंट्स के साथ में, तो ब्लड करीबन हर दूसरे हफ्ते में चढ़ाना पड़ना जरूरी हो जाता है। पर हीमोग्लोबिन का स्तर यही ब्लड चढ़ाने की मुख्य फ्रीक्वेंसी तय करता है।
1: थैलेसीमिया जो बीमारी है डॉक्टर साहब, ये पीड़ित जो इससे बच्चे होते हैं उनकी आयु क्या होती है, और इसके उपचार में तकरीबन आप क्या सोचते हैं कितना खर्च आता है?
0: करीबन 5% बच्चे भी थैलेसीमिया के आइडियल तरीके से यानी जो वैज्ञानिक रूप से जो उपचार है वो नहीं ले पाते हैं। इसका तो मुख्य कारण है इसमें लगने वाला खर्च। औसतम जो खर्च होता है, अगर बच्चे की उम्र 3 से 4 साल हो जाती है तो हर साल का खर्चा लगभग 1 से 1.25 लाख रुपया होता है। इसमें जो इंक्लूड होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसके लिए बार बार हॉस्पिटल जाना, उसके लिए स्पेशल ब्लड सेट्स लगते हैं हम लोग जिसको फिल्टर्स कहते हैं, उनका खर्चा होता है, और शरीर में लोह की मात्रा ज्यादा नहीं रहे इसके लिए जो इंजेक्शंस या जो दवाई देनी पड़ती है उनकी मात्रा। तो ये जो मैंने बताया है उम्र के 4 साल तक, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चे का वजन बढ़ने लगता है तो इन दवाइयों की जो मात्रा रहती है वो भी बढ़ने लगते हैं। हम लोगों ने एक अंदाजन किया था कि भारत में इन बच्चों पर कितना खर्चा हो सकता है, तो करीबन अगर ये बच्चा 20 साल तक जीता है तो उसके ऊपर तब तक 15 से 20 लाख रुपए खर्चे हो जाते हैं, और 50 साल तक अगर ये बच्चा जीता है तो उस पर करीबन 1 करोड़ रुपया तक का खर्चा हो सकता है। भारत में आइडियल यानी वैज्ञानिक रूप से सभी बच्चे नहीं मैनेज करने के ऊपर इन बच्चों की औसतम आयु 15 से 25 साल के बीच में होती है।
1: ये ब्लड बैंक से मुहैया करवाने की कोई व्यवस्था होती है या परिवार के किसी सदस्य को बार बार ब्लड देना होता है?
0: हर साल भारत में ही सिर्फ, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हर साल में कितना ब्लड लग सकता है। और ब्लड देने की इससे भी ज्यादा अलग कारण होते हैं, जैसे ऑपरेशन के दौरान या किसी एक्सीडेंट के दौरान या किसी अलग वजह से ब्लड देना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि ब्लड की शॉर्टेज तो हमेशा होती है। जैसे जैसे इस बीमारी के बारे में जाना गया तो भारत में कई सारे शहरों में कुछ संस्थाएं बनाई गई जो इन सब बच्चों को सपोर्ट करती है। तो ऐसे अलग अलग सोसाइटीज़ है, बम्बई में KEM अस्पताल में, JJ अस्पताल में, 80 के दशक में ये संस्थाएं बन चुकी है। थैलेसीमिया इंडिया सोसाइटी भी है, दिल्ली में एम्स में है, और काफ़ी सारे शहर में जैसे कलकत्ता, चेन्नई, हर जगह पे थैलेसीमिया सोसाइटी है। तो इनका मेंबर बन के आप ब्लड के लिए उनसे मदद की अपेक्षा कर सकते हैं। बार बार तो ब्लड देना जरूरी नहीं होता है वैसे, पर कभी कभार किसी रिश्तेदार को ब्लड देने की जरूरत पड़ सकती है।
1: ये तो बहुत उम्दा बात लाई आपने। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे इस संबंध में गीत के पहले कि कोई दवाइयाँ भी होंगी जो इस बीमारी में मदद कर सकती हैं इंजेक्शन वगैरह के अलावा।
0: एक दो दवाइयाँ इस बीमारी के लिए देखी गई थी, उन्होंने मुख्य रूप से बीमारी में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया। वीट ग्रास जैसे गवांकुर कहते हैं, इसका जूस पिला के कुछ कुछ लोगों ने देखा कि बच्चों में कुछ फायदा कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने पाया कि 25% बच्चों में रक्त संक्रमण की जरूरत धीरे धीरे कम होने लगी, पर कुछ अन्य परीक्षण में यही वापस से ऑब्जर्वेशन नहीं देखा गया, इसलिए इसे तो रिकमेंड नहीं करते हैं। दूसरी चीज होती है एक हाइड्रोक्सी यूरिया करके दवा होती है, ये ओरली लेने वाली ये कैप्सूल होती है, इसे भी देखा गया है। इस बीमारी में ये दवा इस तरह से काम करती है कि जो अपना माँ के पेट में होते होने वाला जो हीमोग्लोबिन होता है, जिसे हम लोग HbF कहते हैं, ये उसकी मात्रा खून में बढ़ाने की वजह से ब्लड संक्रमण या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। पर मोटा मोटी तौर पे कोई भी दवा बाहर से इस बीमारी को ठीक करने में लाइलाजी रही है।
1: और यहाँ पर हम चाहेंगे कि जो बातचीत बहुत भारी भारी सी वजनी सी लग रही है, खतरे की आगाह वाली बात कर रही है, तो माहौल को हल्का करते हैं आपकी पसंद का कोई गाना सुनकर।
0: तो रोजा फिल्म से एक जो गाना है भारत हमको जान से प्यारा है, ये मेरा एक और एक पसंदीदा सॉन्ग है जो भारत के विषय मेरा आदर हमेशा बढ़ाते रहता है।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई में बहुत ही इंस्पायर करने वाला रहा। इस बीमारी को ठीक करने के लिए और भी जो अल्टरनेटिव चीजें हैं, वो विकल्प क्या हैं आपकी नजर में?
1: इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने का एक ही विकल्प है आज के तारीख में, वो तो है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। स्टेम सेल देखा जाए तो ये अपने हर रक्त में होने वाली पेशी की जननी है, जैसे लाल रक्त पेशी, सफेद रक्त पेशी और प्लेटलेट। लेकिन स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए एक डोनर की होना जरूरी होता है। यह डोनर भाई बहन हो सकता है जिनमें शायद सिर्फ आधी बीमारी हो या जो पूर्णतः नॉर्मल हो, या माँ और पिताजी से स्टेम सेल्स लिए जा सकते हैं। इंटरनेशनल डोनर रजिस्ट्री से भी हो सकती है, तो वहाँ से भी स्टेम सेल लिया जा सकता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये जो उपचार पद्धति है, ये बहुत ही खर्चिक उपचार पद्धति है, उसमें जान का खतरा भी होता है। जिसमें सिबलिंग डोनर ट्रांसप्लांट, यानी जब भाई बहन से हम लोग सेल्स लेते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए, तो भी वो पूरी तरह से मैच होना जरूरी होता है। जिससे अपने रक्त के ब्लड ग्रुप जैसे होते हैं AB या O, वैसे ही हमारे सफेद रक्त कोशिकाओं का ग्रुप होता है, जिसे हम लोग ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन या HLA कहते हैं। इसके अलग अलग 10 रीजन्स होते हैं। ये 10 से 10 रीजन जब पूरी तरह से मैच करते हैं, जिसे हम लोग फुल मैच कहते हैं, तभी हम लोग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के आगे बढ़ते हैं। यह जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होता है, उसमें करीबन एक वक्त पे 8 से 10 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है,
0: ओहो,
1: और इसमें जान का खतरा 5 से 10% रहता है। दूसरा जो मैंने कहा, जिसमें माँ और पिताजी से स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए हम लोग उम्मीद रखते हैं, उसमें मैच होने का चांस एक हाथ ही होता है, 1 लाख में। तो उसमें भी जो खर्चा होता है सेम ही होता है, और हम लोगों ने हाफ मैच कभी कभी ट्रांसप्लांट कर दिया तो ये खर्चा 15 से 20 लाख तक हो जाता है, पर जान का खतरा 10 से 20% बना ही रहता है। और जो हम लोग अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट, जो मैंने आपको बात बताई थी, जहां पे आप बाहर के किसी डोनर रजिस्ट्री से सेल्स वगैरह अगर मंगवाते हैं, तो यही खर्चा 35 से 50 लाख के बीच में हो सकता है, और इसमें जान का खतरा 20 से 30% होता है। तो ये सारे ही बहुत ही खर्चिक उपाय हैं। तो इसीलिए, पर ये छोड़ के आज की तारीख में इस बीमारी के रुग्णों को पूरी तरह से ठीक करने के लिए कोई भी उपचार पद्धति अवेलेबल नहीं है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं तो आप नई पेशी बनाने वाली एक सिस्टम लेके आते हो। तो जब हम लोग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं और ये सक्सेसफुल हो जाता है, तो ऐसे बच्चे रक्त संक्रमण से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं, उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है।
0: अच्छा, यदि सक्सेसफुल हो गया तो?
1: यदि सक्सेसफुल हो गया तो।
0: लेकिन इसी पूरी प्रक्रिया में इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को और उसके परिवार को तमाम तकलीफों का सामना भी करना पड़ता होगा।
1: बहुत सारी तकलीफें होती है। समझ लीजिए कि आपके पास ऐसा बच्चा है, इसे आपको कम से कम महीने में एक बार तो अस्पताल लेके जाना है। अब जब अस्पताल लेके जाना है तो जो लेके जाने वाला है उसे भी अपने भी काम से छुट्टी लेनी होती है। घर पे बाकी के अगर बच्चे बाकी की चीजों के ऊपर है तो उस पर भी ध्यान नहीं दे सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हर महीने महीने तो शुरुआत में लगता है, बाद बाद में तो हर 2-3 हफ्ते में लगता है, तो आपके हॉस्पिटल जाने की फ्रीक्वेंसी भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। दूसरी चीज होती है कि देखिए, ब्लड संक्रमण तो हो गया किस्सा। जो 1990 के दशक से पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गए, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के गाइडलाइन ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे,

0: या ब्लड बैंकिंग के गाइडलाइन ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे तभी तो उन बच्चों को HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जैसे भी इन्फेक्शंस का संक्रमण हो गया है, उसका इलाज और उसकी तकलीफें तो अलग से रही है। 90s के बाद ब्लड बैंकिंग के गाइडलाइंस काफी स्ट्रिक्ट होने की वजह से इन बीमारियों का संक्रमण तो काफी मात्रा में कम हुआ है, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि जैसे HIV जैसी बीमारियां है इनमें एक विंडो पीरियड होता है जिसमें ये बीमारी ब्लड में नहीं पाई जाती है पर होती है वहां पे, तो इस तरह से उनका संक्रमण हो जाता है। तो बच्चों को पहले जो बीमारी उसमें और एक नई बीमारी लगी जिसका भी आपको इलाज करवाना पड़ता है, ब्लड अरेंज करना, ब्लड के लिए जो फिल्टर लगता है उसको अरेंज करना, प्लस जो दवाइयां लगती है जो लोहों को कम करने के लिए जरूरी होती है। जो शुरुआती में दवाई थी वो सिर्फ इंजेक्शन के रूप में ही अवेलेबल थी, तो बच्चों को एक इंजेक्शन का पंप कंटिन्यूसली लगा के रखना पड़ता था। अब बच्चा तो इंजेक्शन पूरे दिन भर लगाते रहे ये तो पूरा आप तो नहीं कर सकते हैं, और ये इंजेक्शन महंगे भी होते थे काफी। अब टैबलेट्स का विकल्प आ चुका है, जो पहले वाले टैबलेट्स से काफी सारे साइड इफेक्ट्स के साथ है, नई टैबलेट्स आए उनके साइड इफेक्ट्स कम है पर कीमत ज्यादा है।
1: डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट के पास इतनी योजनाएं होती हैं बच्चों के वैक्सीनेशन के मामले में और भी जो बच्चों के हितकारी जो योजनाएं होती हैं उनके लिए, तो क्या इस बीमारी के इलाज के लिए किसी NGO से किसी अन्य संस्था से मदद प्राप्त हो सकती है या नहीं है?
0: जरूर मदद प्राप्त हो सकती है, लेकिन देखिए एक जानना जरूरी है कि ये जो NGOs है और जितना पेशेंट्स का बर्डन है और इनको हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये मिलने वाली मदद बहुत कम होती है। फिर भी हर जगह पे अलग अलग सोसाइटीज बनी हुई है, जैसे कि एक है थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी जो ऑल इंडिया लेवल पे काम करती है अगेंस्ट थैलेसीमिया करके, एक है एक इंडियन थैलेसीमिक सोसाइटी है, और हर जगह पे रेड क्रॉस से और अलग अलग सोसाइटीज फॉर्म की जाती है। तो हर शहर में जो है थैलेसीमिया सोसाइटी फॉर्म करी गई है। सबसे जो पहले फॉर्म हुई थी वो बंबई के KEM अस्पताल में और JJ अस्पताल में फॉर्म हुई थी, तो वहां पे थैलेसीमिया के लिए स्पेशल फंडिंग होता है। दूसरी है जो एम्स दिल्ली में है, फिर कलकत्ता में है, और हर जगह में जैसे रायपुर है, चेन्नई है, हर जगह ने अपने अपने एक थैलेसीमिया की सोसाइटी बनाई हुई है।
1: माँ बाप अपने मरीज बच्चे के लिए लोकल किसी छोटे टाउन नगर कस्बे में ये मदद चाहे तो क्या करना चाहिए?
0: जब हम लोग एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर करके बात करते हैं तो हम लोग यही कहते हैं कि इस सिस्टम को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। यह जो सिस्टम्स है जो हम लोग बना रहे हैं जो मुख्य शहरों में यानी फर्स्ट टायर या सेकंड टायर सिटीज में ही सिर्फ देखी जाती है, वो हर छोटे मोटे शहर में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उपलब्ध कराई दे सकती है, यानी गवर्नमेंट में उपलब्ध कराई दे सकती है। इसका मुख्य लक्ष्य होता है कि सेफ ब्लड मिलना, और दूसरा होता है कि जो ब्लड के लिए फिल्टर्स लगते हैं ये कम कीमत पे अवेलेबल करवा देना, और तीसरा होता है जो लोह कम करने की दवाइयां होती है ये भी कम कीमत पे उपलब्ध करवा देना। अगर पेशेंट अपने निगड़ित थैलेसीमिया सोसाइटी के अंडर अगर रजिस्टर हो जाता है तो इन सब चीजों में उनको मदद मिल सकती है।
1: अच्छा, जहां तक आपने प्रिस्क्रिप्शन लिखने की जो बात को तवज्जो देते होंगे, मरीज आपके पास भी आते होंगे, तो जो आजकल एक प्रचलन सा चल पड़ा है जेनेरिक दवाइयां जो कि ब्रांडेड दवाइयों के मुताबिक ही लेकिन कम कीमत में होती है, वो भी उपलब्ध है?
0: दुर्दैव की ये बात है कि इस बीमारी में जो दवाइयां चल रही है इसमें ज्यादा जेनेरिक्स आए नहीं है। प्रॉब्लम एक अपनी तरह की सद है, फार्मा कंपनीज भी जो होते हैं ना जेनेरिक्स बनाते हैं जहां पे उन्हें ज्यादा फायदा दिखता है। ये जो बीमारियां है इसमें बहुत सारे मरीज जो होते हैं इन दवाइयों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और बीमारी का जैसे स्वरूप दिखा है जो लाइफ लॉन्ग होता है, तो बहुत बार ये बच्चे अपने इस बीमारी की वजह से दूसरे या तीसरे शतक के आगे जाते ही नहीं है, दशक के आगे।
1: हो सकता है कि हमारे इस प्रोग्राम को सुनकर कोई कंपनी कोई पहल कर दे।
0: जरूर, मैं भी यही चाहूंगा।
1: फिलहाल हम चाहेंगे आप अपनी पसंद का एक कोई गाना यहाँ पर जरूर सुनवाएं।
0: कि वे तो मैं बताना चाहता हूँ कि थैलेसीमिया में जो है हरेक की लड़ाई है, हरेक ने अपनी अपनी लड़नी है, आगे आगे धीरे धीरे तो चलेंगे। एकला चलो रे करके अमिताभ बच्चन की आवाज में जो गाना है कहानी फिल्म से मैं सुनना चाहूंगा।

0: गाना बहुत इंस्पायर करने वाला और बहुत ही प्रेरक आपने सुनवाया। डॉक्टर साहब, थैलेसीमिया की बात चल रही है, इस बीमारी को रोकने के लिए क्या उपाय योजनाएं आपने मन में सोची हैं या आप बताएंगे हमारे सुनने वालों को, जिसमें शामिल होगी बातें बचाव, सावधानियां और रोकथाम।
1: देखिए कैसे होता है कि उपचार से प्रतिबंध भला, ये तो एक सबसे महत्व का ज्ञान होता है और ये सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना ज़रूरी होता है
0: जी।
1: मेन ये चीज़ सीखना ज़रूरी है कि एजुकेशन के माध्यम के द्वारा लोगों को प्रभावित करना, अगर आप लोगों को बता सकते हैं इस बीमारी के बारे में और कैसे रोक सकते हैं, वही सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम हो सकता है। तो मीडिया के जरिए या स्कूल में एजुकेशन के जरिए अगर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं कि इसको कैसे रोका जाए, तो शालेय जीवन में एजुकेशन देना इस बीमारी में एक मुख्य साधन हो सकता है। एक परीक्षण भी किया गया था जहां पे शालेय एजुकेशन देखे, इन्होंने देखा कि इस बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं क्या, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम पाया गया कि बच्चे स्कूल में तो सीख गए लेकिन बड़े होकर उसके बारे में कुछ भी आकलन नहीं किया, उसके बारे में कुछ भी अभ्यास आगे नहीं किया गया। तो दूसरी एक स्ट्रैटेजी इसमें होती है कि कॉलेज के बच्चों में जो आगे चल के अभी शादी करेंगे और बच्चे वगैरह होंगे, तो उनको एजुकेशन देना। ये भी मतलब इसमें जो होता है उनमें सबका टेस्टिंग किया जाता है, ब्लड का परीक्षण किया जाता है, हम लोग जैसे कहते हैं HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसके ये बीमारी पता चल सकती है।
0: जी जी।
1: अगर ये बीमारी पता चल गई तो उसके बाद में उनको एजुकेशन देना कि अगर आप आगे चल के शादी करते हो या जब बच्चे होने वाले हैं तो इसे कैसे रोका जाए। तो ये जो एजुकेशन है जो हम लोग कर सकते हैं 18 से 22 साल की जो उम्र में है, प्री मैरिटल जिसको एजुकेशन कहते हैं, वो कर सकते हैं। पर अभी इसमें भी प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आपने बहुत सारे लड़कियों का ऐसा परीक्षण कर लिया और उसमें आधी बीमारी पाई गई, तो भारत एक ऐसी जगह है जहां पे लड़की को कुछ भी हो तो शादी होना मुश्किल हो जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आते रहता है। तो ये एक दूसरी स्ट्रेटेजी है कि आप ये अवस्था में करवा लीजिए। तीसरा एक जो इसमें चरण आता है, जब शादी हो जाए, शादी के बाद जब बच्चे प्लान करते हैं तो जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो आज सब लोग जाते ही है, उस वक्त पे माँ और पिताजी दोनों का ही टेस्टिंग करना। जब माँ और पिताजी का दोनों का ही टेस्टिंग कर लेते हैं, समझो माँ में आधी बीमारी है और पिता में नहीं है, या पिता में आधी बीमारी है और माँ में नहीं है, तो बच्चे में पूरी तरह से बीमारी आने का कोई भी चांस नहीं होता है। तो इसे आप छोड़ सकते हैं। पिता में भी आधी बीमारी है और माँ में भी आधी बीमारी है
0: जी।
1: अब इसमें जो है 25% चांस होता है कि बच्चे में भी वो बीमारी आएगी, तो उसमें हम लोग ये करते हैं कि जब गर्भावस्था में 8 से 12 हफ्ते के बीच में अंदर के बच्चे का परीक्षण करते हैं, अगर उसे थैलेसीमिया मेजर है यानी 25% जो चांस है, तो उसमें हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी अबॉर्शन की सलाह देते हैं। 75% चांस होता है कि वो बच्चे को आधी बीमारी रहे या पूरी तरह से नॉर्मल रहे, अगर वैसे रहा तो हम लोग प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने की सलाह देते हैं। तो इस तरह से आप थैलेसीमिया मेजर के बच्चे का जन्म होना यानी वो बॉर्न होना से रोक सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, विश्व स्तर पर कहें या दुनिया के मामले में अगर आप सोचें और भारत की तुलना में इसको मद्देनजर रखें, तो इस बीमारी को रोकने के लिए कोई खास कदम उठाए जाने चाहिए आपकी नजर में?
1: देखिए कैसे है कि जागतिक स्तर और भारतीय स्तर ये दोनों ही एक अलग अलग विषय बन जाते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है कि हर जगह की जो एक जीवन प्रणाली या जीवन शैली है वो पूरी तरह से अलग हो जाती है, जो कुटुंब व्यवस्था है वो भी अलग होती है। तो इसी की वजह से जो सारे कदम उठाए गए जागतिक स्तर पर वही भारतीय स्तर पर काम करेंगे कि नहीं, ये कहना आज की तारीख में तो बहुत मुश्किल है। जागतिक स्तर पर जो हम लोग देखेंगे तो अलग अलग सोसाइटी जो फॉर्म की है, जैसे थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी या रेड क्रॉस है, इनके माध्यम द्वारा जो उनमें जन जागृति की गई या उनमें जो परीक्षण किए गए, वैसे ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे होता है, हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इसमें थैलेसीमिया विषय के बारे में जो भी जानकारी होती है, थैलेसीमिया पेशेंट्स के जो राइट्स होते हैं, उनके लिए क्या बेटर सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती है, उसके लिए कोशिश की जाती है। तो हर साल ये 8 मई को मनाया जाता है, जिसमें थैलेसीमिया के बारे में एजुकेशन पूरे समाज को दिया जाता है, थैलेसीमिया पेशेंट्स को समझाया जाता है जिससे उनकी बेटर केयर बनी रहे। तीसरी चीजें कुछ कुछ जगह पे जो उन्होंने किया, जैसे साइप्रस जैसी छोटी सी कंट्री थी जहां पे उन्होंने प्री मैरिटल टेस्टिंग कंपल्सरी किया था, उसके बदले आप शादी नहीं कर सकते हो, तो वो टेस्टिंग कंपल्सरी कही गई, तो उसके वजह से उन्होंने थैलेसीमिया मेजर होने में, बच्चे पैदा होने में तो ड्रॉप पाया लिया, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स को उनके निजी जीवन पे हमला जैसे लगा कि शादी के पहले ये टेस्ट करना कंपलसरी है गवर्नमेंट से। तो कुछ कुछ जो होते हैं बहुत ही रेडिकल विचार हो जाते हैं,
0: उसकी
1: तो
0: इंडिविजुअलिटी को,
1: इंडिविजुअलिटी जो होती है अब जरूरी होता है। तो फिर बाद में ये देखा गया कि जब गर्भावस्था से पहले जब लेडीज आती है गायनेकोलॉजिस्ट के पास फर्स्ट टाइम, ये एक बेटर वक्त है कि उस वक्त उसका और उसके हस्बैंड का परीक्षण किया जाए जिसकी वजह से पता चले कि उनमें ये बीमारी है कि नहीं। दूसरी एक चीज है कि ये परीक्षण जिंदगी में एक ही बार लगता है, जैसे कि जो मेरा ब्लड ग्रुप है ए ग्रुप है तो वही रहेगा जिंदगी भर। वैसे अगर मैं थैलेसीमिया माइनर हूं और मेरा ब्लड टेस्ट किया जाता है तो मैं जिंदगी भर थैलेसीमिया माइनर ही रहूंगा। तो जीवन में एक बार ये परीक्षण होना सही समय पे ये ज्यादा जरूरी है।
0: बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। कामयाब इलाज होता है, एक सावधानी होती है, चाहे वो वैश्विक स्तर पर हो या हमारे भारतीय स्तर पर हो, समझना होगा इसके लिए और उसके मूल में जाना होगा। बहरहाल यहाँ जरूरी होता है कि गीत संगीत का माहौल बने और कुछ गाने की बात हो जाए। कौन सा गीत है?
1: देखिए अभी तक तो मैं पुराने गीत थोड़े सुनाया जा रहा था। एक मेरा बहुत ही प्यारा गीत है, थोड़ा सा मायूसी भरा है पर फिर भी थोड़ा सा दिल के करीब है, रोक पिक्चर का मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई आपने मानसिक स्तर को हिलाने वाला सुनवा दिया। भारत का जो प्रादेशिक और सांस्कृतिक रचनात्मक माहौल है उसको यदि ध्यान में रखें तो बहुत सारी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग जलवायु होती है, वहाँ का कल्चर अलग होता है। तो आपकी राय क्या है?
1: पूरी दुनिया में उपाय योजना की गई, वही भारत में लागू होगी कि नहीं, ये ज्यादा समझना जरूरी है। हमें इस देश की रचना को, इसे कुटुंब व्यवस्था को समझना ज्यादा जरूरी है। कोई भी नियम बनाने से पहले या कोई उपाय योजना करने से पहले तो ही वो सफल हो सकती है। कंपल्शन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हर नागरिक को ये समझना जरूरी होता है कि एक थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा होना एक परिवार के ऊपर और वैसे ही देश के ऊपर एक आर्थिक बड़ा बोझा होता है, और इससे आपके जो सांसारिक जीवन पे है उस पर भी धीरे धीरे असर पड़ने लगता है। तो जो उपाय योजना की जाती है ये आपके हित में ही होती है, ये समझना जरूरी है। एक संस्कृति को देखें, जो पैट्रियार्कल हम लोग कहते हैं, जो मुख्य सिस्टम है, तो इसमें अगर लड़की में कुछ दोष है, कुछ कुछ फैमिलीज में ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो आगे चल के ये मुश्किलें बढ़ा सकता है। और अगर देखेंगे तो जिसको टेस्ट किया है उसके भी जीवन में मुश्किलें पैदा कर सकता है, तो इसके लिए उनका काउंसलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा मेरे ख्याल से वो है पोस्ट मैरिटल, बच्चे होने से पहले उनका जो टेस्टिंग किया जाएगा,
0: वो
1: जिसमें आप जीवन साथी तो चुन चुके हैं, तो अभी बच्चा होने से पहले जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, किसी वक्त पे जाते हो, तभी ये थैलेसीमिया के लिए टेस्टिंग करना ज्यादा जरूरी है। उससे क्या होगा कि आपको एक अंदाजा आ जाएगा, समझो आधी बीमारी है, एक में नहीं है, तो कुछ आगे जाके चिंता करने का विषय ही नहीं है, दोनों को नहीं है तो भी चिंता करने का विषय नहीं है। जब दोनों में आधी आधी थैलेसीमिया की बीमारी या और कोई हीमोग्लोबिन से निगड़ित बीमारी है, तो उसका फिर गर्भधारणा के वक्त परीक्षण किया जा सकता है 8 से 12 हफ्ते में, और फिर वो परीक्षण अगर सही है और बच्चे को ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर बड़ी बीमारी यानी थैलेसीमिया मेजर बीमारी है, उसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगने वाला है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं।
0: हाँ।
1: तो ऐसे बच्चे का पैदा हम लोग रोक सकते हैं। और तीसरी चीज महत्व की ये है कि जब ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके जो माँ बाप है वो एक इफेक्टिव जरिया होते हैं उस फैमिली में इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। ये हमें जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए जब आप खुद उससे पीड़ित होते हो तब आप शायद उसकी ग्रेविटी, हम लोग बोलते हैं सिचुएशन ग्रेविटी, ज्यादा तरीके से समझ सकते हो और ज्यादा अपने लोगों में उसे कन्विंस कर पाते हो, तो वो एक जरिया है। और तीसरा और इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिटी बेस जो हम लोग कहते हैं सर्चेस से होते हैं, तो वहां पे अगर आप कम्युनिटी बेस्ड टेस्टिंग करवाते हो तो आप जानते हो कि ये सारी बीमारियां वहां पे है, तो जिंदगी में एक ही बार ये टेस्टिंग करवानी है तो आप जान सकते हो और आगे के लिए आप प्लान कर सकते हो।
0: और डॉक्टर साहब, एक बात यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि कई मरीज जो आपके पास आते हैं, लाए जाते हैं परिवार के साथ, मेल चाइल्ड होते हैं या फीमेल चाइल्ड होते हैं?
1: देखिए कैसे है कि भगवान की दया से इसमें मेल और फीमेल ये बीमारी ज्यादा फर्क नहीं करती है। ये जो बीमारी होती है अपने, अगर आप इंसान की क्रोमोसोम या जेनेटिक रचना जाने तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें जो 44 क्रोमोसोम होते हैं हम लोग इसको ऑटोसोम कहते हैं, 2 क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई जो सेक्स को डिसाइड करते हैं। ये जो बीमारी होती है ये सेक्स क्रोमोसोम से निगड़ित नहीं होती है, जो बचे हुए 44 जो ऑटोसोम्स हम लोग कहते हैं उससे निगड़ित होती है। तो इसी की वजह से मेल या फीमेल ये बीमारी कोई अंतर नहीं करती, दोनों को इफेक्टिवली उतनी ही अफेक्ट करती है।
0: बहुत ही प्रभावशाली बात आपने बताई है, और हम एक और गाना यहाँ पर आपसे सुनना चाहेंगे।
1: अगला गाना तो मेरे दिल के थोड़ा करीब है, क्योंकि मेरी जो बेटी है इस गाने को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और हमेशा नाच के भी दिखाती है, और ये गाना है बाजीराव मस्तानी पिक्चर का, दीवानी मस्तानी।

0: तो बाजीराव मस्तानी फिल्म के इस गाने के बाद वक्त की पाबंदी को मद्देनजर रखते हुए, घड़ी की ओर नजर डालते हुए हम चाहेंगे कि चलते चलते इस बीमारी के बारे में कोई फाइनली एक संदेश आप देना चाहें तो क्या कहेंगे?
1: जब मैंने हिमाटोलॉजी ये ब्रांच चुनी अपने लिए, उसके बाद जब मैंने काम किया तो इन छोटे छोटे बच्चों को देखने के बाद थैलेसीमिया मेरे दिल के करीब एक विषय बन गया है। तो मैं आज की युवा पीढ़ी को और सारी जनता को यही एक संदेश देना चाहूंगा। देखिए, थैलेसीमिया वाले बच्चे ना ही कोई एक शाप है, ये हमारी जो अज्ञानिकता है उसके वजह का एक कारण है, जो है उसी की वजह से वो बच्चे का जन्म हुआ है। तो इस बच्चे को निग्लेक्ट मत कीजिएगा, इस बच्चे को जो भी उपचार जरूरी है उस बच्चे का जरूर ये उपचार करवाइएगा, उसके तरफ ध्यान दीजिएगा। और अपने आप को और अपने जो परिवार है और जो अपने दोस्त है उनको आप एजुकेट कीजिएगा कि ये बीमारी को कैसे रोक सकते हैं। तो इस बीमारी को रोकथाम करना यही इसका मुख्य इलाज है। हम लोग इस बीमारी को जड़ से तो मिटा नहीं सकते हैं, लेकिन इसे जरूर रोक सकते हैं। तो आप जरूर अपनी टेस्टिंग करवाइएगा, जानिएगा कि आपके रक्त में ये गुण है या नहीं है, और फिर आगे बढ़िएगा। क्योंकि अगर हमने आज ये रोकथाम नहीं की तो ये बच्चे दिन ब दिन बढ़ते ही जाने वाले हैं और आपके फैमिली के ऊपर और अपने देश के ऊपर एक नया आर्थिक दबाव डालने वाले हैं।
0: बहुत ही अच्छी गहरी सूक्ष्म जानकारी आसान शब्दों में आपके लफ्जों से निकली है, और हम चाहेंगे कि इस तरह की जागरूकता बनी रहे और सुनने वाले इसका पालन करें। जो जो इससे ग्रस्त हैं वे जरूर जागरूक होकर अन्य लोगों को भी जागरूक बनाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आज के इस थैलेसीमिया विषय पर आपने उपचार और बचाव और सावधानियां तमाम सारी जानकारी दी, तो विविध भारती की ओर से, सुनने वालों की ओर से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं।
1: शुक्रिया राजेंद्र जी।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध हेमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर आशय प्रमोद करपे से। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया वंदना ठाकुर ने, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनीता वेस्ली पटेल। अब दीजिए आज के इस कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
2: आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो सातों दिन खुलता है। हर रोज सुनिए पिटारा।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग में।

हरिओम शरण की गाई इस भक्ति रचना के साथ हमने शुरुआत की आज के रंग तरंग कार्यक्रम की। चलिए अब बढ़ते हैं अगली रचना की ओर।

0: मीराबाई का ये भजन आप सुन रहे थे चित्रा सिंह की आवाज में, धुन बनाई थी जगजीत सिंह ने। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर,
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने के

सुधा मल्होत्रा की आवाज में आप सुन रहे थे ये गजल, तर्ज बनाई थी जगजीत सिंह ने। चलिए अब जगजीत सिंह की आवाज की ओर बढ़ते हैं, कलाम है जावेद अख्तर का।

तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। दिल भी तू जहां भी तू एल्बम से जगजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे जावेद अख्तर का कलाम।

0: मधुरानी की तर्ज पर जमीर काजमी का ये कलाम आप सुन रहे थे छाया गांगुली की आवाज में इश्क एल्बम से।
1: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
2: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
1: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
2: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि तो उनका प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर।

मेरा सब कुछ तो अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तो वो है जिसके

फैज अनवर ने इस गाने को इस गाने को लिखा था सोनू निगम की आवाज जान एल्बम से ये गाना आप सुन रहे थे। और अब हम बढ़ते हैं जावेद अली और आकांक्षा शर्मा की आवाजों की ओर।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: चलिए बढ़ते हैं अब रंग तरंग कार्यक्रम में अगली रचना की ओर। शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र के बोल, मन्ना डे और साथियों का स्वर। जी हाँ, फिल्म का नाम तीसरी कसम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वरर नामत शपथ लौ जे विधि द्वारा स्थापित भारतर संविधानर प्रति मैं प्रकृत विश्वास आरु आनुगत्य पोषण करिम।
0: श्री शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें से दो भाजपा के और एक एक सहयोगी दल असम गण परिषद तथा बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के हैं। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी बार सरकार है। श्री शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों द्वारा पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा के साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति में उलटफेर हुआ है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने

विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती के कार्यक्रम यादों की महफिल में। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार और उषा मंगेशकर के गाए इस गाने के साथ।

0: टैक्सी चोर फिल्म का ये गाना था। इसी गाने के साथ शुरुआत हुई आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की। किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाजें थीं। अनजान ने इस गाने को लिखा था, बप्पी लहरी का संगीत। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। साथियों, बॉलीवुड गानों में हवाओं, पवन और फिजाओं का जिक्र बड़ी ही खूबसूरती से किया गया है, जो अक्सर रोमांस, उदासी या मौसम के मिजाज को दर्शाता है। तो आज हवाओं का जिक्र करने वाले

0: विश्वनाथ फिल्म का बहुत ही मीठा ये गीत आप सुन रहे थे। एमजी हशमत ने इसे लिखा था और संगीत तैयार किया था राजेश रोशन ने। चलिए अब हम भी हवा के साथ साथ आगे बढ़ते हैं।
1: अरे

सीता और गीता फिल्म से ये दो गाना आपने सुना। किशोर कुमार और आशा भोसले के जुगल स्वर थे, आनंद बख्शी की रचना थी, राहुल देव बर्मन का संगीत। साथियों, हवाओं का जिक्र करते गीत हर दौर में लिखे गए हैं। हर दौर के गीत की जो हवाओं का जिक्र करते गीत हैं उनकी अपनी ही कहानी है। अब ये गीत कौन सी कहानी कह रहा है, आइए सुने।

शंकर जय किशन के संगीत से सजा ये गाना रमेश शास्त्री ने लिखा था, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम था बरसात। साथियों, ठंडी हवाएं और इंतजार, इनका रिश्ता भी बड़ा पुराना है। ठंडी हवाएं और इंतजार गीतों में जब ढलते हैं तो बड़े ही खूबसूरत लगते हैं।

0: नौजवान फिल्म से ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर का गाया हुआ। साहिर लुधियानवी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार सचिन देव बर्मन ने। हवा का जिक्र करते कुछ और सुरीले गानों के साथ हाजिर होते हैं अभी, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर,
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने

मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे शैलेंद्र की रचना, एस एन त्रिपाठी का संगीत, फिल्म का नाम था संगीत सम्राट तानसेन। अब बढ़ते हैं आशा भोसले की आवाज की ओर। रवि का संगीत, शकील बदायूनी के बोल, फिल्म का नाम दो बदन।

दोस्तों, आपने ये गाना सुना आशा भोसले की आवाज़ में। शकील बदायूनी की रचना, रवि किया संगीत और फिल्म थी दो बदन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। और आज का ये कार्यक्रम सचा है हवाओं का जिक्र करते कुछ सुरीले गानों के साथ।

शांतनु मोइत्रा का संगीत आप सुन रहे थे। स्वानंद किरकिरे के बोल शान और शांतनु मोइत्रा की आवाजें थीं, और अब हम बढ़ेंगे लता मंगेशकर की आवाज की ओर। पहचाना ये गाना, बहुत सुना सुना सा है, जरा गौर से सुनिए।

0: लिबास फिल्म से ये गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार की आवाज है अगले गाने में, उस गाने को हम और आप सुनेंगे साथ साथ, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार,
2: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
1: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
2: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर।
0: तो चलिए अब उस गाने की ओर बढ़ते हैं जिसमें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है।

हाथी मेरे साथी फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आखिरी गाने की बारी। तो भाई हवाओं का जिक्र करता ये गीत है और ये गीत ना बजे ऐसा तो हो नहीं सकता। हेमंत कुमार का संगीत, गुलजार की रचना, किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम दो दुनी चार।

तो साथियों, दो दुनी चार फिल्म का ये गाना बना आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप बने रहिए विविध भारती के साथ, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। जी हाँ, आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, हम अभी हाजिर होते हैं सुरीला सफर के साथ।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर सरमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधिर द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करी।
1: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने

0: पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज सुबह विशेष अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ, सहायक नर्स मिडवाइफ और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रुपये नकद और पदक शामिल है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1041 अंक लुढ़ककर 74,975 पर, जबकि निफ्टी 297 अंक की गिरावट के साथ 23,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma today took oath as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered the oath of office in secrecy to Dr. Sarma at a ceremony held at the Veterinary College ground in Khanapara, Guwahati.
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরের নামত শপথ লওঁ যে বিধির দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি মই প্রকৃত বিশ্বাস আর আনুগত্য পোষণ করিম।
1: Along with Dr. Sarma, four MLAs were also sworn in as cabinet ministers. They include Rameshwar Teli and Ajanta Niyog from the BJP, Atul Bora from Ahom Gona Parishad, and Charan Boro from Bodoland People's Front. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several union ministers and chief ministers of NDA-ruled states attended the ceremony. With this, Dr. Sarma has become the first non-Congress leader in Assam to serve consecutive terms as Chief Minister. The National Democratic Alliance NDA returned to power for a third consecutive term in the state, securing 102 seats in the 126-member Assam Legislative Assembly. The Bharatiya Janata Party emerged as the dominant force with 82 seats, while its allies, the Ahom Gana Parishad and the Bodoland People's Front, won 10 seats each. The National Testing Agency, NTA, has decided to cancel the NEET UG 2026 examination conducted on the 3rd of this month for admission to undergraduate medical education. In a social media post, NTA informed that the decision has been taken in the interest of students and in recognition of the trust on which the national examination system rests. The agency also stated that the government has decided to refer the matter to the Central Bureau of Investigation, CBI, for a comprehensive inquiry into the allegations of paper leak. The agency said it will extend full cooperation to the Bureau and provide all materials, records and assistance required for the investigation. It said the decision was taken following inputs examined by the NTA in coordination with central agencies and investigative findings shared by law enforcement agencies. NTA said the examination will be reconducted on dates to be notified separately. Prime Minister Narendra Modi has hailed the decisions of the first cabinet meeting under West Bengal's newly elected Chief Minister Shubhendu Adhikari. In a social media post, the Prime Minister said the welfare of people of West Bengal is their top priority. Mr. Modi expressed happiness

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की परीक्षा रद्द की। सीबीआई करेगी पेपर लीक मामले की जांच। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द। राज्य सरकार ने झारखंड सैंड माइनिंग संशोधन नियमावली 2026 जारी की। बालूघाट आवंटन के नियमों में बदलाव से अब लीज लेना होगा आसान। प्रदेश भाजपा ने जेटेट नियमावली से भोजपुरी, मगही और अंगिका को बाहर करने का निर्णय वापस लेने की मांग की। वित्त मंत्री ने कहा, कमेटी का निर्णय अगली परीक्षा पर होगा लागू। झारखंड हाईकोर्ट ने अधिसूचित पेसा नियमावली को उसकी मूल भावना के विपरीत लागू करने पर सरकार से मांगा जवाब। और जेएससीए ने प्रस्तावित झारखंड टी20 क्रिकेट लीग के पहले संस्करण के फ्रेंचाइजी अधिकारों के लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई तक बढ़ाई। और अब समाचार विस्तार से। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की परीक्षा रद्द कर दी है। यह परीक्षा 3 मई 2026 को देश भर में आयोजित की गई थी। पेपर लीक के कारण यह परीक्षा रद्द की गई है। इस मामले की जांच के लिए एनटीए सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज सीबीआई को सौंपेगी। परीक्षा की नई तारीख का

0: अंगिकापुर तहसील, पूरा पलामू, गढ़वा, धनबाद, बोकारो, रांची, पटिया, पूरा संथाल परगना, लगभग सभी जगह बोले जाते हैं कि इस राज्य की अधिकांश जनता के साथ सरकार ने अन्यायपूर्वक निर्णय लिया है, सरकार को इस निर्णय को बदलना चाहिए और बदलना होगा।
1: वहीं झरिया विधायक रागनी सिंह ने कहा कि भाषा किसी क्षेत्र या राजनीतिक दल की नहीं बल्कि लोगों की पहचान और सम्मान से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि हर भाषा को सम्मान मिलना चाहिए।
2: झारखंड में भी हमको लगता है कि 80% से 90% बिहारी है, तो उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। आप हर किसी को सम्मान दीजिए, लेकिन ऐसा निर्णय ना लीजिए कि किसी को ठेस पहुंचे और कोई आंदोलन को उतरना पड़े, यहाँ नहीं तो सदन में।
1: इधर इस मामले में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि उच्च स्तरीय कमेटी जो निर्णय लेगी वह अगली परीक्षा पर लागू होगा, वर्तमान जेटेट परीक्षा पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। भाजपा के वरीय नेता चंपाई सोरेन ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार के संरक्षण में संताल परगना की डेमोग्राफी बदल रही है। बोकारो परिसदन में आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि पिटरवार प्रखंड की उलगड़ा पंचायत में एक विशेष समुदाय के लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया है।
3: ये अबुआ सरकार और आदिवासी के जमीन पर जबरन कब्जा हो रहा है। सरकार तो हर जगह उसी तरह हो रहा, पूरे संताल पर

0: को किया है। झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में दिव्यांग आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने के मामले में झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस MS सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने आयोग को शपथ पत्र दाखिल कर जानकारी मांगी कि दिव्यांग आरक्षण श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों की तुलना में याचिकाकर्ता वैष्णवी के प्राप्तांक अधिक हैं या कम। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पोलिंग पर बल दिया है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंटरी मेंटेन है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही है, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं।
0: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध से उत्पन्न स्थिति से निपटने और राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 आह्वानों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह आग्रह राजनीतिक नहीं है बल्कि राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित है। झारखंड समेत देश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जा रहा है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नर्सों को देश की स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ और आशा का स्तंभ बताया। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के इलाके से पुलिस ने भारी मात्रा में वोटर कार्ड, ATM कार्ड और पैन कार्ड बरामद किया है। पुलिस ने सभी दस्तावेजों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी संगीता कुमारी ने कहा कि संबंधित विभाग और बैंकों से संपर्क कर दस्तावेजों की सत्यता की पुष्टि की जाएगी। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ शुरू हुआ। सेंसेक्स 1025 अंक गिरकर 74,990 पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 299 अंक फिसल कर 23,526 पर कारोबार कर रहा है। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,42,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,78,000 रुपए प्रति किलो है। रांची के मोरहाबादी इंडोर स्टेडियम में द्वितीय रांची जिला पेंचक सलार चैंपियनशिप 2026-27 का आयोजन किया गया। इसमें 170 बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। मुख्य अतिथि आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि पेंचक सलाट आत्मरक्षा, एकाग्रता और अनुशासन विकसित करने का उत्कृष्ट माध्यम है। वहीं रांची जिला पेंचक सलाट एसोसिएशन ने बताया कि झारखंड के खिलाड़ियों ने गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSCA ने प्रस्तावित झारखंड T20 क्रिकेट लीग के पहले संस्करण के फ्रेंचाइजी अधिकारों के लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। एसोसिएशन की ओर से जारी सूचना के अनुसार अब 15 मई की रात तक अपनी बोली जमा की जा सकती है। इससे पहले अंतिम तिथि 11 मई निर्धारित थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG की परीक्षा रद्द की। CBI करेगी पेपर लीक मामले की जांच। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द। राज्य सरकार ने झारखंड सैंड माइनिंग संशोधन नियमावली 2026 जारी की। बालूघाट आवंटन के नियमों में बदलाव से अब लीज लेना होगा आसान। प्रदेश भाजपा ने JTET की नियमावली से भोजपुरी, मगही और अंगिका को बाहर करने का निर्णय वापस लेने की मांग की। वित्त मंत्री ने कहा कमेटी का निर्णय अगली परीक्षा पर होगा लागू। झारखंड हाईकोर्ट ने

मोहम्मद रफी की गायकी का ये बड़ा ही चुलबुला सा अंदाज आपने सुना एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म के इस गाने में। एक साथी ने लिखा है, वाह भाई वाह, एन इवनिंग इन पेरिस का ये जबरदस्त गीत, हेलीकॉप्टर पर शम्मी कपूर और समुंदर में शर्मिला टैगोर। और एक साथी ने लिखा है कि आसमान से आया फरिश्ता शम्मी कपूर है, शर्मिला टैगोर को प्यार का सबक सिखलाने पेरिस के आसमान में उड़ता हुआ आया है। क्या बात है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि अगर आसमान का एक तारा आपकी कोई एक ख्वाहिश पूरी करे तो वो क्या होगी। एक साथी ने लिखा है कि एक ख्वाहिश है बस इस जिंदगी में, तुम साथ रहो हर खुशी और हर गम में, आपके सवाल का जवाब है। क्या बात है, आपका जवाब हमें मिल गया। बहरहाल कि आपकी ख्वाहिश यही है। तो भाई दूसरे साथी लिख रहे हैं कि कमेंट शामिल होने पर मन अजय सा लगता है यज्ञ सफल हुआ, लंबे इंतजार का मीठा फल प्राप्त हुआ। वाह क्या बात है भाई, मैं समझ सकती हूँ आप सबकी भावनाओं को। एक साथी लिख रहे हैं कि काफी दिन बाद आपका आना हुआ और आपको सभी श्रोताओं को नमस्कार है। जीवन का सुकून वहां मिलता है जहां हरियाली, पानी, नदियों की कलकल, झरनों का कोलाहल, चिड़ियों की चहचहाहट हो, और इसी को बचाकर रखना हमारा काम है। बिल्कुल सही बात। चलिए एक बार मैं टेक्स्ट आपको फिर से पढ़कर बताती हूँ, और वो साथी जो अब तक शब्दों का चुनाव नहीं कर पाए हैं उन्हें शायद सहूलियत हो जाए। तो आज का टेक्स्ट है, शाम की नरम चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनती है तो आसमान पर टिमटिमाते तारे जैसे मोहब्बत के अफसाने लिखते हैं। चांद अपनी ठंडी रोशनी से दिलों के अंधेरों को सहलाता है और सूरज हर सुबह ये एहसास दिलाता है कि उम्मीद अब भी जिंदा है। इंसान सारी उम्र मोहब्बत, ख्वाब और सुकून की तलाश में भटकता रहता है, मगर जमाना अक्सर उसे अपने उसूलों में बांध देता है। फिर भी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत सच्चाई यही है कि सच्चा दिल हर अंधेरी रात के बाद अपने लिए एक नया आसमान खोज ही लेता है, और आपको खोजने हैं इनमें से शब्द। एक कमेंट आया है कि आपने सही कहा, जो भी फैसला हो अच्छा या बुरा हमें दोनों को स्वीकार करने में अक्सर वक्त लगता है, मगर वक्त के साथ देखें तो सही होता है। अक्सर दुनिया के नियम हमें बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सच्चा दिल हमेशा उन बेड़ियों से ऊपर उठकर अपनी राह खुद तलाश लेता है। आंतरिक शक्ति ये विचार स्पष्ट करती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा सच्चा दिल है, जो अंधेरे से डरता नहीं बल्कि नया आसमान खोजने का साहस रखता है। एक साथी लिख रहे हैं कि भाई बड़ी खूबसूरत है, उत्सुकता दिलचस्पी से मैं सुन रहा हूँ, गीतों का आनंद ले रहे हैं हम, आप आए बाहर आई और आपके कार्यक्रम में बहुत सुकून से भीषण गर्मी में ठंडक पहुँच रही है। बहना जी बहुत बहुत बधाई, मंगलमय शुभकामनाएं। तो आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमय शुभकामनाएं, आप सभी का दिन शुभ हो। तो वहीं एक कमेंट में हमारे साथी ने लिखा है, अभी तक के सुरीले सफर में ये महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि कुछ गीत रिपीट कम हो रहे हैं, कुछ अनसुना गीत, कुछ कम सुने गीत सुनने को मिल रहे हैं। एक बड़ा ही प्यारा सा कमेंट है और बड़ी ही उसकी जो शब्द हैं बहुत ही सुंदरता से चुने गए हैं। लिखते हैं कि हिंदी फिल्म गीतों और कविताओं में चंद्रमा को अक्सर प्रेम का गवाह और प्रेमी के सुंदर चेहरे का प्रतीक माना जाता है। लेखकों ने चंद्रमा की तुलना नायिका के मुखड़े से की है, ये प्रेमियों के लिए शांति और शीतलता का प्रतीक है। पूर्णिमा की रात को विशेष रूप से रोमांटिक माना जाता है, जो मिलन और विरह दोनों भावनाओं को जगाती है। भारतीय संस्कृति में चांद केवल एक खगोली पिंड नहीं है, बल्कि ये भावनाओं की अभिव्यक्ति

का एक सशक्त माध्यम है। गीतों में चांद से बातें करना या उसे संदेश वाहक बनाना प्रेमियों की एक पुरानी पहचान रही है। साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से चंद्रमा प्रेमियों की पहचान है, क्योंकि यह मानवीय भावनाओं, विशेषकर प्रेम और सौंदर्य को प्रतिबिंबित करने वाला सबसे प्रमुख प्राकृतिक तत्व है। बहुत ही अच्छी बात लिखी है इन्होंने। तो वहीं दूसरे साथी लिख रहे हैं कि भाई मेरी लिखी हुई इबारत का पहला गीत शामिल, आसमान से आया फरिश्ता। तो क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको।

एक कमेंट में लिखा है कि वही सुरीला सफर का हम और हमारा बेटा ऐसे इंतजार करते हैं जैसे कोई मेहमान आने वाला हो, क्या बात है। और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि अभी मैं ऑटो में हूँ, बस घर पहुँचते ही हम आपके साथ आराम से इस कार्यक्रम को सुनेंगे। तो बिल्कुल आप आहिस्ता आहिस्ता सहूलियत के साथ घर पहुँचे तब कार्यक्रम का आनंद लें। साथियों हर शाम एक बड़ा ही सुरीला सा पयाम लाती है, आप बताइएगा कि आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम उसकी कोई याद हमारे साथ साझा कीजिए। यकीनन शाम की चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनने लगती है तो नील गगन पर टिमटिमाते हैं तारे, तो ऐसा लगता है जैसे मोहब्बत अफसाने लिख रही हो। तो जब जिक्र शाम का चला है तो क्यों ना शाम से जुड़ा एक गाना हो जाए। बहरहाल जो गाना मैं प्ले करने वाली हूँ वो अभी तक मुझे आप सबकी लिस्ट में कहीं नहीं दिखा। प्लीज अपने मन को टटोलिए, कहीं ये गाना आपके दिल में तो नहीं है। जरा बताइए इसके शायर का नाम।

0: तो भाई ये गाना था कानून और मुजरिम फिल्म से, आवाजें थी सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर की। हमने पूछा था इसके शायर कौन है, चलिए उसकी बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने कितने

इस खूबसूरत से गाने के लिए हमने पूछा था इसके शायर का नाम, तो कुछ हमारे पास कमेंट्स आए हैं। आप सब ने लिखा है कि इसके शायर थे अहमद वसी। जी हाँ, अहमद वसी का ये कलाम था, फिल्म थी कानून और मुजरिम। और इसको स्क्रोलिंग के बाद मुझे न जाने कितने गानों में, कितने कमेंट्स में ये गाना नज़र आया। आप सबकी पसंद शायद मुझसे काफ़ी हद तक मिलती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में मिलते जुलते गानों को आपने भी चुना। हमारे एक साथी ने लिखा है कि शाम मेरी मसूरी में गुजरी थी, बहुत ही अच्छा, ढलते सूरज के साथ वो सूरज की किरणें, पहाड़ों के पीछे से वो छुपना, वो नज़ारा बहुत सुंदर था। मैंने फ़ोटो खींचकर अभी भी जो मेरे पास है, सच में शाम तो मुझे बहुत अच्छी ही लगती है। मैं हर रोज़ ही, कल ही मैंने एक फ़ोटो खींची है। जैसा कि हमने पूछा भी था कि आपकी सबसे खूबसूरत यादगार शाम कौन सी है, आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। वैसे होता है ना साथियों कि हम जब अपने अनुभव साझा करते हैं तो अनुभव किसी दूसरे के लिए आशा की किरण बन जाते हैं, उनके होठों की मुस्कुराहट बन जाते हैं। एक कमेंट में साथी ने लिखा है कि हाँ जी, शाम तो हर किसी को अच्छी लगती है। मेरी मम्मी के शाम के टाइम

जब शादी नहीं हुई तो वो नानी के घर नदी के किनारे जाया क्या लिखा है इन्होंने, जाया करती थी। अरे वाह। एक कमेंट में साथी ने लिखा है, मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी शाम वो है जब मेरी कक्षा 12 का बोर्ड का परिणाम आया था और मैंने 96-96% के साथ पूरे गांव में टॉप किया था। तो भाई सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। और आगे लिखा है कि अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब मिलने आए हुए थे और मेरे माता पिता की आंखों में गर्व की चमक को देखकर मेरे लिए वो शाम अमिट हो गई। बिल्कुल, बहुत खुशी का पल होता है माता पिता के लिए, गर्व का पल होता है। माता पिता अपने बच्चों से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं और जब वो उम्मीदें साकार हो जाती हैं तो यकीनन उनका सर गर्व से उठ जाता है। एक साथी ने लिखा है कि अपने वादे के मुताबिक एक छोटे से अंतराल के बाद मैं आपके सामने कुछ संभावित गीतों की फहरिस्त पेश करता हूं। ये आपकी लिस्ट में से मेल खा लें तो मैं उसे अपनी खुशनसीबी समझूंगा। इन्होंने कुछ गाने लिख भेजे हैं। आगे लिखते हैं कि ये मेरे कुछ तराने हैं, अगर आपकी लिस्ट से मेल खाएं तो बड़ी खुशी महसूस होगी, अगर ना भी मेल खाएं तो कोई गम नहीं, अगली बार फिर नई उम्मीद के साथ कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी, ये उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। और एक साथी ने लिखा है कि जैसे कि एक आसमान का एक तारा हमारी कोई ख्वाहिश पूरी करे तो वो क्या होगी। तो एक साथी लिखते हैं कि ख्वाहिश पूरी करने की बात हो तो मैं यही ख्वाहिश मांगूंगी कि मेरे वे सभी जो मुझसे बिछड़ गए हैं वे मुझे फिर से मिल जाएं। तो एक साथी लिखते हैं कि अपनी ख्वाहिशों की बात पूछी है तो इंसान की जिंदगी किसी किसी की पूरी होती है, विविध भारती के सिवा कोई चैनल नहीं है, बस यही मेरी ख्वाहिश है। तो बस जुड़े रहिए विविध भारती के साथ। एक कमेंट आया है, लिखते हैं, दुनिया में सबसे अच्छी चीज जिसे इंसान को स्वीकार करना चाहिए वो है जीवन की वर्तमान स्थिति को प्रेम और समझदारी के साथ स्वीकार करना। इसे ही स्वीकार कहते हैं जो मन की शांति, संतोष और हर हाल में खुश रहने की कुंजी है, क्योंकि जीवन हमेशा हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलता। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है कि हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलता। हर शाम अपने समय पे आती है, सूरज अपने समय पे उदय होता है और हर सुबह सूरज का उदय हमारे अंदर उम्मीद जगाता है, जीने का हौसला देता है कि उठो जागो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करो। तो सुनिए ये गाना, बताइए फिल्म का नाम।

हेमंत कुमार का गाया ये गाना आप सुन रहे थे और हमने पूछा था इस फिल्म का नाम, आप सभी ने लिखा हरिश्चंद तारामती फिल्म लाजवाब गीत हेमंत कुमार जी की आवाज में। तो भाई एक साथी लिख रहे हैं कि बेहतरीन गीत है ये हरिश्चंद तारामती फिल्म से, तो दूसरे साथी बहुत खुश हैं, उन्होंने लिखा है और उनकी खुशी दोगुनी हो गई है और उनको हम बहुत बहुत बधाई भी दे रहे हैं, आप सबको बधाई। और लिखते हैं कि मेरी इबारत का दूसरा गीत भी शामिल, वाह सूरज रहे तू जलते रहना। तो भाई आप सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई कि आप सबकी पसंद हमसे मिल गई आज के इस कार्यक्रम में। एक कमेंट पे लिखते हैं कि विविध भारती सुरीली धड़कन शायराना तान आप सभी को नमस्कार, और सुरीली धड़कन के लिए इस नए निराले मनोरंजक कार्यक्रम सुरीला सफर में आज प्रकृति के सौंदर्य को जिस तरह समाहित किया गया है काबिले तारीफ है, और दोपहर की चिलचिलाती धूप में ये गीत ठंडी फुहार का काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने क्या लिखा है कि जिंदगी में कई शाम ऐसी आई जो यादगार बन गई और उम्मीद है जब तक जिंदगी है अपनों के प्यार बदौलत ऐसी शाम बार बार आएंगी। पर आज जिक्र करेंगे अभी के लेटेस्ट शाम का, जब अपनी शादी की सालगिरह पति और बेटी के साथ मनाई, खास इसलिए थी कि बेटी का योगदान था इस शाम को स्पेशल बनाने में। कई सालों से पढ़ाई और जॉब के कारण बच्चे हर बार साथ नहीं होते, जब होते हैं तो वही समय स्पेशल हो जाता है। यकीनन अपने परिवार के साथ बिताया हर समय, हर सुबह शाम दिन रात बहुत स्पेशल होती है, यादगार होती है। एक साथी ने लिखा है घनी काली रात के बाद नया सवेरा आशा, सकारात्मकता और नई शुरुआत का संदेश लाता है, ये जीवन की कठिनाइयों के बाद उजाले का आश्वासन देता है, ये मुहावरा दर्शाता है कि हर अंधेरे दौर के बाद रोशनी जरूर आती है, जैसे हर रात सूर्योदय के साथ समाप्त होती है। कविताओं और प्रेरणादायक लेखों में इसे हार के बाद जीत या निराशा के बाद खुशी के रूप में चित्रित किया जाता है, ये हमें धैर्य और आशावाद रखने की सीख देती है। और हमारे साथियों ने बहुत सारे गाने वाह लिख के भी भेजे हैं। एक साथी ने दो पंक्तियां लिख भेजी हैं, सूरज के डूबते ही आसमान में रंग बिखर जाते हैं, सूरज के डूबते ही आसमान में रंग बिखर जाते हैं, जैसे शाम के साथ दिल में यादों के दीप जल जाते हैं। क्या बात है। यकीनन साथियों जब रात गहराती है और आसमान तारों से भर जाता है, तो ऐसे में कोई ऐसा शख्स जिसकी बातें आज भी आपके दिल को सुकून देती हों, उस एहसास को हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि किसी की उम्मीद बन सकती है आपकी बातें, आपके अनुभव। वैसे जब बातें तारों की चल रही हैं तो ये गाना सुनिए और ज़रा बताइए। और वैसे ये गाना मुझे आपकी लिस्ट में मिल चुका है बहुत सारे साथियों की, बहुत ही प्यारा गाना है, इसके गीतकार और संगीतकार कौन है सुनिए ज़रा।

बहुत ही मीठा गाना आपने सुना, मौसी फिल्म से था और हमने पूछा था गीतकार और संगीतकार का नाम। आप सभी ने बहुत प्यार से लिखा है और यहाँ तक कि आप सब ने इसका सन भी बताया कि किस सन में ये पिक्चर आई थी। तो बहरहाल गीतकार भरत व्यास और संगीत वसंत देसाई का था और इसमें गायक स्वर थे तलत महमूद और लता मंगेशकर के। हमारे एक साथी लिखते हैं कि सूरज रे जलते रहना, ये गाना सुनते ही मुझे उन वीर वीरांगनाओं की याद आती है जिन्होंने हमें आज़ादी की किरण देने के लिए खुद को सर्वस्व कर दिया और उन्हीं के वजह से आज हम यहाँ हैं। बिल्कुल बहुत सही बात आप लिख रहे हैं। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि फिल्म हरिश्चंद्र तारामती में हेमंत कुमार का स्वर था, भाई हमारी और आपकी पसंद एक है और इन्होंने बहुत ही अच्छी सी एक इमोजी भी बना के भेजी है। और एक साथी क्या लिखते हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं जमीन तो आसमान नहीं मिलता, अगर कहीं तारा जमीन पर उतर आए और वो मुझसे रूबरू हो जाए तो मैं अपने दिल की बसी तमाम बातें साझा करूंगा। मैं उससे कहूंगा कि देखो भाई, मैं अपनी उलझनों परेशानियों में इस कदर उलझा हुआ हूं कि सही रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूं, तू मुझे वो सही रास्ता ढूंढने में मदद कर। बहुत से ख्वाब देखता हूँ लेकिन वो बमुश्किल हकीकत में तब्दील होते हैं। उस तारे से कहूँगा कि मुझे वो हिम्मत फरहाम करे कि मैं उन अधूरे ख्वाबों को दुनिया के उसूलों के बीच चलकर अपनी पहचान बनाकर पूरा कर लूँ। क्या बात है, आपके सारे ख्वाब पूरे हों ये हमारी शुभकामनाएं। और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि रात जितनी घनी होती है सवेरा उतना ही करीब होता है। आगे भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, वो मैं पढ़ती हूँ। लिखते हैं, हर काली रात अपने साथ थकावट और सन्नाटा लाती है लेकिन ये इस बात का प्रमाण भी है कि पुराना वक्त बीत चुका है। क्षितिज पर उभरती पहली किरण केवल उजाला नहीं बल्कि संघर्षों पर विजय का प्रतीक है। नई उम्मीदें हमें साहस देती हैं कि हम अपनी गलतियों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करें। मृदुल कल्पनाओं के दिन, सुखद भविष्य के सुंदर सपने अक्सर सबसे कठिन रातों के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। कितने सुंदर शब्दों में पिरोया है आपने दिल की भावनाओं को। एक साथी ने लिखा है, आज की इबारत एक बहुत ही अच्छा संदेश दे रही है कि कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह आती है। इसलिए परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखकर आप अपना कर्म करें और सुरीला सफर तय करते रहें। साथियों, बहुत ज़रूरी होते हैं यहाँ पर रिश्ते बनाने, रिश्ते बना कर रखना, क्योंकि कुछ रिश्ते चांद की तरह होते हैं जो दूर होकर भी दिल के बहुत पास, और कुछ लोग तारों की तरह होते हैं जो हमेशा हमारे साथ तो नहीं होते लेकिन हाँ, अंधेरे वक्त में उनकी रोशनी हमें टूटने नहीं देती। शायद इसी का नाम उम्मीद है। आप क्या कहते हैं ज़रा बताइए। और बात चली है चांद की तो ये गाना हो जाए, और बताइए कि क्या ये गाना आपकी लिस्ट में था।

एक साथी ने बहुत ही भावुक सा कमेंट भेजा है कि अगर एक तारा टूटकर आए तो पूछूं मेरी माँ ऊपर कैसी है। आपने भावुक कर दिया सचमुच।

ये बड़ा ही स्वीट सा गाना देवता फिल्म से सुना आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। हमारे एक साथी ने लिखा है गुरुदेव और लता जी का सुपर गीत, संगीत राहुल देव। शायद इन्होंने गुरुदेव किशोर कुमार जी को लिखा है। और एक साथी लिखते हैं कि गुलजार जी ने चांद से इतनी मोहब्बत की है कि जैसे लगता है चांद और वो एक ही हैं, एक में समा गए हैं। वो कहते हैं चांद का मेरे पास कॉपीराइट है। एक साथी ने अपनी शाम यादगार शाम साझा की है कि मेरी सबसे खुशनुमा और यादगार शाम 27 मई साल 16 की है, 2016 की। शादी की 25वीं सालगिरह को मेरी दोनों बिटियों ने यादगार बनाया था। बेहतरीन उपहार और हम चारों ने रात का भोजन एक साथ किया था। इन मधुर स्मृतियों को हमेशा अपने साथ सजाए रखिएगा। तो वहीं दूसरे साथी ने भी कुछ शेयर की हैं बातें। लिखते हैं मुझे बहुत सुहाती है, सुहाती वो शाम है जब छिटकती चांदनी से धुलती शाम है। संग फजा में रात रानी की महक हो, इसी बहाने मेरे चेहरे पर थोड़ी सी तो इत्मीनान की चमक हो।

आप सब ने अपने अपने गीत हमारे साथ साझा किए हैं। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि सुरीला सफर की पोस्ट टिमटिमाते

अरे और ठंडी रोशनी के बीच यानी रात को ही पढ़ने को मिल गई, लेकिन अभी दोपहर में कड़ी धूप के बीच जब ठंडी हवा और शीतल चांदनी से जुड़ी बातें और उनसे जुड़े गीतों की बरसात होगी तो इस गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। और अब वो मोस्ट अवेटेड सॉन्ग आप सबके लिए पहुंच रहा है, सुनिए ये गाना और बताइए जरा कि इसके संगीतकार कौन है और इसमें नायक कौन है। में से अधिकांश साथियों की लिस्ट में ये गाना

एक साथी ने लिखा है, कुछ महीने पूर्व मैंने रात को ग्रहण के समय रेड मून का खूब लुत्फ लिया था। सुना था कि 144 साल बाद अब ये नज़ारा देखने को मिलेगा। रात 12 से सुबह 1:30 तक बस चांद की हरकतों पर नजर रखी थी मैंने। ये पल सबसे यादगार है मेरे लिए।

हमारे एक साथी लिखते हैं कि सुरीला सफर अपने अंतिम पड़ाव पर, जी हाँ अब समाप्ति की ओर, क्या समाप्त हो ही गया क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि कुछ और कमेंट्स लें, कुछ और गानों को आप तक पहुंचाएं। बहरहाल आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए ढेर सारा शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सबकी पसंद आज हमसे बहुत बहुत बहुत मिल गई और गाने आपके हमारे बहुत करीब थे। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी आपसे कुछ देर के बाद। बहरहाल आप बने रहिए विविध भारती के साथ, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

15 नर्सों को कौमी फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड से नवाजा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: We end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि ये फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
2: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
1: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट

0: भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर और नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार

0: को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मित्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़ककर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। IPL क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, CBI जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। CBI ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और IPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर हम लेकर हाजिर हैं गुजरे जमाने के कुछ नायाब, कुछ अनमोल सदाबहार नगमे।

0: नजर को दिल,
1: किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम। मैं नशे में हूं फिल्म का ये गाना आपने सुना, मुकेश की आवाज में हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार शंकर जयकिशन ने, और ये थी आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की पहली पेशकश। तो भाई दिल देने के बाद दीवानगी का आलम कुछ इस तरह।

0: बेजुबान फिल्म से ये बहुत ही मीठा सुरीला गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। प्रेम धवन की रचना थी, चित्रगुप्त का संगीत। ऐसे ही सुरीले नगमों का दौर जारी रहेगा, लेकिन अगला गाना सुनने से पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने के

0: आशिक
1: मोहम्मद रफी की आवाज, जावेद अनवर के बोल, उषा खन्ना का संगीत, आपने सुना शबनम फिल्म का गाना। और प्यार में कुछ कस्में होती हैं, कुछ वादे होते हैं, ऐसा ही सुरीला गीत एक और आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा ये गाना आप सुन रहे थे तेरे मेरे सपने फिल्म से। आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। इस गाने को लिखा था गीतकार नीरज ने। तो ये तो थी बातें वादों की, कस्मों की और मोहब्बत में। फिर कहाँ का हिसाब रह जाता है इश्क जब बेहिसाब हो जाए।

आशा भोसले की गायकी का ये अंदाज आप सुन रहे थे फागुन फिल्म के इस गाने में। कमर जलालाबादी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार ओपी नैयर ने। और अब अगले गाने में संगीत का जादू शंकर जयकिशन का, शैलेंद्र की रचना है, लता मंगेशकर की आवाज में। क्या कहता है ये गाना दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से, आइए सुनते।

0: चेतावनी दी कि यदि बुनियादी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो उग्र जन आंदोलन कर कामकाज ठप किया जाएगा। उधर लोहरदगा में भी भाजपा ने विधायक शशिभूषण मेहता और जिला अध्यक्ष अजय कुमार पंकज के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। नेताओं ने राज्य सरकार पर बुनियादी सुविधाएं देने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज लोकभवन में राज्य के लोकायुक्त न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता ने शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान लोकायुक्त ने राज्यपाल को राज्य की विभिन्न न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की प्रगति से अवगत कराया। दोनों के बीच राज्य में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित करने से जुड़े अहम विषयों पर चर्चा हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बिहार आई बैंक ट्रस्ट की समीक्षा करते हुए इसका नाम जल्द झारखंड आई बैंक करने के निर्देश दिए। उन्होंने संस्थान को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने, भूमि विवाद सुलझाने और सीएसआर फंड से आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने को कहा ताकि इसे राज्य का उत्कृष्ट नेत्र चिकित्सा केंद्र बनाया जा सके। गिरिडीह पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला शक्ति पेट्रोलिंग दस्ते की शुरुआत की है। एसपी डॉ. विमल कुमार ने इस विशेष स्कूटी दस्ते को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने बताया कि यह दस्ता मुख्य रूप से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटरों के पास गश्त करेगा। किसी भी आपात स्थिति में महिलाएं डायल 112 पर संपर्क कर सकती हैं।
1: महिला शक्ति पेट्रोलिंग की शुरुआत गिरिडीह में की जा रही है और इनका बेसिक जो नेचर रहेगा पेट्रोलिंग, जहाँ भी महिला कॉलेज है, जहाँ पे की कोचिंग सेंटर्स है, उन सभी जगहों पे हम लोग ना नहीं हो, छिड़काने की घटना नहीं हो। हम अपील करेंगे सभी महिलाओं से, पुरुष से भी जो इनकी सहायता लेना चाहते हैं, डायल 112 में भी आप संपर्क करें और हम लोग का जो जिला कंट्रोल नंबर है उसमें भी आप संपर्क करें।
0: रांची के सदर थाना क्षेत्र के कोकर खोरहा टोली से रविवार से लापता 18 महीने की मासूम बच्ची अदिति पांडे का शव बरामद हो गया है। बच्ची का शव गाड़ी गांव इलाके के एक बड़े नाले से मिला है। लापता होने के बाद रांची पुलिस लगातार बच्ची की तलाश में जुटी थी और सुराग देने वाले को 50,000 रुपए इनाम देने की भी घोषणा की गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और यह जांच कर रही है कि मामला महज हादसा है या कोई साजिश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: ಹೇಳಿ.
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा महेश्वरी और
2: चंचल वर्मा का नमस्कार
1: और साथ में हेल्दी नमस्कार भी.
2: ये हेल्दी नमस्कार क्यों?
1: भाई देखो कितनी गर्मी है.
2: हाँ?
1: और बाहर गर्मी से तो जैसे कि ये हो रहा है कि आंख मिचोली का खेल हो रहा है ना इन दिनों. तो अपना सब ध्यान रखें, खूब अच्छे से ध्यान रखें. और खास तौर पे हमारी सखियां सबका तो स्वास्थ्य, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रख लेती हैं, लेकिन खुद को हम कहीं छोड़ देते हैं पीछे. तो ऐसा ना करें.
2: सबसे पहला ध्यान दीपा ने खींचा है स्वास्थ्य की तरफ.
1: जी
2: बहुत अच्छी बात है. और स्वास्थ्य से मुझे याद आया कि जैसे तुमने कहा ना कि भाई महिलाएं जो है वो सबका ध्यान रखती हैं, और जब छुट्टियों में बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं, और फिर जब मेहमान आते हैं तो बच्चे भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो जो महिलाओं की जिम्मेदारी है वो बहुत बढ़ जाती है. खास तौर पर क्योंकि एक तो गर्मी के दिन ऊपर से रसोई का जो काम है वो बहुत बढ़ जाता है.
1: हाय हाय, ये तो पूछो ना. सच में देखो पसीना तो बहुत आता है. ऐसा लगता है कि कब बस ये बन जाए, जो भी व्यंजन बन रहा है ये बन जाए और हम बाहर जाएं. लेकिन ये बात भी है, कहीं बच्चे नानी के घर आए होंगे. हाँ. कहीं बच्चे दादी के घर आए होंगे, या कहीं बुआ किसी किसी के घर पे आई होगी, या हम कहीं गए होंगे. ये बात तो गर्मियों में, ये मई और ये जून का महीना है, इसमें. हाँ. ये सब चीजें चलती हैं. और देखो फिर यादें भी तो वहीं बनती हैं.
2: बिल्कुल,
1: कितनी बातें हम संजोते हैं, कितनी हमारे जब यादों के गलियारे में जाते हैं, हम अपने दिनों में ही जाते हैं अगर चंचल.
2: हालांकि तो, समय बदल रहा है. पहले एक एक पूरे दो दो महीने डेढ़ महीने के लिए हम नानी के घर चले जाया करते थे. आजकल क्योंकि समय बदल रहा है, हम लोग भी बहुत सारी बच्चों को एक्टिविटीज के लिए डाल देते हैं, तो समय कम होता है. लेकिन फिर भी लगता है कि छुट्टियां आई हैं बच्चों की, थोड़े बदलाव के लिए क्यों ना कहीं बाहर चला जाए. तो एक हफ्ता 10 दिन का समय निकल कर तो हम छुट्टी मनाने चले ही जाते हैं किसी न किसी रिश्तेदार के घर, या तो फिर किसी जगह पर घूमने चले जाते हैं. लेकिन जब हम जाते हैं किसी रिश्तेदार के घर, तो वहां जब उनका काम बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि हम लोग जो जाते हैं वहां हमें भी थोड़ा हाथ बटाना चाहिए. इस पर हमारी सखियों के क्या अनुभव हैं? क्या उनके ऊपर भी कभी उन्हें लगता है कि काम का बोझ बहुत बढ़ गया है तो झुंझलाहट आती है, या आए मेहमानों के साथ में वो एक यादें बनाने के लिए बहुत खुश होती हैं? उनके अपने अच्छे बुरे खट्टे मीठे सभी तरह के जो भी अनुभव हैं वो हमारे साथ साझा कर सकती हैं.
1: और साथ में ये भी बताइएगा कि आपके घर में बच्चे आए हैं या आपके घर के बच्चे कहीं गए हैं.
2: हाँ.
1: क्या चल रहा है इन दिनों घर में? खूब सारी जो चिल्ला चहलकदमी चल रही है, या अभी कहीं बच्चे गए हुए हैं तो घर में शांति है? सब तरह की जो भी बातें आप चाहती हैं साझा जरूर करिएगा.
2: और हम जब अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं ना, तो उनकी बातें जब हम सुनते हैं तो उसमें बहुत सारे कहावतें मुहावरे ये सुनने को मिलती हैं. और ये ऐसे मुहावरे या कहावतें जो होती थी ना, 4 शब्दों में 40 लाइनों की कोई बड़ी बात कह जाते थे.
1: सही,
2: ऐसे शब्द होते हैं.
1: यानी कि 100 सुनार की और 1 लोहार की वाली बात कर रही हैं आप.
2: बिल्कुल, और यही आज का मुहावरा है जिस पर हम बातचीत करने वाले
1: जी. और महिलाओं ने उद्यम के क्षेत्र में
2: जी,
1: बिजनेस के क्षेत्र में बहुत सारा अपना नाम कमाया है पिछले कुछ वक्त में.
2: जी.
1: कोरोना के बाद तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि कितनी सारी महिलाएं अब काम कर रही हैं. हम बाहर निकलते हैं ना तो दुकानों पे भी बैठी मिलती हैं, ऑफिस में भी मिल रही हैं, घर का काम तो संभाल ही रही हैं,
2: और
1: व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रही हैं.
2: घर से ही बैठकर वो अपना छोटा सा व्यापार शुरू कर रही हैं. घर पर बैठकर कोई बैग बना रही है, कुछ खाना बना रही है, कुछ कहते ना घर को सजाने वाली चीजें बना रही है. तो इसी तरह से घर सजाने के साथ खुद को सजाने संवारने की बात अगर की जाए, तो इस तरह के व्यवसाय से जुड़ी आज एक महिला की हम बात करेंगे. और फेसबुक पर हमारी सखियों ने देख ही लिया है, फिर भी हम नाम बता देते हैं. आज बात होगी विनीता सिंह के बारे में
1: जी,
2: जो कि एक महिला उद्यमी है. और इनके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन पहले और विषय बता देते हैं कि किन पर चर्चा होने वाली
1: जी
2: है.
1: आज बात करने वाले हैं हम डॉक्टर निशा सिक्वेरा से, लू लगने के जो लक्षण होते हैं और बचाव उसे कैसे किया जाए और किस तरह से ध्यान रखा जाए, तो वो हमें बहुत सारी जानकारियां देंगी.
2: इसके अलावा 2 खास दिन आज हैं. एक है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, जिसे हम परिचारिका दिवस भी कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस भी आज है. इनकी बात भी होगी. और पेड़ पौधों को लेकर, उनके संरक्षण को लेकर ये चीजें क्यों जरूरी हैं, इस पर बात होने वाली है. तो फिलहाल मुझे लगता है कि बातचीत को यहीं रोकें और पहले एक गीत सुन लें.
1: चलो चलते हैं.

0: चंचल, जो गुलमोहर ये लाल पीले फूल जब सब तरफ फैले होते हैं कितने हाँ। सुंदर लगते हैं देखने।
1: और गर्मियों में खासतौर पर गुलमोहर का पेड़ जो है वो हरा भरा होता है, और जो उसका लाल रंग के जो उसकी पत्तियां होती है ना, जब हम गुजरते हैं रास्तों से और जो रास्ते पर चादर सी बिछी हुई होती है, सच में
0: ऐसा लगता है इसके ऊपर चले नहीं है ना
1: और वो लेट जाए बस, हाँ गर्मी से राहत दे जाती है। तो भाई ये सुकून तभी नसीब होगा ना जब हम इन पेड़ों की पौधों की सुरक्षा करेंगे, संरक्षण करेंगे।
0: सही बात है।
1: इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई का जो दिन है इसे अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में घोषित किया है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ। तो ये वैश्विक स्तर पर इस बात के लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके ताकि जो भी छोटे पौधे हैं उनकी रक्षा हम करें, क्योंकि छोटे पौधे जो है ना यही आगे चलकर हमारी भूख समाप्त करने का जरिया बनते हैं, और पर्यावरण की रक्षा अगर हम करेंगे तो आर्थिक विकास को भी इससे बढ़ावा मिलता है।
0: बिल्कुल। और हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हम सब जानते हैं कि जब पौधे पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वो हम लेते हैं, तो लगभग सभी पेड़ों से ये काम होता है। हम जो भोजन खाते हैं उसका भी करीब 80% पेड़ पौधों से ही हमें मिलता है, लेकिन हर साल कीट और बीमारियों के कारण लगभग 40% फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिससे सभी के लिए भोजन और फिर पोषण उपलब्ध करने के प्रयासों में भी रुकावटें आने लग जाती हैं।
1: और हम देख रहे हैं कि जब एक पौधा हम रोपते हैं, जब वो बहुत छोटा होता है, तब उसे सबसे ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय उसने अपनी जड़ें नहीं पकड़ी है, वो बहुत नाजुक होता है
0: जी।
1: तो उस वक्त उसे देखभाल की ज्यादा जरूरत होती है, चाहे वो हमने खेत में कोई फसल लगाई है या घर पर कोई पौधा छोटा सा रोपा है, लेकिन उस वक्त उसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। एक छोटे बच्चे की तरह उसकी देखभाल की जरूरत होती है।
0: जब हम घर में भी लगाते हैं तो हर दिन कैसे जा करके देखते हैं, और सिर्फ एक जो लगाता है घर में गमले में पौधा छोटा सा, पूरा घर फिर आके पूछता है ये ठीक से तो है ना, बढ़िया है ना, पानी डाला, सब पूछते हैं एक दूसरे से, और कितना बिल्कुल एकदम परिवार का एक हिस्सा बन चुका होता है वो गमला या वो पौधा। तो सब सोचिए, जब सब तरफ से लगे हों या आपके बागीचे में लगे हों या आप कहीं बाहर भी कहीं पे किसी ऐसी जगह पर जो कोई सार्वजनिक जगह है जहां पे आप लगा सकते हो, तो जरूर लगाना चाहिए पौधों को, पेड़ के।
1: पता है जब हम गर्मी में कहीं जाते हैं, कहीं बस स्टॉप पर खड़े हैं, किसी बस का या रेल का इंतजार कर रहे हैं, और जब वहाँ हमें कोई छांव नहीं मिलती तो कई बार यहाँ वहाँ जाकर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कहीं कोई पेड़ हो तो जिसके नीचे खड़े होकर थोड़ा सुस्ता लिया जाए, कहीं छांव मिल जाए हमें। और कई बार हम अपने वाहन से भी अगर जा रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा छांव में सुस्ता लें।
0: सही बात है। और कभी कभी तो पता है कैसा होता है कि वो रस्ते की निशानी बन जाता है।
1: हाँ।
0: भाई तुम आगे वो रस्ते तक जाओगे ना, बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, बस वहां से उल्टा दाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना। हाँ। है ना, कई बार ऐसा होता है।
1: ये निशानियां बनाने के लिए या उस वो छांव लेने के लिए उन पेड़ों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है दीपा, और इसीलिए ये दिन हम मना रहे हैं ताकि जो छोटे पौधे हैं उनकी सुरक्षा हो सके। और पौधों की सुरक्षा उनके लिए सीमा नियंत्रण और स्वच्छता की तरह होती है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो खतरनाक कीट हैं और उनमें लगने वाली जो भी बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए उनकी जांच करना समय समय पर और उनकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। ये सुरक्षा कवच का काम करता है जिनसे हमें भोजन मिलता है और किसानों का रोजगार भी सुरक्षित रहता है। कई बार हम देखते हैं खेतों में बहुत सारी टिड्डियां घुस जाती हैं जो पूरी पूरी फसल को खा जाती है।
0: बिल्कुल, मवेशी घुस जाते हैं तो वो तो बर्बाद कर देते हैं बिल्कुल, है ना। और उस वक्त आप सोचो वो जो किसान है जिसने वो लगाया है पौधा, उसके दिल पर क्या बीतती है, और उनको आर्थिक भी बहुत नुकसान हो जाता है।
1: अरे लेकिन इसके अलावा हमारे पर्यावरण को, प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है। ये जो हम देख रहे हैं ना ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं, या प्रदूषण बढ़ रहा है
0: जी,
1: जब हम गाड़ियां वाहन बहुत सारे बढ़ रहे हैं, लेकिन वाहनों से जो निकलने वाला कार्बन है उसे पौधे क्योंकि अपनी तरफ खींच लेते हैं और हमें एकदम फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं,
0: सही के बाहर
1: ताजा सांस लेने के लिए वो जो सुविधाएं हैं वो कम हो रही हैं। हम मशीनों पर धीरे धीरे निर्भर होते जा रहे हैं, लेकिन अगर हम पेड़ लगाएंगे और उनको संरक्षण भी देंगे तो ये जो समस्याएं हैं इनसे काफी हद तक हम निजात पा सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखो एक वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, अंतराल के बाद आते हैं और फिर इसी बारे में और बात करेंगे।

बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे हम। एक बार फिल्म से ये गीत हमने लिया था और पौधों और पत्तों की इस गीत में बात हो रही थी। ये पेड़ जो हैं ये हमें लू से बचाव में बहुत सहायक होते हैं, और इसी विषय पर डॉक्टर निशा सिक्वेरा से जो बातचीत हमने की है अब वो सुनते हैं।

नमस्कार, सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर निशा सिक्वेरा। आज आप सभी के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं एक चिकित्सा विशेषज्ञ हूं और मेरा उद्देश्य ये है कि लोगों को स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने में सहायता करना। आज मैं हीट स्ट्रोक या लू के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी। गर्मियों के दिनों में अपने देश के कई शहरों में तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। इन दिनों दोपहर के समय बाहर बहुत तेज गर्म हवाएं चलती है। इन गर्म हवाओं को ही लू यानी हीट स्ट्रोक कहते हैं। मजबूत इम्यूनिटी वाले लोग इन गर्म हवाओं को सहन कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इन हवाओं को सहन नहीं कर पाते हैं और इनके संपर्क में आते ही बीमार पड़ जाते हैं। अपने देश में हर साल काफ़ी बड़ी तादाद में लोग लू की चपेट में आ जाते हैं। लू लगने के कारण ये गर्म हवाएं जब अपने शरीर के संपर्क में आती हैं तो शरीर का तापमान बढ़ा देती हैं और इस वजह से कई समस्याएं होने लगती है। ज़्यादा देर तक धूप में काम करना और शरीर में पानी की कमी होना लू लगने के प्रमुख कारण हैं। बच्चे और बूढ़े लोग लू की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। अधिकांश मामलों में लोगों को ये जल्दी पता ही नहीं चल पाता है कि उन्हें लू लग गई है। हालांकि इसका

0: और शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। शरीर में गर्मी बढ़ने के बावजूद लू लगने के दौरान शरीर से पसीना नहीं निकलता है। लू लगने पर उल्टी आना और शरीर में तेज दर्द होना आम बात है। उल्टी होने के कारण शरीर में सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले या शारीरिक रूप से कमजोर लोग लू लगने से बेहोश भी हो जाते हैं। लू लगने पर क्या करें? लू लगने पर मरीज को तुरंत छायादार जगह पर या ठंडी जगह पर लिटाएं। शरीर को ठंडा रखने के लिए शरीर पर ठंडे पानी का पट्टिया लगाएं। घर के खिड़की दरवाजे खोल दें और कूलर या एसी चालू कर दें। अगर मरीज लू लगने से बेहोश हो गए हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। लू से बचने के उपाय, ये सच है कि हर साल लू से कई लोगों की जान चली जाती है, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि अगर गर्मी के मौसम में आप ठीक ढंग से अपना ख्याल रखें और कुछ ज़रूरी सावधानियां बरतें तो लू के प्रकोप से बच सकते हैं। आइए लू से बचने के कुछ प्रमुख उपाय मैं बता देती हूँ। गर्मियों के दिनों में हल्का भोजन करें। गर्मियों के दिनों में कभी भी खाली पेट पर घर से बाहर ना निकले। ज़्यादा देर तक धूप में रहना हो तो छाते का इस्तेमाल करें। अधिक मात्रा में पानी पिए। बाहर जाते समय पानी की बोतल साथ में लेकर चलें। हाइड्रेटेड रहें। प्यास ना लगने पर भी पानी, नारियल पानी और जूस पीते रहें। बाहर निकलने के समय पर टोपी, स्कार्फ या छाते का इस्तेमाल, जो मैंने बता दिया अभी, उस इस्तेमाल करें। हल्के और जल्दी पचने वाले भोजन करें। प्याज और दही का सेवन बढ़ाएं। आज हीट स्ट्रोक जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आप इस गर्मी में खुद को और अपने परिवार को बचाएं, अच्छे से ध्यान रखें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।
1: अभी हमने सुना डॉक्टर निशा सिक्वेरा से लू से बचने के कई तरीके। तो चलिए अब सुनते हैं गीत।

0: इस गीत के बाद फिर से हम अपनी बातचीत लेकर हाजिर हैं, और हमने शुरुआत में कहा था कि दो खास दिवस आज हैं। 12 मई का दिन है, आज है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस, और ये स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है एक जो कि हर साल 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, और ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर इस पेशे के प्रभाव को मान्यता देना है, और ये जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें पहुंची है।
1: चंचल, 1953 में अमेरिकी स्वास्थ्य शिक्षा और कल्याण विभाग की जो प्रतिनिधि थी डोरोथी सदरलैंड, उन्होंने नर्स को सम्मानित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस का प्रस्ताव रखा। 1965 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद यानी कि ICN इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। हालांकि उस समय ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था। फिर 1974 में फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के साथ 12 मई को इस दिन यानी आज के दिन इस दिवस को मनाने के रूप में चुना गया, जिससे उनकी विरासत और वैश्विक स्तर पर नर्सिंग पेशे का महत्व और भी पुख्ता हो जाता है।
0: भाई, नर्सों का महत्व ये खास तौर पर वो जरूर समझते होंगे जब किसी के घर में कुछ ऐसी अवस्था आई हो, जब उनके परिवारजन अस्पताल में भर्ती रहे होंगे, और जब हमें समय नहीं होता कि हम सारा दिन या रात भर अस्पताल में रुक सकें, तो यही परिचारिकाएं होती हैं जो हमारे परिवारजन का और उस रोगी का बड़ी शिद्दत से ध्यान रखती हैं। और इसी बात को लेते हुए हमारे जो श्रोता साथी हैं वो लिख रहे हैं कि 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के अवसर पर नर्सों के निस्वार्थ समर्पण, उनकी कड़ी मेहनत, स्वास्थ्य सेवा में उनके अतुलनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए एक समर्पित दिन है।
1: जी, और एक और संदेश है, कहता है कि नर्स चिकित्सा संबंधी विषय है जो मरीज के सेवा भाव के दायित्व का निर्वहन करते हैं, और आज के दिन ही हर साल की तरह इस साल भी वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। ये दिन नर्सों के हित, परख, शिक्षा और समर्पण को ही समर्पित है।
0: एक अन्य संदेश में यही बात कही गई है कि इस दिन नर्सों को सम्मान देने के लिए दिन मनाया जाता है, और उनका जो अग्रणी योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और अन्य संदेश है जिसमें लिखा गया है कि नर्स के प्रति जो उनका महत्व है, उनकी सेवा का जो भाव है, इस विषय को लेकर जागरूकता के लिए ये दिन मनाया जा रहा है। अगर नर्स ना हो तो जो लोग हॉस्पिटल में अकेले रहते हैं बीमारी में, उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए नर्सों का जो योगदान है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है।
1: जी बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वक्त हो चला है एक संदेश का, एक अंतराल का।

0: अंतराल के बाद आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर आ चुके हैं।
1: बिल्कुल, मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा।
0: और मैं दीपा महेश्वरी।
1: और अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: चलिए।

0: एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा, आपको

0: तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। हो सकता है आपको आईवी लगाना पड़े या ओआरएस आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है, एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
1: भाई देखो चंचल, मौसम कोई भी हो, सुंदरता पे तो किसी भी चीज का कोई जोर नहीं चलता है कि नहीं।
2: बिल्कुल। और भी हर महिला को सजने संवरने का थोड़ा सा शौक तो होता ही है। वैसे आम दिनों में वो ना भी सजें, लेकिन कुछ खास मौका आता है तो थोड़ा सा श्रृंगार तो बनता भी है।
1: बिल्कुल।
2: और आज जिस सफल महिला की हम बात कर रहे हैं, जो एक महिला उद्यमी हैं, वो हैं विनीता सिंह। और इन्होंने शुगर कॉस्मेटिक की संस्थापक हैं, उनकी सीईओ हैं और देश विदेश की महत्वाकांक्षी उद्यमियों विशेष रूप से महिलाओं के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत है। हालांकि उनकी असाधारण कहानी, मेकअप की जो जीवंत दुनिया है और ये जो फलता फूलता व्यवसाय है, इसमें तो इनकी प्रसिद्धि बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अपने स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही जो अपनी असाधारण प्रतिभा है उसका प्रदर्शन इन्होंने शुरू कर दिया था।
1: जी, और उनकी इसी असाधारण शैक्षणिक उपलब्धि ने उन्हें प्रतिष्ठित IIT मद्रास में प्रवेश दिलवाया, जहां उन्होंने बैडमिंटन के प्रति अपना जुनून दिखाया और पहचान एक बनाई। फिर कई टूर्नामेंट में वो जाती थी और वहां पे जीत भी उन्होंने हासिल की। बाद में IIM अहमदाबाद में उन्होंने शिक्षा तो की ही, दौड़ में भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया।
2: क्या बात है।
1: और अपने प्रयासों के रूप में कई सारे उन्होंने कठिन मैराथनों को भी पूरा किया था। तो ये जो उनके अंदर प्रतिस्पर्धा वाली जो भावना थी और सीमाओं को पार करने की जो उनकी इच्छा थी, उनके आने वाले दिनों के उद्यमिता गुणों को स्पष्ट दिखाई दे रहा था सभी को कि ये ऐसे तो सीधे सीधे नहीं चलेगी, कुछ तो जरूर करेगी।
2: बिल्कुल, वो सीधे दौड़ लगाएगी और जीत भी हासिल करेगी। और निवेश बैंकिंग में एक बड़े पैकेज के साथ उन्हें एक प्रस्ताव मिला, लेकिन बिजनेस का चुनौती भरा माहौल लगातार उन्हें पुकार रहा था। और उनका जो पहला बिजनेस था ये एक पृष्ठभूमि जांच पर आधारित उद्यम था, लेकिन ये जब उन्होंने किया तो उनको लगा कि कुछ खास सफलता नहीं मिली उन्हें।
1: जी, लेकिन यहाँ उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने फिर एक ब्यूटी सब्सक्रिप्शन सेवा की स्थापना की, जिसे कुछ हद तक तो सफलता मिली, लेकिन ये भी जो उनका असली जो जुनून था वहां से कहीं कुछ मेल नहीं खा रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कहीं तो कुछ अभी बाकी है।
2: तो ये जो शुरुआत में असफलताएं उनको मिल रही थी, लेकिन ये सब चीजें थी ना उनके लिए एक सबक की जैसे रही, जिससे जो भी बाजार किस तरह का होता है या अपनी क्षमताएं किस तरह से उनको बाहर निकालनी चाहिए, ये चीजें जानने में उन्हें बड़ी मदद मिली।
1: जी, और बहुत सारे शोध के बाद विनीता ने ये समझा कि जो भारतीय सौंदर्य बाजार है, क्योंकि हम इंडियंस में अलग अलग त्वचा रंग होते हैं और अलग अलग टाइप्स होते हैं स्किन के, त्वचा के, तो उसके पसंद के अनुरूप उत्पादों की यहाँ कमी है, जो कि किफायती भी हो। और फिर बस क्या था, 2015 में उन्होंने अपने अनुभव और एक दृढ़ दृष्टिकोण के साथ, विनीता ने अपने पति कौशिक मुखर्जी के साथ मिलकर एक कॉस्मेटिक ब्रांड की शुरुआत की।
2: और ये जो उन्होंने अपना ब्रांड बनाया, काफी किफायती दामों पर और बहुत आकर्षक और उच्च गुणवत्ता वाले सौंदर्य प्रसाधन वो लेकर आई, बाजार में उन्होंने पेश किए। और ये जो ब्रांड था, ये भारतीय युवा महिलाओं के लिए उनमें बिल्कुल लोकप्रिय हो गया और डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोण ने तेजी से इसको अपना ग्राहक बना लिया।
1: जी, कंपनी का एक उत्पाद है चंचल, चटक और अलग अलग रंगों का काजल।
2: हाँ,
1: ये बहुत प्रसिद्ध हुआ लड़कियों में खास तौर पे, और देखते देखते शुगर कंपनी की कई उत्पाद ई प्लेटफॉर्म पर प्रसिद्ध होने लगी।
2: और वो ऐसा मानती है कि हर महिला को सुंदर दिखने का पूरा अधिकार है, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार तक सारे सौंदर्य प्रसाधन पहुंच सकने के लिए उनका जो बजट है ना, कई बार वो उनको अलाउ नहीं करता। तो कम बजट में किस तरह से उनको ये सौंदर्य प्रसाधन उपलब्ध करवाए जाए, उनका ब्रांड इसी चीज पर काम कर रहा है।
1: और विनीता ने सफल होने के साथ साथ अपनी महिला सशक्तिकरण वाली प्रतिबद्धता का भी ध्यान रखा है। कंपनी में लगभग 75% कर्मचारी महिलाएं ही हैं और उनके नेतृत्व में शुगर कंपनी बदलते रुझान और उपभोक्ताओं की पसंद के अनुरूप लगातार अलग अलग नवाचार करती चली आ रही है।
2: और वनीता ने अपने करियर को एक नया मोड़ तब दिया जब उन्होंने एक भारतीय रियलिटी शो में एक निवेशक और जज के रूप में अपनी भूमिका निभाई, और इस तरह से कहते ना कि वो आगे बढ़ती रही और अपनी मंजिलों को हासिल करती रही। और हमारी शुभकामना है कि वो और आगे बढ़ती रहे।
1: जी, और वक्त तो चला एक

0: बहुत सुंदर गीत सुनवाया दीपा तुमने, और मुझे लगता है हमारे जो सुनने वाले हैं ना उन्हें भी ये गाना पसंद आया होगा। और अब हम बात करें कुछ मुहावरों की, कुछ कहावतों की, और हमारे जो सुनने वाले हैं भाई वो भी इस पर बहुत सारे कमेंट्स हमें लिखकर भेज रहे हैं। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि मुहावरे हमारे दैनिक जीवन में विनोद भी कराते हैं और मोटिवेशन भी हमें देते हैं। आम बोलचाल की कुछ बातों के बीच मुहावरे जोड़ देने से उस बातचीत में ताजगी आ जाती है, दम आ जाता है। तमाम मुहावरों में 100 सुनार की एक लोहार की ये हम अक्सर सुनते हैं। जो किसी ना किसी काम में बहुत सारा प्रयास करते असफल सा लगने लगता है, लेकिन धमाके से उस काम के पूरा होने पर इस बात को अक्सर कहा जाता है।
1: बिल्कुल। एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि ये मुहावरा सुनार के गहने बनाने की शैली और हल्की हथौड़ी के सामने लोहार के खेत या अन्य बड़े औजार बनाने भारी वाले भारी भरकम हथौड़े के उपयोग की तुलना की गई है। मतलब कमजोर या छोटे प्रयासों के मुकाबले सटीक और करारा प्रहार अधिक प्रभावशाली होता है और कारगर साबित होता है। अगर कोई काम नहीं करने के 100 बहाने बना ले, लेकिन जब बॉस सामने आते हैं तब सच सामने आ ही जाता है।
0: क्या बात है, बिल्कुल मिलता जुलता एक और संदेश है। 100 सुनार की एक लोहार की का मतलब होता है कमजोर या छोटे प्रयासों की लंबी श्रृंखला की तुलना में एक शक्तिशाली सटीक प्रयास अधिक प्रभावशाली होता है। ये कहावत गुणवत्ता और मजबूती की मात्रा को बेहतरी से बताती है।
1: जी, और 100 सुनार की एक लोहार की यह लोकोक्ति मुहावरे हमारे जीवन से संबंधित होते हैं, जिन्हें हम अक्सर ही बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया करते हैं।

0: में से एक ये मुहावरा अपने प्रयासों के तौर तरीकों के बारे में बताता है कि सुनार आभूषण बनाने के 100 प्रयासों से अच्छा लोहार का एक लेकिन अति उत्तम महत्वपूर्ण प्रयास सफल हो जाता है। उसके एक सटीक प्रयास से सामग्री के टुकड़े हो जाया करते हैं। इस दृष्टिकोण से यह लोकोक्ति इस अर्थ में हमें सटीक प्रहार के तौर तरीकों पर एक सीख देती है।
1: क्या बात है। इसी तरह से एक अन्य संदेश है कि ये मुहावरा हमें बताता है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति या कार्य 100 साधारण लोगों या कार्यों से अधिक श्रेष्ठ होता है। जीवन में हमें अपनी ऊर्जा को बखेरने की बजाय उसे केंद्रित करके बड़ा परिणाम लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बारे में कुछ कहानियां भी प्रचलित हैं और एक प्रसंग इस तरह से भी कुछ आता है कि महाभारत के समय जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध चल रहा था तो सारे कौरव मिलकर पांडवों को पछाड़ रहे थे और तब भीम ने अपनी गदा उठाई और एक ही साथ बहुत सारे कौरव यानी कि जो 100 कौरव थे उनको धाराशायी कर दिया और 100 कौरवों के बराबर शक्ति भीम के पास अकेले ही थी। इसलिए उस समय से इस मुहावरे को प्रयोग में लाया जाने लगा, कहा जाने लगा कि 100 सुनार की एक लोहार की। इसी तरह से कुछ कथाएं भी इसको लेकर प्रचलित हैं।
0: तो गीत सुने अबे
1: जी।

0: दीपा, याद है गर्मियों की छुट्टियों के दिन?
1: बिल्कुल याद है। और देखो ना, नानी के घर जाते थे, खूब सारे आम खाते थे, और शाम को फिर हमारे नाना जी लेके जाते थे हमें गार्डन।
0: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। मुझे याद है जब हम गर्मियों की छुट्टियों में ददिहाल जाया करते थे। हमारे पिताजी के चार भाई थे, जो कि सब उस वक्त वहां जमा हो जाया करते थे, और कुल

0: मिलाकर हम 15 बच्चे थे, जो कि अलग ही मजा आता था। हमारी चाचियां और मम्मी सब मिलकर रसोई संभालते थे। हम सब बच्चे दादी के ही साथ हमारा आना जाना होता था। हमारा बगीचा भी बहुत बड़ा है, जिसमें दादाजी ने बहुत बड़े बड़े फलदार पेड़ लगा रखे हैं। और अब तो ये सिर्फ यादें ही रह गई हैं, क्योंकि सब भाई बहन बड़े हो गए और सब अपने अपने काम में लग गए हैं। तो सच बात है, ये जो बचपन के दिन होते हैं ना, ये यादें बनकर रह जाते हैं। और जो नानी दादी के घर जाने के, या बुआ मौसी के घर जाने के, और वहाँ इकट्ठे होकर खूब हंगामा करने के, मस्ती करने के, यादें बनाने के जो दिन थे ना, वो अब हमारी खूबसूरत यादों में हैं, सिर्फ एल्बम्स में वो दिन हमारे पास रह गए हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही कही चंचल। देखो, एक संदेश ये कहता है कि गर्मियों में आना जाना तो लगा ही रहता है बच्चों और परिवार का, कोई नानी के घर, कोई दादी के घर। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही कही आप लोगों ने कि जो मेहमान होते हैं उनको भी हाथ बटाना चाहिए। इतनी गर्मी होती है, अगर वो लोग हाथ नहीं बटाएंगे तो एक बड़े काम का बोझ आ जाएगा। तो बिल्कुल सही कहा आप, अगर जा रहे हैं किसी के घर तो हाथ जरूर बटाइए।
0: इसके अलावा बच्चों को भी थोड़ा सा हम व्यस्त रख सकते हैं, उन्हें बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, क्योंकि दोपहर में वो यहाँ वहाँ ना भटकें, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है, गर्मी बहुत तेज़ होती है। और जब हम बच्चों को कहते हैं ना कि दोपहर में थोड़ा सो जाओ, तो वो सोना भी पसंद नहीं करते। तो उन्हें कोई एक्टिविटी करने के लिए आप दे सकते हैं, कुछ भी उन्हें मतलब कशीदाकारी करने को दे दीजिए, उनको सिलाई कढ़ाई सिखा सकते हैं उस समय
1: वो भी। और अगर वो बैठना नहीं चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं चंचल कि आप, वो कहते हैं ना इंडोर ट्रेजर हंट, हाँ। जब उनको ऐसे बड़े बड़े से नाम बता दो ना, तो बच्चे एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ भी एक चीज को आप छुपा दीजिए कहीं, हाँ। और फिर उनको बोलना है कि अगले आधे घंटे में हमें ये चीज ढूंढ कर देनी है, तो सच में उन्हें इतना मजा आता है, सारे के सारे लग जाते हैं। हाँ, छुपाना ऐसी जगह है जहां उन्हें तुरंत उनके हाथ में न वो आए।
0: और घर में अगर कोई ऐसा हो जिसे किस्से कहानियां सुनाना बड़े मजे से आता हो, तो बच्चे उसे घेरे बैठे रहते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे एक मामा थे, जो कोई मतलब पौराणिक कहानियां नहीं होती थी, बस वो मनगढ़ंत वो कहानी बनाए सुनाए जाते थे हमें। और वो कहानियां उनकी चार चार दिन, पांच पांच दिन खत्म ही नहीं होती थी। हम इंतजार करते थे कि ये इसके आगे क्या हुआ होगा, और वो मन से कुछ भी जोड़कर वो कहानी बनाकर सुनाते थे। तो इस तरह से बच्चों को आप व्यस्त रख सकते हैं। और या फिर जब महिलाएं किचन में काम कर रही होती हैं, तो कोई छोटे मोटे काम बच्चों को दीजिए, तो उन्हें घर में काम में हाथ कैसे बटाया जाता है इसकी आदत भी होगी।
1: वो जो पुरानी छुरी जो होती है ना घर में, पुरानी छुरी जिसमें ज्यादा तेज धार नहीं होती, वो हम उनको दे सकते हैं। उनको भिंडी काटने के लिए दीजिए, आलू काटने के लिए दीजिए, बहुत मजा आता है उनको। वो आड़े टेढ़े तिरछे तरीके से काटते हैं, लेकिन जब हम उनको बना के उनको बताते हैं ना, देखो ये आपकी कटी हुई सब्जी है, तो बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, हमने काटी, वो सब बताते हैं, ये वाले देखो, ये वाला शेप का मेरा है, ये उसका है, इस तरह से बड़े खेल खेलते हैं वो लोग।
0: आप छत का छिड़काव करने को उन्हें कहिए, आंगन में छिड़काव करने कहिए, कूलर में पानी भरने को कहिए, तो छोटे मोटे काम बता सकते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ हरियाणा में 1 जून से बच्चों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, और इन छुट्टियों का हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि हमें जाना होता है अपने नाना और मामा के घर पर।
1: हाँ बिल्कुल। और एक और संदेश कह रहा है कि भाई बच्चों की छुट्टियों में तो सच में हम सब माताओं पर तो बड़े भारी पड़ जाते हैं ये दिन। और अभी हमारे बच्चों की छुट्टियां शुरू नहीं हुई है, मई के अंत में होने वाली है। रसोई और गर्मी का, दोनों का जो है ये जुड़ाव बिल्कुल ऐसा है, उससे तो हम अलग कर ही नहीं सकते। और हम सभी महिलाओं को इसकी कुछ ज़्यादा ही, हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये लगता है कि गर्मी से हमें फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप बेशक बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बच्चों को बना के खिलाती होंगी, और ऐसे ही अगर सब महिलाएं सोचने लगें तो फिर क्या ही बात है। तो देखो, उनके बच्चों को, जो आप बात कर रही थी ना कि बच्चों से आप कुछ उनसे खाने की तैयारी करा सकते हैं, किचन गार्डन भी लगवा सकते हैं।
0: हाँ,
1: उनके हाथ की उगी हुई जब चीजें होंगी ना, तो वो भी बड़े चाव से देखते हैं कि कैसे
0: और
1: बड़ा
0: इसी
1: हो रहा
0: तरह
1: है।
0: से वो पौधों का संरक्षण करना भी सीख जाएंगे। जब वो खुद पौधा लगाएंगे तो उसे किस तरह से बचाना है, और बढ़ते हुए हर दिन देखेंगे उसको, तो उन्हें भी एक अलग आनंद का अनुभव होगा। और गानों में भी कहीं ना कहीं आनंद होता है, तो सुन ले गाना।
1: चलिए

0: कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा और बस इतना ही समय है कि सखियों से ले लें हम इजाजत।
1: आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
0: चंचल वर्मा का नमस्कार।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। पेपर लीक के आरोपों की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई करेगी। विद्यार्थियों को दोबारा परीक्षा के लिए नया पंजीकरण या अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। परीक्षा की नई तारीख जल्द ही अलग से घोषित की जाएगी। राजधानी रांची समेत राज्यभर में बिजली पानी संकट को लेकर भाजपा ने आज विरोध प्रदर्शन किया। रांची में आयोजित विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ शामिल हुए। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चिलचिलाती गर्मी में जनता बूंद बूंद पानी और बिजली के लिए त्रस्त है, लेकिन सरकार पूरी तरह संवेदनहीन बनी हुई है। भाजपा जिला कमेटी के आह्वान पर पाकुड़ में भी आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया।

0: द्वारा जिला अध्यक्ष सरिता मुर्मू के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन से सिद्धो कान्हू मुर्मू पार्क तक खाली घड़ा लेकर मार्च किया। नेताओं ने हेमंत सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। हजारीबाग सिविल सर्जन कार्यालय में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य हर नागरिक का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाना है, जिससे देश में कहीं भी इलाज आसान हो सके। लोहरदगा जिला समाहरणालय परिसर से उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने जनगणना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ विभिन्न गांवों में जाकर लोगों को जनगणना का महत्व समझाएगा। उपायुक्त ने कहा कि सटीक आंकड़ों से ही विकास योजनाएं बनती हैं, इसलिए सभी नागरिक सही जानकारी देकर सहयोग करें। और राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में आज दोपहर मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश शुरू हुई। इस बारिश से पिछले कई दिनों से जारी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ना वो शहर है ना वो देहात था, तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे, लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारी पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे, लेकिन शिक्षा ज़रूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50% हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में,
2: शरारतों में,
1: हर चीज़ में गुजारते थे और हर मौसम का मज़ा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियाँ खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
2: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
1: सब कुछ होता था सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, तो छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, यह अनुभव मैंने वहां लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई थी। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ, और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा यह इंसान, यह आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे, तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी, उसके पीछे आज भी चर्च है, तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ, तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं। और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गाँव ने मेरे ऊपर किया है।
2: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द-गिर्द जाते रहे हैं?
1: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है, लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांदबीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांदबीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी उस जमाने के रास्ते वहां पर है
2: जी।
1: और क्रिएटिव है
2: जी।
1: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन

0: संस्कारित होते गया।
1: जी, ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
0: जी,
1: है ना। सदाशिव जी, इसी बात पे आपकी पसंद का कोई एक गीत हम क्यों ना सुन लें।
0: जी जी, जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
1: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये।
0: हाँ, और उसके बोल है, मेरे दिल में है एक बात।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई, और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो हमारा वर्ग है उनको लेकर, कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी?
1: और दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले, और मैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूमकर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे, इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था, और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
0: क्रिकेटियर बन जाऊंगा।
1: और जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है
0: जी।
1: आज भी चल रही है वो और बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे। और इसकी कंपटीशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
0: जी।
1: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
0: उस समय।
1: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
0: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
1: नहीं। नाटक करता रहा
0: जी,
1: धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आईं, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
0: जी।
1: हम मतलब हवा में दौड़ते थे
0: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे।
1: जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी
0: जी।
1: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी
0: जी।
1: प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग
0: थे। तो वो पलट के नहीं देखती थी?
1: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया
0: जी।
1: हमारे अंदर हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो
0: आ तो गई। गीत सुन लेते हैं
1: जी।

0: चलिया।
1: लेकिन आप आगे ये बताइए ना कि थिएटर की जो बात है वो वहां से आपकी शुरुआत हो गई
2: जी।
1: और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुगबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
2: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था, इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
1: जी।
2: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था, तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो मैं, मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो। मैं सिखाता हूँ तुम्हें? मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो, ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा।

अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए और थिएटर करने लगा।

0: क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
1: आपको कैसे लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
0: नहीं नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे
1: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
0: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनाया सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी नए होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे,
1: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे होता है हेलो फरमाइश।
0: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाएं किसी होटल में चाय पीने जाएं, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था, साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो ले।
1: लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है इज्जत मिलती है तो। लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी
0: जी, छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
1: पुरानी
0: बहुत पुरानी, गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
1: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत बहुत अच्छा लगा?
0: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
1: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा
0: जी।
1: वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे
0: जी।

0: पूना पहुंच गए, पूना यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, लेकिन पूना से बंबई की तरफ कब आए और कैसे आना हुआ था?
1: नहीं, पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कंपटीशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया, काई स्वप्न विकाई चेत। वो नाटक उसमें से, उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को। और नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक जो परीक्षक थे उनका नाम था भिकुपई आंगले, उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, आज भी हैं
0: जी,
1: उन्होंने कहा कि आप आइए। और मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं, सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूंगा लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपके एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिकुपई आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले ले। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी उनका नाम शांताबाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है।
0: उन्होंने मेरी अनंत जोक कर रहे हैं
1: जी, उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, बड़ा नर्वस हुआ। फिर दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया, बोले
0: उसी रोल के लिए
1: नहीं,
0: हाँ।
1: हमारे पास एक नाटक है, जयवंत दलवी ने लिखा है, नाम है बैरिस्टर,
0: वाह,
1: विजया मेहता जी डायरेक्ट करने वाली है, आप अच्छे एक्टर हो तो चलो हम विजया जी के पास जाते हैं। मुझे उनके घर ले गए लेकिन वो मिली नहीं। फिर दूसरे दिन हमको गोवा हिंदू एसोसिएशन के ऑफिस में मिली और उन्होंने मुझे कह दिया कि देखो सदाशिव, मैंने इस रोल के लिए पहले ही चुन लिया है एक्टर को, और विक्रम गोखले वो काम करने वाला है, तो इस बार हम कुछ नहीं कर सकते। हम फिर मैं वापस आया और दो अच्छे नाटक मेरे हाथ से चले गए, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी, दिल में एक आवाज बज रही थी, आंखों में एक सपना था कि कुछ कोई बात नहीं और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फोन मुझे आया, दुर्वांची जुड़ी ये एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आइए
0: जी।
1: मैं तीसरी बार बम्बई आया, तीसरी बार बम्बई आया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया था।
0: अरे वाह।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में मेहमान सितारे हैं जाने माने फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने।
1: और नीचे छोटी छोटी दुकानें थी और वहां गाने बज रहे थे, आपके बरस भेज बंदिनी का गाना जो आज भी मुझे याद है।
0: अच्छा, इसे सुनेंगे हम अभी?
1: जी
0: जरूर सुनेंगे।

0: उसके बाद मैं ऊपर गया, दारवकर जी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बिठाया, वो बातें करने लगे और वो उनसे कहने लगे कि मैंने जो आपको कहा था वो नगर में रहता है वो आदमी सदाशिव, उनको लेकर आओ ना, आप किसी इन जवान लड़के को लाएंगे तो कैसा होगा, वो तो प्रोफेसर का रोल है। तो उन्होंने कहा कि सर ये वही है सदाशिव अमरा प्रकर जी। तो वो दो मिनट तक मुझे घूरते रहे, बोले आपने वो मास्टर का रोल किया था उस नाटक में और आप तो बूढ़े लग रहे थे उसमें और आप तो इतने जवान हैं, ये कैसे हुआ। तो मैंने मन में कहा ये दाद है या क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं वही हूँ। अरे बाप रे, फिर उन्होंने जो मेरी तारीफ की है बहुत तारीफ की। फिर मुझे कहा कि आप ही इस रोल के लिए फिट हैं, बराबर हैं, आप ये स्क्रिप्ट, उस वक्त वो परदेशी थे उनका ही वो स्क्रिप्ट था, अभी मुझे उस नाटक का नाम याद नहीं आ रहा है, हाँ मैंने मुझे याद आया सत्यम शिवम सुंदरम
1: जी।
0: और मैं स्क्रिप्ट लेकर घर आया, गावाया, याद करने लगा, प्रोफेसर के डायलॉग याद करने लगा। एक महीने के बाद मुहूर्त पे मैं वापस गया तो दारवेकर जी मुझे देखकर कहने लगे आइए आइए बैठिए, लेकिन इस वक्त वो मेरे से बात करने से झिझक रहे थे। लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा कि देखो भाई हमने आपको वो रोल तो दिया था, लेकिन अभी भी एक सीनियर प्रोफेसर कमलाकर सोनटक के जो औरंगाबाद से वो जो है उनकी एक्टिंग की स्कूल है वहाँ से इस्तीफा देकर आए हैं और वो अब ये रोल करेंगे। अब ये तीसरी बात जब मेरे साथ हादसा हुआ तो मैंने कहा देखो भाई, उसके पहले घर में मेरी हमेशा पिताजी से झगड़े चलते थे, बोलते थे ये नाटक नाटक छोड़ दे, ये अपना लाइफ नहीं है। और मैं कहता था नहीं मुझे नाटक ही करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ।
1: तो आप करते भी नहीं थे उस समय कुछ?
0: कुछ नहीं कर सकता था।

0: एक दिन मुझे एहसास हुआ कि नाटक के अलावा मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इस बार जब फाइनली मुझे पिताजी ने बुलाया तो पिताजी को मैं मिलने गया तो पिताजी ने कहा, अगर तेरे जीवन में यही ट्रेजेडी लिखी है तो जाओ करो। और मैं आया था, बैग भरकर आया था, रिहर्सल करने आया था, दोबारा मैं नहीं जाना चाहता था। मैंने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? बोले, क्या करे, उनका नाम बड़ा है, ये है वो है, उनको लेते हैं। मैंने कहा, नहीं, इसमें कोई और रोल हो तो मुझे दे दो। और मैं उसमें एक डबल रोल करता था, एक गुंडे का रोल करता था एक, और एक लड़के का रोल करता था। वो दो रोल मैंने, और इस तरह मेरी व्यावसायिक नाटक में पहली बार एंट्री हुई
1: जी।
0: उसके बाद मैंने केंकरे जी के साथ काम किया, और मेरे हाथ में एक नाटक था, मेरे दोस्त ने लिखा हुआ यात्रिक। वो यात्रिक नाटक मैं छबिलदास में करना चाहता था, और इसी वजह से मेरी INT इंडियन नेशनल थिएटर में पहचान हुई, और उनकी तरफ से मैंने पहली बार डायरेक्शन की यात्रिक की
1: जी।
0: उसके बाद मैंने छिन्न नाटक किया जिसमें स्मिता पाटिल ने काम किया था, आशा लता ने काम किया था, और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया। तेंदुलकर जी के 4-5 नाटक किए हैं, हैंडसअप नाटक किया, और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी, और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्ध सत्य
1: जी।
0: और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई, वो मेरा हैंडसअप नाटक देखने आए, और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था, और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा, देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, 3 दिन का काम है, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी,
1: अर्ध सत्य का रामा शेट्टी।
0: और मैं नर्वस हो गया, मैंने कहा क्या यार, इतनी बढ़िया एक्टिंग मैंने की इंस्पेक्टर की, और ये कौन से शेट्टी फिट्टी का रोल दे रहे, 2.5-3 सीन का है, हमें पसंद नहीं यार। तेंदुलकर जी को पूछा मैंने, कहा ये क्या रोल है? बोले, छोटा है, अच्छा है। मैंने कहा, मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, 2-2.5 सीन थे, लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था
1: जी।
0: और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था। मैंने कहा, चलो एक एक्सपीरियंस होगा। 2-2.5 दिन काम किया, उसको भूल गया, मेरा नाटक चलता था,
1: भूल भी गया
0: क्योंकि बाद में 6 महीने में मैं भूल गया कि मैंने किसी फिल्म में काम भी किया।
1: क्योंकि आपके अर्धशक्ति के रामा शेट्टी को लोग आज भी याद करते हैं
0: जी, जी।
1: और मैं तो कहूँ कि एक विलन के लिए एक नया चेहरा आपने उस समय दिया, और कुछ विलन की तरफ देखने का लोगों का नजरिया भी उसी भूमिका से बदल गया और आप भूल गए।
0: जी मैं सचमुच मैं भूल गया, क्योंकि मैं इतना नाटक में व्यस्त था कि मुझे मालूम भी नहीं था। और उसके बाद मैं नाटक खत्म हुए, मैं कुछ काम के लिए गांव गया, और उस वक्त मुझे वहां पे फोन आया कि आपका पिक्चर का प्रीमियर है, आप आइए, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने पिताजी को कहा कि मेरे प्रीमियर शो है, मैंने एक फिल्म में काम किया है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, अच्छा अभी फिल्म भी करने लगे, वहां भी नाचने लगे, कमर हिलाने लगे। मैंने कहा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है, अच्छा रोल है। नहीं नहीं बोले, अभी इधर ही रहो, उधर जाने की जरूरत नहीं, अभी कोई आपका मतलब नाटक बिटक नहीं है। मैं वही रह गया,
1: प्रीमियर में नहीं गया,
0: प्रीमियर में नहीं जा सका। बात यह हुई कि बड़ा अफसोस लगता था और उदासी छाई हुई थी, और उस वक्त मैंने फिर गुरुदत्त की एक फिल्म देखी, कागज के फूल, और उसमें का वो जो गाना है वो मुझे आज भी बहुत याद आता है।

0: पिया।
1: वाकई रामा शेट्टी को लोग नहीं भूल पाए हैं आज भी, और उसके बाद जो है आपकी कई फिल्में आई, जैसे आखिरी रास्ता में जो आपने पॉलिटिशियन चतुर्वेदी का रोल किया, वो भी मुझे वो पूरा सीन ऐसा देख के लगता था कि अभी जाके इस आदमी का गला घोंट दूं, ये जयाप्रदा कुछ नहीं कर पा रही है, हम जाके कुछ इसका कर डाले। और मैं समझती हूँ कि यही आपका सक्सेस है, यही एक बहुत बड़ा।
2: हाँ, वो उस फिल्म में एक बहुत मजा हुई थी कि अमिताभ बच्चन जी उसमें थे, जयप्रदा थी, श्रीदेवी थी, और उसके डायरेक्टर थे के भाग्य राजा, जो वहाँ के बहुत बड़े डायरेक्टर और एक्टर भी थे, हीरो भी है
1: जी।
2: और उनको ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी तो कैसे, मतलब उनसे बातचीत कैसे करें। अमित जी को तो बहुत ही प्रॉब्लम होती थी उस वक्त, और वो जब भी जो भी करना समझाना चाहते थे वो थ्रू एक्टिंग ही समझा सकते थे
1: जी।
2: तो उनके बाजू में एक हिंदी और तेलुगु जानने वाला आदमी था, मतलब तमिल जानने वाला, और वो उनको बताते थे, फिर ये हिंदी में हमें बताता था, और बीच में वो फिर एक्टिंग करते थे। तो वो जो सीन है जो उनके ऊपर मैं रेप के बारे में बात करता हूँ, वो सीन जब मैंने किया तो उन्होंने मुझे एक्टिंग करके बताया कि मुझे इस तरह चाहिए, और वो एक एक्टिंग की लैंग्वेज भी होती है ना, तो वो मैं समझ गया
1: जी।
2: और फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल रहे
1: जी।
2: तो एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस था, और फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई, अच्छा हुआ
1: जी।
2: काफी वैरायटी फिल्में कर रहा हूँ।
1: ये जो विलन बनना और एक साथ कॉमेडियन भी बन जाना, ये आप कैसा कर पाते हैं? कहीं पे मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि जैसे आपके प्रोड्यूसर्स या निर्माता जो आपके पास अपना रोल वो भेजते थे, तो वो विलन का रोल रहता था, वो उसमें बदलाव नहीं आया, तो लगातार वही काम करते करते करते करते जब कॉमेडियन का रोल करने को मिल गया, तो

0: उस चीज से निकल के, उस शय से निकल के इस शय में अपने आप को ढालना, वो आपने कैसे कर लिया?
1: नहीं, मैं एक्टर हूँ और जो भी रोल मेरे सामने आता है उसे लगन और निष्ठा से निभाना मेरा काम है। इसीलिए तो मेरे हर कैरेक्टर को गालियां मिलती है लेकिन हमें तालियां मिलती है।
0: तो उम्र एक अलग चीज है जो व्यक्ति की होती है, और फिल्म की जो अदा है, जो भूमिका है, जो रोल है, उसकी एक अलग उम्र होती है। मतलब हर उम्र में कलाकार को अपने आप को ढाल लेना पड़ता है। तो कुछ उसके बारे में बताइए ना कि बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा था कि आप तो बहुत बूढ़े थे और आप तो हो जवान बिल्कुल, ऐसी कोई किसी भूमिका के बारे में जिसमें आपको लगता है कि बिल्कुल अलग मैं कुछ ये कर रहा हूँ?
1: हाँ, वैसी एक भूमिका मैंने सड़क में की थी
0: जी,
1: महारानी की, युनक की। वो भूमिका जब मेरे पास आई, उसके निर्देशक थे महेश भट्ट और बड़े मुझे रोल तो दिया उन्होंने, लेकिन घबराए हुए थे कि इस तरह का युनक का विलन का रोल लोगों को अच्छा लगना,
0: महारानी
1: का रोल बहुत जरूरी है, और अच्छे लगने के साथ साथ उसकी एक दहशत पैदा करना, क्योंकि आज तक फिल्मों में जितने भी युनक के रोल हुए हैं वो कॉमेडी के लिए इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये रोल लोगों के दिल में दहशत पैदा करे ऐसा होना चाहिए
0: जी।
1: और उसके लिए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, और रोल सुनकर मैंने कहा मैं ये करता हूँ। बोले आपको जरा भी हिचक नहीं हुई हाँ कहने में? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आप ये कर पाएंगे? मैंने कहा जरूर करूंगा। कैसे करेंगे? मैंने कहा वो आप मुझ पर छोड़िए, इसके लिए क्या करेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, वो भी मुझ पर छोड़िए। और मुझे सोचने में जरा थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने एक प्ले किया था, उसमें किंचित गंधर्व का रोल था, वो मैंने किया था कॉलेज में, इसलिए उसके एक्टिंग की मुझे चिंता नहीं थी। मुझे चिंता थी कि इस कैरेक्टर की दहशत कैसे मैं पैदा करूं
0: जी।
1: और जब हमने पहला सीन जिस दिन किया, उस दिन भट्ट साहब बहुत खुश हुए और उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये लड़का अच्छा काम करेगा, और उसी का फल मिला मुझे। उस रोल की काफ़ी तारीफ हुई, पिक्चर भी बहुत चली और उसमें काफ़ी अवार्ड्स भी मुझे मिले
0: जी जी।
1: तो ये करते वक्त मुझे बड़ा मज़ा आया। एक उसमें सीन हम करते थे तो मैंने कहा एक सीन इसका साड़ी में होना बहुत ज़रूरी है कि वो साड़ी पहनकर बात करता है। तो बोले ज़रूर करेंगे, आप बोलो कैसे करना है। वो छोड़ देते थे और ये उनका छोड़ना बड़ा अच्छा था,
0: मुझे ऐसा लगता है कि
1: प्रोत्साहित करना था।
0: हाँ, कलाकार के साथ साथ जो आपने निर्देशन का इतना सारा काम किया
1: जी,
0: वो ही आपका इसमें
1: जी
0: हुनर।
1: हाँ, तो उस वक्त मैंने किया, और बाद में लोगों ने पूछा मुझे कि आपने ये रोल करते वक्त क्या स्टडी किया, कहाँ किसको देखा, क्या देखा क्या नहीं देखा। तब मुझे याद आया कि मैंने वो प्ले किया था, वो एक्टिंग मेरे पास थी, और एक ज़माने में मैं जब गया था मेरे दोस्त के साथ किसी काम के लिए, तो वहाँ एक फ़ोटो लगी हुई थी साड़ी में किसी औरत की, और उन्होंने कहा नहीं ये औरत नहीं ये मर्द है, लेकिन कभी कभी वो साड़ी पहनकर ऐसे बैठते हैं और उनको शौक है साड़ी पहनकर फ़ोटो निकालने की। तो वो मैंने फ़ोटो देखी थी, वो मेरे दिमाग में थी, वो जो यादगार है, वो यादगारें हमें काम आती है
0: जी,
1: वो बहुत बढ़िया होती है
0: जी।
1: जब आदमी एक्टिंग करता है तो यादें सामने आ जाती है कि भाई देखो ये है ये है ये है
0: जी।
1: वही तो हमारी मतलब जिसको हम कहेंगे कि जीवन का अनुभव, जिसको लोग कहते हैं, मैं तो यादगारें कहता हूँ, वही बहुत संपन्न करती है हमें और वही हमसे एक्टिंग करवाती है
0: जी।
1: ऐसे कुछ डायलॉग थे उसमें, डर मत मेरी जान डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, जानती हूं क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूं और आधी औरत, देख ना ये किस्मत का खेल तो देख, कुछ नहीं मेरे पास है ना, तो वो सिर्फ दिमाग, हाँ कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए औरतों का धंधा करती हूं और मर्दों की सेवा, इस जिस्म के बाजार का महाराजा और नाम महारानी।
0: वाह वाह वाह।

0: लेकिन इसके अलावा आप और क्या क्या, मतलब आपकी हॉबीज क्या हैं, आप क्या करना और पसंद करते हैं, या खाली समय में और क्या करते हैं?
1: खाली समय में मैं किताबें पढ़ता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ, दोस्तों से बातचीत करता हूँ, पुराने शिल्प मुझे बहुत पसंद है, मैं मंदिर में जाता हूँ किसी पुराने तो जरूर वो मंदिर देखना चाहता हूँ और उसी लिए मंदिर जाता हूँ। टीवी देखना मुझे पसंद नहीं है लेकिन नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी देखता हूँ, कभी कभी बीबीसी भी सुनता हूँ। और आप यकीन नहीं करोगी, मैं ऑल इंडिया रेडियो सुनना बहुत पसंद करता
0: हूँ। वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही उम्दा बात कही है आपने
2: जी।
0: आपने कभी लिखा है जो आप ये कह रहे हैं कि मैं लोगों को देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ, उनको अपनी भूमिकाओं में ढाल लेता हूँ, तो क्या आपके मन का कभी ये रुझान नहीं हुआ कि कुछ लिखें भी?
1: नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन एक हादसा जरूर हुआ था कि अपने मराठी थिएटर के बहुत बड़े राइटर वीवा शिरवाड़कर, जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था, आज वो नहीं है, मैं और डॉक्टर लागू एक दो बार डॉक्टर लागू के संग में उनके पास गया था और बातें हो रही थी और सोशल वर्क कमिटमेंट की बातें हो रही थी, तो मैंने कहा ये बातें करने से क्या होगा, अगर करना है तो चलो जीवन के कुछ साल निकालो, दे दो उनको, काम करते हैं। तो शिरवाड़कर जी ने मेरी तरफ कहा, देखा और कहा कि देखो कि समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि बाहर निकलो और समाज का काम करो, हर आदमी अपना काम सिंसियरली करे तो भी वो एक समाज सेवा है
0: जी।
1: तुम तुम्हारे माध्यम से लोगों की सेवा कर सकते हो। उस वक्त समझ में नहीं आई बात, कुछ साल बाद एक स्क्रिप्ट मिला फिल्म का, वो हेलन केलर के ऊपर था, मैंने वो फिल्म पढ़ी और मैं बड़ा खुश हुआ कि एक आंधी गूंगी बहरी लड़की को कैसे सिखाया 100 साल पहले। तो मैं वो स्क्रिप्ट लेकर गया शिरवाड़कर जी के पास और कहा कि इसके ऊपर मुझे नाटक लिख के दो, मैं ये नाटक करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं इंग्लिश ना फिल्म के ऊपर इस तरह नाटक मैं नहीं लिख सकता, आप किसी और से लिखो। तो मैं गया, फिर वापस बैठा, फिर कुछ सीन तैयार किए, कुछ ढांचा तैयार किया, फिर उनके पास आया। तो उन्होंने कहा ये आपने कुछ किया है लेकिन ये मैं विजुअल नहीं कर सकता हूँ उसको, तो आप ऐसा करो इसके कुछ डायलॉग्स भी लिखो, संवाद लिखो और फिर मेरे पास आओ। फिर मैं गया, फिर कुछ संवाद लिखे, फिर लेकर आया और उनके सामने रखा। हाँ बोले अभी ठीक है, तुम ये रख के जाओ। और उसके बाद उन्होंने 10 दिन में उसमें कुछ संवाद लिखे, जहाँ मैंने संवाद लिखे थे उनको अच्छे लगे थे वो वैसे के वैसे रखे, और इस तरह हम दोनों ने मिलकर एक की मायागार नाम का नाटक लिखा।
0: एक की माया ही हो गई जैसे।
1: जी जी।
0: और वो बहुत उसका नाम भी हुआ
1: जी,
0: उसको काफी सराहा भी लोगों ने।
1: एक फिल्म है सूरत और सीरत,
0: बहुत पुरानी फिल्म है
1: जी
0: ये।
1: जी, बहुत दिया देने वाले ने तुझको।

0: आप विविध भारती की तरफ दोबारा जरूर आइएगा, आपसे बात करने का एक मौका हमें जरूर दीजिएगा, और सारे श्रोताओं की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ, आगे चाहती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर से कांचन प्रकाश संगीत की बातचीत सुन रहे थे।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे।

अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। एनटीए ने 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। पेपर लीक के आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी। विद्यार्थियों को दोबारा परीक्षा के लिए नया पंजीकरण या अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। परीक्षा की नई तारीख जल्द ही अलग से घोषित की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते झारखंड में अवैध हथियारों की खेप पहुंच रही है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और खुफिया तंत्र इस गंभीर खतरे को रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रहे हैं। बिजली, पानी और साफ सफाई जैसे बुनियादी समस्याओं को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज जामताड़ा उपायुक्त कार्यालय के समक्ष राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा ने सरकार पर जन समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। रामगढ़ के उपायुक्त ऋतुराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला स्तरीय वाटर टास्क फोर्स की बैठक की। इसका उद्देश्य भीषण गर्मी और शहरी क्षेत्रों में निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करना है। उपायुक्त ने 2 से 15 मई तक चलाए जा रहे विशेष जलापूर्ति शिविरों की प्रगति की समीक्षा की। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के पबिया गांव के पास आज बालू लदे एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। और जमशेदपुर में पहाड़ों और नदियों के संरक्षण को लेकर 22 और 23 मई को राष्ट्रीय स्तर की 2 दिवसीय संगोष्ठी आयोजित होगी। जल पुरुष राजेंद्र सिंह और विधायक सरयू राय के संरक्षण में होने वाले इस विमर्श का मुख्य उद्देश्य नदियों और पर्वतों के संवर्धन के लिए सशक्त कानून बनाने की ठोस पहल करना है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा।

नजरों ने नजरों से जो कह दिया है सब कुछ, तो अब पर्दा किस बात का है। अनजान थे कल, आज दिल के इतने करीब हो, तो फिर पर्दा किस बात का है।

दिल की बातें हैं, ये कोई पानी पे लिखी इबारत नहीं है। संभाले हैं दर्द एक दूजे के, ये कोई तिजारत नहीं है।

कुछ इस तरह से जुड़े हैं दिल से दिल के तार, बस मुस्कुरा भर देते हो और ढह जाता है शिक

रखी हैं रात रानी की खुशबू तेरी सांसों में, इस मदहोशी का क्या करें। एक होने को बेताब है तन और ये मन, दिलों की गर्मजोशी का क्या करें।

0: छाया गीत,
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। सायंकालीन सभा में आप सबों का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले जानकारी देते हैं अपनी सभा में प्रसारित किए जाने वाले शेष

6:55 पर हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र की प्रसारण सेवा में, जहां ठीक 7:30 बजे आप सुनेगा प्रादेशिक समाचार 7:10 पर। जिले में आजकल

खुला आकाश का समय होगा शाम 7:45 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से आप सुनिएगा रात्रि 8 बजे। देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश गान आप सुन सकेंगे रात्रि 8:30 पर।

हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे, अंग्रेजी में समाचार रात्रि 11:05 पर। और हर रोज की तरह अपनी सभा का समापन करेंगे रात्रि 11:10 पर।

युवानी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त आराध्या माही। आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम में आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हुए फिल्मी गीतों को भी सुनाएंगे। तो दोस्तों, आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे चर्चा का विषय है कि गर्मियों के मौसम में रखे पशु पक्षियों का ख्याल। आइए इसके बारे में हम बातें करते हैं। दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय यानी कि गर्मियों के मौसम में पशु पक्षी का ख्याल पर चर्चा करेंगे। गर्मी का मौसम मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों के लिए भी कठिन समय होता है। तेज़ धूप, गर्म हवाएं, पानी की कमी और बढ़ता तापमान उन्हें बहुत परेशान पहुंचाती है। ऐसे समय में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन सब बेजुबान जीवों की सहायता करें और उनके प्रति दया एवं संवेदनशीलता दिखाएं। तो दोस्तों, हम कैसे पशु पक्षियों का ख्याल रख सकते हैं, आइए इसके बारे में बातें करते हैं। दोस्तों, गर्मी बढ़ने से तालाब, पोखर और छोटे जल स्रोत सूखने लगते हैं। पक्षियों को पीने का पानी नहीं मिल पाता, जिससे वह कमज़ोर हो जाते हैं और कई बार अत्यधिक गर्मी के कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। सड़क पर घूमने वाले पशु जैसे कि गाय, कुत्ते, बकरी आदि भी पानी की और छाया की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। तेज़ धूप और लू के कारण पशुओं में थकान, कमजोरी और बीमारियां बढ़ जाती हैं। पक्षियों के घोंसले भी गर्म हो जाते हैं, जिससे छोटे बच्चे भी प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें उनकी सुरक्षा के लिए कुछ छोटे कदम उठाने चाहिए। तो ये कदम कौन कौन से हो सकते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, पशु पक्षियों की सहायता कैसे करें। पहला है कि पानी की व्यवस्था करें। गर्मी में सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है पानी। हम अपने घर की छत, बालकनी, आंगन या पेड़ के नीचे मिट्टी के बर्तन, कटोरी या मटके में साफ पानी रखना चाहिए। रोज़ पानी बदलना चाहिए ताकि वह साफ और ठंडा रह सके। तो दूसरा है दाना और भोजन रखें।

पशुओं के लिए चावल, गेहूं, बाजरा या दाना रख सकते हैं। सड़क के पशुओं के लिए भी हरा चारा, रोटी, भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे उनकी भूखे रहने की कमजोरी भी नहीं रहेगी और उन्हें परेशानी भी नहीं होगी। तीसरा है, छाया की व्यवस्था करें जहाँ संभव हो, यानी कि पशुओं को पेड़ की छाया या रोड के नीचे आराम करने दें। गर्म ज़मीन पर उन्हें ना ज़्यादा देर बांधें। घरों के आसपास पेड़ लगाना भी बहुत आवश्यक है। दोस्तों, घायल या बीमार पशुओं की मदद करें। कई बार पशु घायल या बीमार दिखाई देते हैं तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। पशु चिकित्सक या पशु सेवा संस्था को सूचना देनी चाहिए। थोड़ी सी मदद किसी भी जीव की जान बचा सकती है। दोस्तों, उसके बाद है, पेड़ पौधे लगाएं। पेड़ पर्यावरण को ठंडा रखता है और पंछियों को आश्रय देता है। अधिक से अधिक पेड़ लगाने से गर्मी कम होती है और पशु पक्षियों को रहने का सुरक्षित स्थान भी मिल सकता है। तो दोस्तों, स्कूल, मोहल्ले और गांव में लोगों को जागरूक करना चाहिए कि वे पशु पक्षियों के लिए प्रति दयालु बने रहें। यदि बच्चे रोज थोड़ा पानी और दाना रखें तो यह एक अच्छी आदत बन सकेगी। समाज के सभी लोगों को मिलकर इस कार्य में सहयोग करना चाहिए। पशु पक्षी प्रकृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी मदद करते हैं। यदि हम उनका ध्यान रखेंगे तो यह हमारी मानवता और दयालु का भी प्रणाम होगा। गर्मियों में एक कटोरी पानी और थोड़ा सा दाना रखने से किसी भी जीव को जीवन दान मिल सकता है। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प करते हैं कि इस गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों की रक्षा करेंगे, उन्हें पानी, भोजन और सुरक्षा देंगे, उनके प्रति प्रेम और करुणा का भाव भी रखेंगे। दोस्तों, अभी हम बातें कर रहे थे कि गर्मियों के मौसम में पशु पक्षियों का ख्याल कैसे रख सकते हैं। दोस्तों, इस चर्चा के बाद आइए सुनवाते हैं आपको एक प्यार

0: दोस्तों इस गाने के बाद आइए सुनते हैं वार्ता। विषय है पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण का महत्व। वार्ताकार हैं सुधांशु तिवारी।
1: पर्यावरण को संरक्षित करने की कई सारी विधियां हैं, जिनमें से आज हम वृक्षारोपण विधि के बारे में बात करेंगे। हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भी वृक्षों का विशेष महत्व है। वृक्ष ही प्रकृति की महान शोभा का भंडार है। वृक्ष ही मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु आदि के आधार है। वृक्षों के द्वारा ही सबके स्वास्थ्य की रक्षा होती है। अगर वृक्ष ही ना रहे तो जीवन भी नहीं रहेगा, इसलिए वृक्षों से हमारा गहरा संबंध है। इस प्रकार हमें वृक्षों की रक्षा की अत्यंत आवश्यकता है और वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। वृक्षारोपण का अर्थ, वृक्षारोपण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वृक्ष और आरोपण। इसका सरल सा अर्थ होता है वृक्षों को रोपित करना, मतलब छोटे पौधों को एक स्थान से खोदकर दूसरे स्थान पर लगाने जाने की प्रक्रिया वृक्षारोपण कहलाती है, अथवा मूल रूप से पौधों को पेड़ के रूप देने की प्रक्रिया को वृक्षारोपण कहते हैं। वृक्षारोपण का महत्व। वृक्ष मनुष्य और जीव जंतुओं को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तरीके से विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। वृक्ष जीवों को प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं तथा जहरीली गैसों को सोखते हैं। वृक्ष फल फूल जड़ी बूटियां जीव जंतुओं को आश्रय भी प्रदान करते हैं। वृक्ष बरसात लाते हैं और बाढ़ में हमारी सहायता भी करते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तरीके से वृक्षारोपण का मनुष्य तथा विभिन्न जीव जंतुओं के बीच गहरा महत्व देखा जा सकता है। वृक्षारोपण में लगाए पौधे जब वनों का रूप ले लेते हैं तो वन से हमें कई तरीके से लाभ पहुंचाते हैं। वनों से हमें भवन निर्माण की सामग्री मिलती है। वनों से फल, गोंद, कत्था, रबड़, बहुमूल्य लकड़ियाँ, कोयला आदि बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। वनों से कई तरह की औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, घास तथा जानवरों का चारा भी प्राप्त होता है। वन तापमान को सामान्य बनाने में सहायक होते हैं। वनों से लकड़ी, कागज, फर्नीचर भी प्राप्त होते हैं। वन दूषित वायु को ग्रहण करके हमें शुद्ध वायु देते हैं। वनों के वजह से ही अच्छी बरसात होती है, इसलिए वृक्षारोपण अत्यधिक आवश्यक है। वनों के काटने से हानियाँ। आज मानव अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए बेधड़क वृक्षों की कटाई कर रहा है। वनों की कटाई से बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न हो रही हैं। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो रही है। औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और जनसंख्या चलते वनों का क्षेत्रफल प्रतिदिन घटता जा रहा है। वृक्ष प्रकृति संतुलन बनाए रखने में प्रमुख कारक है। अगर इसी तरह से वृक्ष की कटाई होती रही तो एक दिन जीवों का अस्तित्व पर ही पूर्ण विराम लग जाएगा। वृक्षारोपण कार्यक्रम। हमारे देश भारत में वृक्षारोपण के लिए कई संस्थाएं, राज्य, वन विभाग, पंजीकृत संस्था, कई समितियां हैं। ये सब वृक्षारोपण के कार्य कराती हैं। शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी वृक्षारोपण को स्थान दिया गया है। पेड़ लगाने वाले और लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वृक्षारोपण हमारे राष्ट्र की अनिवार्य आवश्यकता है। देश की समृद्धि में वृक्षों का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए इस राष्ट्र के हर नागरिकों को अपने लिए, अपने राष्ट्र और अपने आने वाली पीढ़ियों की रक्षा हेतु वृक्षारोपण करना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए तथा वृक्षों को काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए, और जो हरे पौधे को काटता हुआ पाया जाए उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। नए वृक्षों को लगाया जाना चाहिए, तभी हमारी पृथ्वी हरी भरी और जीवन खुशहाल रहेगा। नमस्कार
0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता। विषय था पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण का महत्व। वार्ताकार थे सुधांशु तिवारी। दोस्तों इस वार्ता के बाद आइए अब हम चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम के बारे में। दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल विकास भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को रोजगार योग्य कौशल यानी कि स्किल प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से उन युवाओं के लिए बनाई गई है जो पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी नहीं पा रहे हैं, जिनके पास तकनीकी प्रशिक्षण नहीं है। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य क्या है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण देना, उन्हें रोजगार योग्य बनाना, स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रेरित करना, देश में बेरोजगारी को कम करना। प्रशिक्षण के क्षेत्र कौन कौन से हैं इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों इस योजना के तहत कई प्रकार के क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर और IIT यानी कि कंप्यूटर एंड IT सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिकल और मैकेनिकल काम, सिलाई, ब्यूटी पार्लर और फैशन डिज़ाइन जैसे कोर्स भी हैं, पब्लिक लिविंग और निर्माण कार्य यानी कि हेल्थ केयर और हॉस्पिटलिटी। इसकी मुख्य विशेषता है प्रशिक्षण पूरी तरह या अधिकांशत यानी कि फ्री होता है। प्रशिक्षण केंद्रों पर व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल सीख दी जाती है। प्रशिक्षण के बाद सरकारी मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। यह सर्टिफिकेट नौकरी पाने में भी मदद करता है। दोस्तों युवाओं को रोज़गार पाने में इसके क्या क्या लाभ इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों पहला है कि युवाओं को रोज़गार पाने में आसानी होती है, वे आत्मनिर्भर बने रहते हैं, छोटे व्यवसाय शुरू करने के अवसर मिलते हैं, देश में कुशल श्रमिकों की संख्या बढ़ती है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों क्षेत्रों में विकास होता है। दोस्तों इसका महत्व है कि आज के समय में केवल शिक्षा पर्याप्त नहीं बल्कि कौशल भी ज़रूरी है। यह योजना युवाओं को डिग्री के साथ स्किल देने का काम करती है, जिससे वे प्रतिस्पर्धा और इस दौर में आगे बढ़ सकें। दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम भारत के युवाओं के भविष्य को मजबूत बनाने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। यह उन्हें न केवल नौकरी पाने में मदद करती है बल्कि आत्मनिर्भर बनाने में भी और भारत के निर्माण में भी योगदान देती है। दोस्तों अभी हम बातें कर रहे थे प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम के बारे में। दोस्तों कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव हो चला है, तो आइए इसी कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा

दोस्तों इस गाने के बाद आइए जाते जाते अब हम बातें करते हैं सड़क सुरक्षा के बारे में। दोस्तों सड़क सुरक्षा का मतलब है कि सड़क पर चलते समय सभी नियमों का पालन करना ताकि दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट से बचा जा सके और हर व्यक्ति सुरक्षित रह सके। तो सड़क सुरक्षा क्यों ज़रूरी है इसके बारे में आई बातें करते हैं। आजकल सड़क दुर्घटना बहुत बढ़ गई है, इनके मुख्य कारण है कि ट्रैफिक नियमों का पालन न

करना, तेज गति यानी कि ओवर स्पीडिंग, शराब पीकर वाहन चलाना, हेलमेट या सीट बेल्ट ना पहनना। इसलिए सड़क पर सुरक्षा बहुत ज़रूरी है ताकि जान माल की रक्षा हो सके। तो हम इसे कैसे बच सकते हैं, इसके मुख्य नियम के बारे में जानें। हमेशा ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनें। चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। तेज गति से वाहन न चलाएं। मोबाइल फ़ोन का उपयोग ड्राइविंग के दौरान न करें। सड़क पार करते वक्त ज़ेब्रा क्रॉसिंग का ही उपयोग करें। इसके लाभ हैं कि दुर्घटनाओं में कमी आती है, जीवन सुरक्षित रहता है, यातायात व्यवस्था भी सही रहती है, समय और धन की बचत होती है। दोस्तों, सड़क सुरक्षा नागरिकों की जिम्मेदारी है। यदि हम सभी नियमों का पालन करें तो सड़क दुर्घटनाओं में काफ़ी हद तक रोका जा सकता है और यह एक सुरक्षित समाज बनाया जा सकता है। दोस्तों, इसी जानकारी के साथ हमारा समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो दोस्तों, आप अपने दोस्त आराध्या माही को आज्ञा दें, आपसे फिर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। एनटीए ने 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। पेपर लीक के आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी। विद्यार्थियों को दोबारा परीक्षा के लिए नया पंजीकरण या अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। परीक्षा की नई तारीख जल्द ही अलग से घोषित की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते झारखंड में अवैध हथियारों की खेप पहुंच रही है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और खुफिया तंत्र इस गंभीर खतरे को रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रहे हैं। बिजली, पानी और साफ सफाई जैसी बुनियादी समस्याओं को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज जामताड़ा उपायुक्त कार्यालय के समक्ष राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा ने सरकार पर जन समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। रामगढ़ के उपायुक्त ऋतुराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला स्तरीय वाटर टास्क फोर्स की बैठक की। इसका उद्देश्य भीषण गर्मी में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करना है। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के पबिया गांव के पास आज बालू लदे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। और जमशेदपुर में पहाड़ों और नदियों के संरक्षण को लेकर 22 और 23 मई को राष्ट्रीय स्तर की 2 दिवसीय संगोष्ठी आयोजित होगी। जल पुरुष राजेंद्र सिंह और विधायक सरयू राय के संरक्षण में होने वाले इस विमर्श का मुख्य उद्देश्य नदियों और पर्वतों के संवर्धन के लिए सशक्त कानून बनाने की ठोस पहल करना है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम खेती बारी।

0: अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और ग्रामीण भाइयों, हमेशा की तरह आज आपके साथ हैं आपके भाई प्रदीप कुमार सिंह, आपको भी हमारा नमस्कार।
1: आपको भी हमारा नमस्कार संतोष भाई, और सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार।
0: जी हाँ, ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम के आरंभ में हम बातें मई माह के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की हम बातें करेंगे। और मई के महीने में मुख्य कृषि कार्यों में ग्रीष्मकालीन फसलों जैसे मूंग उड़द की कटाई, जायद सब्जियां जैसे कि भिंडी लौकी खीरा करेला की बुआई, और खरीफ फसलों जैसे धान और मक्का के लिए खेत की तैयारी शामिल है। और इस समय गर्म मौसम को देखते हुए सिंचाई प्रबंधन, जी हाँ किसान भाई, और मवेशियों को लू लगने से बचाना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
1: किसान भाई, खेत की तैयारी रबी फसल की कटाई के बाद खरीफ फसलों जैसे धान मक्का के लिए मिट्टी को तैयार करें और मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें। इस महीने के अंत में या जून के शुरुआत में धान की नर्सरी डालने के लिए बीजों का चयन और उपचार करें। सब्जियों की बुआई में किसान भाई मई में भिंडी करेला लौकी तुरई खीरा और मिर्च जैसी गर्मी सहन करने वाली सब्जियों की बुआई करें, या फसलें 45 से 60 दिनों में तैयार हो जाती हैं।
0: बिल्कुल ग्रामीण बंधु, और सिंचित क्षेत्रों में कपास की बुआई भी हमारे ग्रामीण बंधु जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सफ़ेद मूसली और सर्पगंधा की नर्सरी लगाने के लिए भी यह बहुत अच्छा समय है। किसान भाई बहन, ग्रीष्मकालीन फसलों जैसे कि मूंग उड़द और सब्जियों में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर हल्की सिंचाई आप जरूर कर दीजिए। और फसलों को गर्म हवाओं यानी लू और नमी से जरूर बचाइए। किसान भाई बहन, मवेशी प्रबंधन के लिए पशुओं को लू से बचाएं और उन्हें पर्याप्त साफ पानी आप जरूर पिलाएं। इस प्रकार हमारे ग्रामीण भाई बहन अगर पशुओं की देखरेख करते हैं और खेतों की तैयारी अगर निश्चित रूप से किस फसल में अभी क्या करना चाहिए अगर उस बातों पर ध्यान देते हैं तो लाभ ही लाभ वो प्राप्त करते हैं। तो किसान भाई बहन, ये हुई बातें मई माह के मुख्य कृषि कार्य की। और अब आइए सुनते हैं एक प्यारा सा

0: अभी आप सुन रहे थे भरत सिंह भारतीय और साथियों को। आइए अब सुनते हैं एक किसान से भेंट वार्ता। भेंट वार्ताकार हैं दामोदर सिंह और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे साथी भाई संतोष कुमार। बात करेंगे बकरी पालन के बारे में। सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार दामोदर जी।
1: नमस्कार
0: दामोदर जी, यह बताएं कि आपने बकरी पालन की शुरुआत कब से की?
1: बकरी पालन का शुरुआत मैंने 2000 से शुरू किया और करने के बाद उससे धीरे धीरे दो बकरियां से मैं शुरू किया, आज करीब करीब 40 बकरियां मेरे पास हैं।
0: तो कहने का है मतलब कि दो बकरी से स्टार्ट किए थे ना
1: जी
0: 2000 ईस्वी में?
1: हाँ 2000 में।
0: और आज लगभग कितनी बकरियां आपके पास हैं?
1: आज अभी लगभग 40 हैं, सब बच्चे से लेकर म्यारी तक।
0: अच्छा, अभी तक संख्या 40 है। तो इस 2000 से लेकर के और इस समय तक कुछ बकरी बेचे भी होंगे?
1: हाँ बेचे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसी पैसा से।
0: आपने बहुत संघर्ष किया है दामोदर जी, और हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि बकरी के जो रहने का जो व्यवस्था है उसके लिए क्या इंतजाम है आपके पास?
1: हम शेड बना दिए हैं नदी किनारे, वहाँ पे करीब एक बीघा के अंदर में जाली मार दिया हूँ और उसमें ईंटा से कुछ ऊपर कर दिया हूँ और पटरा भी मैं बिछा देता हूँ बांस के बना के, ताकि बकरी उस पर चढ़ के,
0: उसका नेचर होता है ऊंचे
1: ऊंचे स्थान पर बैठने के लिए।
0: उसका नेचर होता है।

0: है। अच्छा, हम बात करेंगे कि बकरियों में बीमारियां कौन कौन सी लगती हैं।
1: बीमारियाँ खुरहा भी हो जाता है और चपका भी,
0: हाँ, खुरहा चपका भी होता है।
1: चपका एक सारा बीमारी बड़ा डेंजर होता है, सारा बीमारी जो है वो हाली कंट्रोल नहीं होता है।
0: न क्या उसमें तेज बुखार होता है, उसका लक्षण क्या है, कैसे हम जानेंगे कि
1: वो बुखार रहेगा, गोले गोले घूमने,
0: घूमने लगेगी,
1: हाँ
0: वो चक्कर काटने लगेगी,
1: चक्कर काटने लगेगी,
0: तेज बुखार
1: तेज
0: होगा।
1: बुखार होगा, वो सबसे खतरनाक। और एक पीपीआर
0: हाँ,
1: बीमारी
0: पीपीआर भी
1: बहुत,
0: बीमारी
1: वो भी
0: होती है।
1: बहुत अति है, अगर वैक्सीन नहीं लगवाइएगा तो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
0: पीपीआर चूंकि बकरियों में सबसे कॉमन बीमारी है पीपीआर,
1: हाँ लेकिन
0: इसलिए इसका टीकाकरण किसान भाइयों को, जो भी हमारे बकरी पालक किसान भाई हैं, उनको समय समय पर इसका टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए।
1: जी कराना चाहिए।
0: अच्छा, जो आपने उसके लिए शेड भी बनाया होगा,
1: हाँ शेड बनाया है,
0: तो शेड बनाने में क्या आपको खर्चा आया, क्या लागत आया?
1: कुछ घर का बांस था और ऐसे 10 बोरा सीमेंट लगा और आधा लकड़ा ईंटा जो होता है उससे हम जोड़ा हूँ।
0: अच्छा, मतलब जो आपके पास जो संसाधन था, उसी संसाधन से उसके रहने का आपने व्यवस्था कर दिया। तो आपको जानकारी होगा कि सरकार शेड के लिए स्कीम भी देती है, मतलब बकरी पालन अगर शेड लेना है या गाय पालन के लिए है, तो क्या आपने उसके लिए प्रयास किया?
1: बकरी के लिए प्रयास इसलिए नहीं किए ना, जो थोड़ा सा मैं 20 बार ब्लॉक जाओ तो ये जाओ, इसके चलते परेशानी के चलते मैं लाभ उनका नहीं लिया।
0: अच्छा, मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि सरकार के द्वारा किसान भाइयों के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, आप अगर लाभ लेते हैं तो अच्छी बात है, और उसमें अनुदान भी है उसमें, और कुछ परसेंट ही हमको लगता है कि आप लोगों के लिए 2-4-5% होगा, जिसमें आपको अपने से सहयोग करना है, बाकी 90-95% सरकार ही दे देती है।
1: जी
0: अच्छा, तो टीकाकरण की अगर हम बात करते हैं, कब कब टीकाकरण बकरियों में कराना चाहिए?
1: अब भी जो आ रहा है बरसात, जून जुलाई जून में करा लेंगे टीकाकरण जून
0: अच्छा,
1: में।
0: तो वो डॉक्टर वहाँ जाते हैं?
1: हाँ एक वो ब्लॉक वाला जो डॉक्टर है ना,
0: अच्छा,
1: तो विभागीय और कंपाउंडर रहते हैं ना,
0: वो लोग आते रहते
1: हाँ
0: हैं,
1: वो आते रहते हैं
0: तो
1: उन लोग,
0: उन्हीं लोगों से टीकाकरण।
1: हाँ उन्हीं लोग से टीकाकरण करवा लेते हैं।
0: लगभग क्या कॉस्ट आता होगा, मैंने एक बकरी के टीका लगवाने
1: ऐसे तो
0: पर
1: पैसा
0: पीपीआर
1: नहीं
0: के?
1: लिया है बेचारा वो कभी,
0: अच्छा, पैसा नहीं, फ्री में है
1: हाँ
0: सुविधा।
1: फ्री में है।
0: बताइए, जब सरकार फ्री में सुविधा दे रही है, उसके बावजूद हमारे किसान भाई इस योजना का अगर लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो बड़ा ही दुखद है।
1: हाँ दुखद है, फ्री में देता है बेचारा।
0: अच्छा, और पीपीआर के अलावा जैसे आपने सारा का जिक्र किया,
1: हाँ
0: और जैसे आप खुरहा चपका, उसके लिए क्या उपाय करते हैं अगर खुरहा
1: फिर
0: चपका का?
1: हाँ अब हम लोग क्या करते हैं, देहाती कटैला का तेल हम लोग चुआते हैं।
0: अच्छा, जो वो फूल वाला, जो पीला फूल
1: हाँ
0: वाला जो पकता है,
1: हाँ
0: जो भीतर में जो
1: हाँ
0: काला काला होता
1: अगर
0: है।
1: वो हो गया उस परिस्थिति में, आ नहीं तो फिर पैर में जब खुरहा हो गया तो कटैला का तेल सबसे बढ़िया
0: उपाय
1: उपाय है।
0: तो मैंने कितना बार, कई दिन देने के बाद वो ठीक हो
1: कटैला का
0: जाएगा?
1: तेल लगा दीजिए और थोड़ा सा गर्म पानी से धो के पैर को और उसको लगा दीजिए, तो आपको ज़्यादा दिन नहीं, 3 दिन में आराम हो जाएगा खुरहा,
0: अच्छा, अब 1 सप्ताह में समाप्त
1: हाँ
0: हो जाएगा।
1: समाप्त हो जाएगा।
0: तो जैसे ही किसी भी बीमारी का लक्षण बकरियों में नज़र आए या समझ में आए, तो फौरन पशु चिकित्सक से सलाह
1: लेते हैं,
0: लेना चाहिए।
1: हाँ लेते हैं।
0: अच्छा, और अगर हम बात करेंगे कि जो बकरी है आपके पास, वो कितने समय में वो ये हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है,
1: हाँ
0: गाभिन हो जाती है?
1: साल भर में 2 बार बच्चा देती है
0: तो एक
1: बकरी,
0: बकरी एक बार में कितना
1: दो
0: बच्चा देती
1: बार दो गो 3 गो 4 गो जैसा खान पान रहेगा। जैसे अब भी खान पान ठीक है, गेहूँ खाएगी और फूटेगा एकदम पूरा, तो तीन तीन बच्चा बढ़िया से एकदम पोस्टर होगा।
0: है? अच्छा, और
1: हाँ
0: 4 बच्चे थोड़ा कमजोर हो जाते
1: कमजोर
0: हैं,
1: होते हैं
0: तो हमको तो लगता है कि
1: उसमें मेहनत होता है।
0: दो ही बच्चे ज़्यादा बेहतर होते हैं।
1: हाँ लेकिन मेहनत पड़ता है ना धार धार के पिलाने के लिए।
0: हाँ, वो तो भाई मेहनत
1: हाँ
0: पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए कि हम, देखा गया है अक्सर हमारे जो क्षेत्र की जो ब्लैक बंगाल नकली बकरी है, उसमें दूध उत्पादन कम हो।

0: होता है।
1: हाँ कम होता है, काहे कि चारा पर रहता है ना ज़्यादा, हम लोग चराते हैं। अच्छा। और दूध उसका नस्ल ज़्यादा दूध नहीं करता है।
0: मतलब हम जो अक्सर हमने देखा है सो ब्लैक बंगाल में और कोई समस्या नहीं है, अच्छी बकरी है, मौसम के अनुकूल है, जलवायु में यहाँ की फिट बैठती है, स्थानीय ब्रीड भी है, तो उसमें होता है कि दूध की समस्या जो है, बकरी जो बच्चे जब होते हैं तो पालने में समस्या होती है, तो उसके लिए दूध के लिए कैसे करते हैं?
1: नहीं, दूध भर आ जाएगा, अपने बच्चों को पिलाने भर दूध आ जाता है उनमें।
0: अब अगर कम अगर दूध आ रहा है तो उसके लिए
1: तभी माड़ हम लोग देते हैं, ये सब पाउडर वाला दूध नहीं देते हैं।
0: अच्छा, माड़ पिला देते हैं।
1: हाँ, माड़ पिला देते हैं,
0: या फिर गाय की गाय का दूध भी दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता है,
1: हम लोग इस रीति रिवाज में
0: नहीं देते हैं,
1: नहीं दे पाएंगे।
0: जब देंगे तो माड़ ही देंगे, नहीं तो फिर अपने माँ का दूध ही पिएगी। अच्छा, तो अगर हम बात करें बाजार की हम बात करें तो दामोदर जी, बाजार कहाँ, मतलब बेचने के लिए सबसे उत्तम बाजार आपके नज़र में कहाँ है?
1: देखिए, डाल्टेंगे हम लोग आ जाते हैं, और नहीं तो सतबरवा, और नहीं तो व्यापार लोग चल जाता है शेड में।
0: अच्छा, व्यापारी स्वतः भी आपके पास खरीदने के लिए?
1: हाँ, जाते हैं,
0: पहुँच जाते हैं। और अगर नहीं पहुँचे, अगर आवश्यकता पड़ी बेचने की,
1: हाँ तब तो डाल्टनगंज
0: बाजार और सतबरवा बाजार, तो दोनों बाजार में कौन ज्यादा ग्राहक?
1: सतबरवा में ज्यादा रहते हैं बाहर का व्यापारी।
0: बाहर के व्यापारी, अच्छा रेट मतलब मिलता है,
1: रेट मिलता है
0: डाल्टनगंज से, अच्छा रेट सतबरवा मिलता है। तो ये तो बात हो गई। अभी तक और भी उन लोगों के लिए आप आगे का कुछ प्लानिंग है बकरियों के?
1: हाँ जी, और बढ़ाऊंगा मैं बकरी, और बना कहे कि फ़ायदा है, जब जाते हैं तब एटीएम की तरह पैसा मिल जाता है, तो सोचना नहीं पड़ता है बकरी से।
0: कहा भी जाता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और किसानों के लिए बकरी जो है एटीएम है।
1: एटीएम है, और इस बकरी का दूध कोई बीमारी में, एक आदमी मेरे को 100 रुपये लीटर मांग रहा था दूध, मैं किसी तरह उसको आधा लीटर में पुराया उस परिस्थिति बीमारी में, 4-5 बकरी के दूध के थोड़ा थोड़ा हम कह लीजिए जान बचाइए।
0: अच्छा, तो कहने का मतलब है कि वो जो है उसमें प्लेटलेट्स जो गिर जाता है उसके लिए लोग इस्तेमाल करते हैं।
1: हाँ,
0: आपने बहुत अच्छी बात बताई बकरी पालन से संबंधित। और कोई किसान भाइयों के लिए सलाह जो बकरी
1: हम
0: पालन
1: कहेंगे
0: करना
1: चाहते बकरी
0: हैं?
1: पालन कम लागत में ज़्यादा फायदा होता है, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है उसमें, केवल देख रेख मेहनत है। क्योंकि यहाँ का बकरियाँ हैं कि जंगल झाड़ में चर लेती है, पात पतौर खा लेती है, उससे अच्छा रहता है।
0: अच्छा रहता है। हाँ। इसके पहले भी कहीं आपने व्यवसाय प्रशिक्षण वगैरह लिया था क्या इस व्यवसाय पर?
1: नहीं, बकरी पालन में
0: नहीं प्रशिक्षण
1: नहीं
0: लिया
1: था,
0: मतलब स्टार्ट ही कर दिया।
1: हाँ, स्टार्ट ही कर दिया।
0: चलिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार सब किसान भाइयों को नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता। आइए अब सुनते हैं भेंटवार्ता, सीमित जल में मोटे अनाजों की खेती।
2: चौपाल में उपस्थित सभी किसान भाई बहन, बालकों, बुजुर्गों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे मोटे अनाजों की खेती की, और कम जल में हम मोटे अनाजों की खेती कैसे करें इसकी विस्तृत जानकारी आज हम साझा करेंगे। और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं आज कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: सर्वप्रथम तो हमारे किसान भाइयों को ये बताया जाए कि मोटे अनाजों में कौन कौन सी फसलें आती हैं।
3: किसान भाई मोटे अनाज से परिचित हैं, पहले मोटे अनाज की खेती करते थे, आजकल मोटे अनाज गरीबों की अनाज कही जाती थी पहले, लेकिन आज जो है उस मोटे अनाज का परिभाषा ही चेंज कर दिया गया है, और मोटे अनाज अब अमीरों की अनाज बन गई है, और उसका नामकरण भी अनेकों नाम से भी जानते हैं उसको, अभी सुपर फूड के नाम से जानते हैं, और आजकल उसको श्री अन्न का भी नाम दिया गया है। तो मोटे अनाज से और इससे सभी लोग परिचित ही हैं, खासकर मोटे अनाज में लोग जो कहते हैं कि मोटे अनाज में क्या ज्वार बाजरा और रागी को रखते हैं, तो ज्वार बाजरा रागी मोटे अनाज में तो लोग जानते ही थे, लेकिन इसमें मोटे अनाज में और अनाज जैसे कोदो सामा मक्का इस सारे को ही मोटे अनाज में रखा जाता है।
2: अच्छा, तो कम पानी की बात जहाँ तक आती है, लोगों का कहना होता है, कृषि वैज्ञानिक लोग बोलते हैं, और हमारे बहुत

0: कि आप धान की खेती ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी मोटे अनाज की खेती अच्छी तरह से हो सकती है, क्योंकि मोटे अनाज में पानी की बहुत कम मात्रा ज़रूरत होती है। जय आप ये समझिए कि अगर मान लिया कि 1 केजी धान की उत्पादन करना है, तो उसमें कम से कम आपको 7 हज़ार से 8 हज़ार लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। 7 हज़ार से 8 हज़ार लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है 1 केजी धान के उत्पादन के लिए। लेकिन अगर मोटे अनाज की खेती करते हैं, तो 1 केजी अगर उत्पादन करने के लिए उसमें कम 200 लीटर ही पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इसमें कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर साल में 200 मिलीमीटर भी बारिश होती है बरसात के सीजन में, तो 200 मिलीमीटर बारिश में भी मोटे अनाज की खेती आसानी से
1: कर किया
0: की
1: जा
0: जा
1: सकता
0: सकती
1: है।
0: है। तो ये पानी की समस्या इसमें नहीं रहती है, बहुत कम पानी में किया जा सकता है खेती। और खासकर पानी के साथ साथ जो है इसके रेगुलर जो बारिश जो होती है, इस पर भी इसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है ना। दूसरी बात कि इसमें जो न्यूट्रिएंट आप खाद वगैरह जो डालते हैं, वो भी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है मोटे अनाज के लिए। तो मोटे अनाज कहें कि खासकर जो जहाँ पानी की कमी है, किसानों के लिए भी ये बहुत कम किफ़ायती में ये मोटे अनाज की खेती कर सकते हैं।
1: जी, और इसकी संभावनाएं कहाँ कहाँ बनती हैं अमूमन खेती की?
0: हाँ, ये इसकी खेती की संभावना सभी जगह कर सकते हैं, खासकर वहाँ जहाँ की यहाँ पानी के निकास ज़्यादा हो। पानी के जहाँ पानी अगर जमा हो तो वहाँ पर इसकी खेती थोड़ा सा करने में दिक्कत हो सकती है ना। जहाँ पानी के निकास हो तो वहाँ की खेती आसानी से की जा सकती है। अनेकों तरह से जा सकते हैं, जैसे आप इसको छींटा विधि से भी वो करके कर सकते हैं, बिचड़ा डाल करके रोपाई करके भी कर सकते हैं। जैसे रागी की खेती करना है, मड़ुआ की, रागी जिसको मड़ुआ लोग कहते हैं, मड़ुआ खेती पहले करते थे लोग, लेकिन अब कुछ दिन से इसको मड़ुआ खेती के छोड़ दिए हैं, नहीं कर पाते हैं। तो मड़ुआ की खेती के लिए पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। इसको आप धान से पहले जो प्री मानसून कहते हैं, जिसमें प्री मानसून के सीजन में भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि पानी की बहुत कम मात्रा इसमें ज़रूरत पड़ती है। जिसमें कम बारिश हो रही है, जिसमें बारिश आई है, उसमें आप जून के मिडिल में उसको लगाइए, है ना। तो जून के मिडिल में लगा करके भी इससे आप जो है कम बारिश में
1: अधिक उत्पादन ले
0: उत्पादन
1: सकते
0: ले सकते हैं।
1: हैं।
0: और आजकल तो जो मोटे अनाज की काफ़ी डिमांड भी हो गई है ना। इसका जो आप ये देखिए कि प्राइस भी इसका आपको धान और गेहूं से ज़्यादा है। गवर्नमेंट भी इस पर ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है, हो गई है कि मोटे अनाज से खा करके लोग निरोगी भी हो सकते हैं, तो ये साबित हो गई है रिसर्च से। तो और मोटे अनाज पर जोर दिया जा रहा है, गवर्नमेंट भी जोर दे रही है, इसका MSP जो है इसको भी अच्छे धान और गेहूं से अच्छा MSP इसका गवर्नमेंट दे रही है। तो किसान के लिए यह फायदेमंद की खेती हो सकती है, काफ़ी फायदेमंद की हो रही है।
1: अब प्रश्न उठता है खाद उर्वरक वगैरह का, तो इसमें खाद उर्वरक का इस्तेमाल कहाँ तक हमारे किसान भाई करते हैं?
0: इसका खाद उर्वरक की मात्रा भी बहुत कम लगती है। इसमें अगर कंपोस्ट डालते हैं खाद, तो करीब 1 हेक्टेयर में 5 टन की जरूरत पड़ती है। कंपोस्ट डालने से इसका अच्छा उत्पादन भी होता है। केमिकल फर्टिलाइजर जो है इसमें अगर भी डालते हैं, तो उसमें केमिकल फर्टिलाइजर में भी इसमें बहुत कम मात्रा की जरूरत पड़ती है। धान और गेहूँ की तुलना में इसमें काफ़ी कम की जरूरत पड़ती है।
1: अच्छा, अगर हमारे किसान भाई मोटे अनाजों की खेती कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो अभी खरीफ के लिए वो किसकी तैयारी करेंगे?
0: अभी खरीफ में अभी के सीजन जो है रागी मड़ुआ की खेती कर सकते हैं, ज्वार की भी खेती अभी लग सकती है। ज्वार और जो रागी जा रागी जो मड़ुआ कर रहे हैं, उसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। अभी की जून के अभी जून चल रहा है, तो जून के मिडिल में अभी बिचड़ा डाल सकते हैं, और बिचड़ा डाल करके उसको रोपाई के करके।
1: अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सामा की, ये सामा फसल के लिए हमारे किसान भाई क्या तैयारी कर सकते हैं?
0: हाँ,
1: क्योंकि देखिए
0: वो तो
1: ये,
0: सामा
1: हाँ,
0: भी यहाँ
1: ये
0: झारखंड के लिए
1: बहुत ज़्यादा बहुत
0: बहुत ज़्यादा
1: ज़्यादा
0: होती है, तो इसकी भी खेती जो है सामा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है खेती में, 4-5 महीना का खेती होती है। रागी है उसका कम टाइम है, 3 महीने की खेती, 3 महीने में 90 से 100 दिन 110 दिन में तैयार हो जाती है।
1: तो इसके लिए हमारे किसान भाई क्या तैयारी कर सकते हैं अभी सामा के लिए?
0: समा के लिए अभी इसका बिचड़ा के लिए तैयारी कर सकते हैं। बिचड़ा डालने के लिए अभी बिचड़ा में थोड़ा सा देर भी कर सकते हैं, क्योंकि बारिश होने के बाद ही बिचड़ा इसको धान जैसे धान लगाते हैं उस समय इसको कोदो की खेती की जाती है,
1: की जाती है। लेकिन कहाँ इसका लगाएंगे, इसका लगाने के लिए उन्नत जमीन कौन सी है?
0: जमीन वही जमीन इसके लिए कोई भी मिलेट्स के लिए कोई जरूरी नहीं है उपजाऊ मिट्टी, ये बंजर भूमि में ही अच्छी पैदावार देती है, तो उपजाऊ मिट्टी की इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, है ना। बंजर भूमि में इसकी खेती अच्छा आसानी से की जा सकती है।
1: तो इस प्रकार हमारे किसान भाई लोग

0: अगर मोटे अनाजों की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से अभी जिस तरह की संभावनाएं बनी हुई हैं, मिलेट वर्ष घोषित किया जा चुका है 2023 को, इसमें काफ़ी संभावनाएं नज़र आ रही हैं, तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं और कम पूंजी में ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी हाँ, काफ़ी अच्छा इससे पूंजी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पहले मिलेट, पहले लोग मोटे अनाज की खेती अच्छी तरह करते थे, लेकिन जो हरित क्रांति का दौर आया 1970 में हरित क्रांति के दौर के में जो है गेहूं और चावल पर ज़्यादा ध्यान दिया गया और इसका जो है प्रोडक्शन को काफ़ी इंक्रीज किया, क्योंकि उसमें ज़रूरी था कि फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत थी, क्योंकि सभी लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आजकल जो है अभी फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, अब न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की ज़रूरत है।
0: जी हाँ, ग्रामीण भाई बहन आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता, विषय था मोटे अनाजों की खेती और विशेषज्ञ थे डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा। और किसान भाई बहन, कार्यक्रम में जानकारी परक बातें बस आज यहीं तक, और इसी के साथ कार्यक्रम खेती बाड़ी से अब अपने भाई संतोष कुमार
2: और प्रदीप कुमार सिंह को दें इजाज़त।

हमारे श्रोता सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब प्रस्तुत है किसान भाइयों को संबोधित हमारा कार्यक्रम।

0: प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसानवाणी में। और ग्रामीण भाइयों, हमेशा की तरह आज आपके साथ हैं आपके भाई प्रदीप कुमार सिंह, जो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके रांची झारखंड से प्राप्त मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं के साथ हाजिर हैं।
2: आपको भी मेरा नमस्कार संतोष जी, और सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले जो मौसम है किसान भाई, आने वाले दिनों में हल्के बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा की संभावना है। तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी की संभावना है तथा हवा की गति सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। गरज चमक के साथ तूफान और बिजली गिरना, तेज हवाएं, इससे भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। फसलों का गिरना, फलों का टूटना,
1: इस तरह के हमारे ग्रामीण भाई बहन देख सकते हैं अभी, क्योंकि हवा के झोंकों से फसल गिर सकते हैं, फल गिर सकते हैं। आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए हमारे ग्रामीण भाई बहन खड़ी सब्जियों की फसलों में जल निकासी की उचित व्यवस्था आप जरूर कर लें तथा वर्षा के पश्चात मिट्टी में नमी को संरक्षित करने के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खरपतवार, फल अवशेष, फसल अवशेष, फिर पॉलीथीन शीट का प्रयोग आप जरूर करें। साथ ही साथ इस नमी का उपयोग नए फसल लेने के लिए भी आप कर सकते हैं किसान बंधु। और धान की फसल में जो गर्मा धान है उसमें जल जमाव बनाए रखिए आप, इसके लिए मेड़ों को तंदुरुस्त रखिए। और आम, अमरुद, लीची के नए बगीचे के लिए समतल जमीन पर वर्गाकार या आयताकार गड्ढा कलमी आम के लिए जरूर आप तैयार करिए और उसकी रोपाई करिए।
2: किसान भाई, जिन भाइयों को पपीता का पौधा तैयार करना हो, वे इस समय पॉलीथीन के थैली में मिट्टी या गोबर की सड़ी खाद मिलाकर भर दें तथा बीज डालने के बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। ग्रीष्मकालीन मक्के की फसल में मिट्टी चढ़ाएं जो कि घुटने तक पहुंच गई है। फसल में प्रति एकड़ 26 किलोग्राम यूरिया डालें तथा तना छेदक कीट के प्रकोप अगर दिखाई दें तो बचाव हेतु किसान भाई फिप्रोनील 0.3G या कारटॉप हाइड्रोक्लोराइड 4G का

0: झुकाव ऊपरी चक्र पर करें। फसल में बाली निकलने की अवस्था में गंधी बग कीट के आक्रमण की संभावना रहती है। कीटों के हमले को नियंत्रित करने के लिए किसान भाइयों को शाम के समय मैलाथियन 50 EC 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। फसल में निकाई गुड़ाई अवश्य करें जिससे मिट्टी में नमी ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक रह सके। समय से बोई गई फसल इस समय पुष्पावस्था में है। अगर फूल मुरझाकर गिर रहा है तो इसका कारण फूलों पर थ्रिप्स कीट का आक्रमण हो सकता है। इस कीट से फसल को बचाने के लिए कीटनाशी दवा ट्राइजोफोस 40 EC का छिड़काव 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से शाम के समय साफ मौसम को देखते हुए कर सकते हैं।
1: जी हाँ ग्रामीण बंधु, भिंडी की फसल में तुड़ाई के लिए यूरिया 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से तुड़ाई के बाद आप डाल दीजिए तथा माइट कीट की नियंत्रण के लिए निगरानी करते रहिए। आप किसान बंधु, अधिक कीट 3 से 4 प्रति पौधे पाए जाने पर इथियान 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करिए और इस मौसम में भिंडी की फसल में हल्की सिंचाई कम अंतराल पर आप करिए। किसान भाई बहन, और टमाटर के की जो फसल है उसमें सुरंग कीट का आक्रमण होने पर थिया क्लोप्रिड 21.7 SC का छिड़काव मिलीमीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव करिए।
0: वर्तमान मौसम को देखते हुए पशुओं को हरे और सूखे चारे के साथ पर्याप्त मात्रा में अनाज दें। पशुओं को दिन में 3 से 4 बार ताज़ा पानी पिलाएं। मौसम की स्थिति को देखते हुए पशुओं को साफ सूखे एवं छायादार जगह पर रखें। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए गर्भवती गाय या भैंस को 50 से 60 ग्राम मिनरल मिक्सचर अवश्य खिलाएं तथा गर्मी के मौसम में प्रति पशु प्रतिदिन 50 से 60 ग्राम नमक अवश्य खिलाएं एवं पशु बाड़े के आसपास मच्छर न पनपने दें। मुर्गीशाला में जरूरत से अधिक मुर्गियों को एक साथ न रखें तथा इनके आहार और पानी में खनिज, इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटेशियम एवं एंटीऑक्सीडेंट विटामिन अवश्य शामिल करें।
1: जी हाँ ग्रामीण बंधु, कार्यक्रम में ये हुई बातें ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांकेर रांची झारखंड से प्राप्त मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवा में की। और कार्यक्रम में अब हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और अंतराल के उस पार
0: पुनः हाजिर हुए।
2: किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनित।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
4: पर हम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई।

0: ब्याज से भी खेती शुरू करूँगा।
1: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
2: इस संदेश के बाद पुनः आपका किसान वाणी कार्यक्रम में स्वागत है। आइए अब सुनते हैं भेंट वार्ता। गर्मी के मौसम में पशुओं की देखभाल। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे साथी भाई संतोष कुमार।
3: किस प्रकार हम पशुओं का जो आहार व्यवस्था है किस किस तरह बनाए रखें, उन्हें लू से किस तरह बचाव करें, उनका आवास किस प्रकार से हो, खान पान सारी बातें होंगी आज कार्यक्रम में। और इससे संबंधित जानकारियां हमारे साथ साझा करेंगे पलामू जिला के आदर्श ग्राम पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
4: नमस्कार।
3: हमारे ग्रामीण भाई बहन अभी किस प्रकार अपने पशुओं की देखभाल करें?
4: बिल्कुल आपने सही कहा कि हम अभी बहुत तरह के पशुओं को पालन कर रहे हैं, खास करके जो हमारे भारतीय नस्ल की गाय या भैंस है, गिर, रेड, सिंधी, साहिवाल, उनमें तो उतने लू लगने की संभावना नहीं रहती है। लेकिन अगर आपने जर्सी, फ्रीजियन या संकर नस्ल की गाय रखे हुए हैं जिनका दूध देने की क्षमता 10 लीटर से अधिक है, तो उन्हें लू से प्रभावित होने की पूरी संभावना है। इसी तरह से जो बच्चे आज के ये लू के समय में जन्म ले रहे हैं, नवजात बछड़े हैं, अगर उनका भी हम केयर नहीं करेंगे तो उनमें भी लू लगने से उनकी मृत्यु हो सकती है। इसी तरह से शुक्र हैं, उनके ऊपर चर्बी बहुत ज़्यादा होता है, उनकी बढ़वार बहुत तेज होती है, इसके कारण उनको भी लू बहुत ज़्यादा लगता है। इसी तरह से मुर्गियां हैं, जो लोग मुर्गी पालन कर रहे हैं तो मुर्गियों में चूंकि पसीने की ग्रंथि नहीं होती जिससे शरीर ठंडा होता है, तो वो अपने शरीर को ठंडा नहीं कर सकती है चूंकि पसीने की ग्रंथि होती ही नहीं है। इसी तरह से उसका पंख जो है वो कुचालक होता है, तो शरीर में जो गर्मी है वो बाहर निकलने नहीं देता है। साथ में जब आप मुर्गी ब्रॉयलर मांस खाते हैं तो उसमें चर्बी होती है, वो चर्बी भी शरीर के गर्मी को बाहर नहीं जाने देता है। और इस तरह से देखेगा तो मुर्गी का जो तापक्रम है वो भी 160 डिग्री एक फॉरेनहाइट होता है, जो कि सभी पशु पक्षियों में सबसे अधिकतम है। इसके कारण भी जो है उनको लू से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसी तरह से उनका ऊंच वृद्धि दर आजकल देख रहे हैं हम लोग जो कि ब्रॉयलर मुर्गियां हैं वो एक महीने में करीब 1 किलो हो जा रही हैं, तो ये ऊंच वृद्धि दर भी उनको ये करता है। अब बात आती है कि इस ये इतनी तरह की परेशानियां हैं तो इसमें लक्षण क्या आएंगे, तो गायों में ये देखा गया है कि जैसे ही उनको लू लग जाता है तो गायें मुँह से सांस लेने लगती है।
3: अच्छा।
4: सामान्य तौर पर देखा गया है कि गायें जो है वो 1 मिनट में 60 सेकंड में 60 बार सांस लेती है, लेकिन अगर आप 90 या उससे अधिक 100 से ऊपर हो रहा है इसका मतलब उसको लू लग गया है।
3: अच्छा।
4: और अगर 130 हो गया है तो ये मान के चलिए कि वो इमरजेंसी हो गई, अगर आप इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं देते हैं तो उसकी मृत्यु हो सकती है। इसी तरह से दूसरा आप देखे हैं कि उस मुँह खोल के सांस ले रही है और मुँह से लार गिर रहा है, जानवर सुस्त हो गया है, जानवर खड़ा है, तो इतनी सब परिस्थितियां अगर आपको दिखाई देती है तो इसका सीधा प्रभाव आपको पड़ेगा कि जब जानवर मुंह से सांस ले रहा है, खड़ा है, आराम की मुद्रा में नहीं है, तो पागुर कम करेगा तो आपका दूध भी घटना शुरू हो जाएगा।
3: अच्छा।
4: इसी तरह से जो नवजात बछड़े जन्म लेते हैं, चूंकि वो बछड़े माँ के पेट में जब रहते हैं तो उनको शरीर को ठंडा करने के लिए उसकी माँ तत्पर रहती है, उस अपने खून से उसको ठंडा करते रहती है, लेकिन जब बछड़ा अभी आज के समय में बाहर आता है तो वो उसको खुद से उसको अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है, तो वो बहुत हाँफने लगता है।
3: अच्छा।
4: तो उससे भी किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि जो बछड़े को दूध पिलाने का है 4 घंटे के अंदर उसके वजन का 1/10 हिस्सा वो पिलाएं और उसको स्नान कराना चाहिए, और अगर संभव हो तो अपने गौशाला में आप पंखा और कूलर की व्यवस्था कर सकते हैं।
3: अच्छा।
4: इसी तरह से अगर सुअर रखे हुए हैं तो उनको भी जो है आप एक बार स्नान दिन में कराएं, और मुर्गियों में भी फॉगिंग करके आप उसको ठंडा कर सकते हैं।
3: अच्छा।
4: लेकिन बेहतर उपाय होगा कि जितना हम इलाज में खर्च करें उससे अधिक बेहतर होगा कि उनकी आवास व्यवस्था को हम मजबूत करें।
3: अच्छा।
4: तो आवास व्यवस्था ये है कि कभी भी पशु को आप सुबह में 8-9 बजे के बाद बाहर में ना छोड़ें।
3: अच्छा।
4: दूसरा कि जो छत आप है वो छत पर आप जरूर घास फूस या आप एस्बेस्टस शीट जैसा भी हो वो छत जरूर दें, और बीच वाले में जो छत की ऊंचाई है वो 15 फीट रखें और साइड में जो है वो 9 फीट की ऊंचाई रखें।
3: अच्छा।
4: और साथ में वो ऐसा कर सकते हैं कि दोनों किनारे में आजकल ग्रीन हाउस मैट आ रहा है प्लास्टिक का जिसमें जाली लगा होता है, अगर आप उसे लगा देते हैं तो आपके गौशाला के अंदर का जो तापक्रम है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो सकता है। मसलन मान के चलिए कि अभी जैसे 42 या 43 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वायुमंडल का है, तो आप अगर ये व्यवस्था करते हैं

0: तो आपके शेड के अंदर टेम्परेचर जो है वो
1: 35-36
0: हो जाएगा, तो आपके जानवर जो है वो हाँफेंगे नहीं और आपको पूरा पूरा दूध मिल सकता है। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि उनके ऊपर कूलर या पंखा अगर संभव है तो आप उसको डाल दीजिए, अच्छा। थोड़ा उससे कम हो जाएगा। तीसरी बात ये आती है कि उनको पीने के लिए जो पानी है वो आप 40 डिग्री फॉरेनहाइट से 65 डिग्री फॉरेनहाइट, मतलब पानी जो है थोड़ा ठंडा हो, तो उनको दिन भर अगर सामने संभव तो रखिए ना, तो कम से कम 3-4 बार जरूर उनको पानी सामने लाइए ताकि पानी की कमी नहीं हो, क्योंकि अच्छा। पानी की कमी होगी तो दूध में 80% वाटर होता है, तो दूध कम हो जाएगा,
1: अच्छा।
0: तो आप पानी जरूर उसको पूरा पूरा पिलाएं। दूसरा, पानी जहाँ भी पिला रहे हैं उस बर्तन को पूरी तरह साफ रखें, क्योंकि इतना अधिक तापक्रम में उसमें कुछ भी अनाज या भूसा गिरने पर वो सड़ने लगता है और वो पानी पीने लायक नहीं होता है, जानवर पानी पीने से रिफ्यूज करता है
1: जी।
0: और दूसरा कि गर्म पानी भी पीना जानवर पसंद नहीं करता है, आपको 80 डिग्री फॉरेनहाइट से अधिक गर्म पानी है तो वो जानवर जितनी जरूरत है उतना पानी नहीं पिएगा, तब भी आपका दूध गिर सकता है,
1: अच्छा।
0: तीसरी बात, आप इस बात पर ध्यान रखें कि पशु जो है जब हाँफ रहे हैं तो उस समय आप खाना खिलाएंगे तो पशु खाना नहीं चाहेगा, तो बेहतर है कि आप सूर्योदय से पहले जो है पशुओं को जो भी भोजन देते हैं आप अपना अनाज और भूसा वह दें, या शाम में 6 बजे के बाद दें,
1: अच्छा।
0: और प्रतिदिन एक बार तो जरूर जर्सी फ्रीजियन या संकर नस्ल की गाय जो 10 लीटर से ऊपर दूध देती है उसको जरूर स्नान कराएं
1: जी।
0: गिर, रेड, सिंधी, साहिवाल गायें जो हैं उनको सप्ताह में 2-3 दिन भी स्नान करा देते हैं, एक दिन बीच करके, तो उनका काम चलेगा
1: जी।
0: और बछड़ा को तो निश्चित रूप से आपको कूलर और फैन के नीचे रखना चाहिए और उसको भी आप दोनों टाइम स्नान कराइए, और स्नान करने के बाद धूप में नहीं छोड़ने के लिए किसी भी हालत में जानवर को 9 बजे से 3 बजे तक 4 बजे तक ना छोड़े बाहर में,
1: अच्छा।
0: और दूसरा कि जो बैल है उसको भी धूप में काम नहीं लेना चाहिए, आप ठंडे आवर में ही काम लीजिए तो बेहतर होगा। इसी तरह से अगर शुकर फार्म है तो उसमें भी वही फार्मूला है कि आप बीच वाला शेड जो है वो 15 फीट साइड में 9 फीट का रखें और पूरा पश्चिम लंबाई का शेड रखें,
1: अच्छा।
0: तो उससे क्या होगा कि आपका अंदर कम गर्म होगा और शुक्र ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। बीच में उसमें थोड़ा पानी की व्यवस्था रखिए जिसमें कि वो लोड करके अपने शरीर को भिंगा सके, या फिर फॉगर की व्यवस्था रखिए और उस पर पानी का फॉगिंग करिए तो उससे भी आपका काम हो सकता है। इसी तरह से मुर्गी घरों में भी जो है आप 15 फीट ऊंचाई साइड में 9 फीट और बीच में जो चौड़ाई है उसको 20 फीट से अधिक न बढ़ाएं, क्योंकि 20 फीट से जब कम आप रखेंगे तो हवा जो है इधर से उधर आराम से निकल जाएगी, और जब हवा इधर से उधर जाएगी तो वहाँ पर गर्मी कम होगा, और गर्मी कम होगा तो आपकी मुर्गियाँ ठीक रहेगी
1: जी।
0: और दूसरा, इस तरह से मुर्गी में भी पंखे और कूलर आप डाल कर करके उसको रख सकते हैं। तीसरा है कि अगर खाने पीने में हम क्या सावधानी बरतें, तो खाने पीने में ये कहेंगे कि आप गुड़ की मात्रा जो है बड़े पशुओं में बढ़ा करके 250 ग्राम से आप 400 ग्राम तक गुड़ दूध देने वाली गायों को रोज दें, और बैल वगैरह हैं तो 100-150 ग्राम दे सकते हैं। दूसरा, मिनरल मिक्सचर जो है वो 50 ग्राम देहाती गायों को, और संकर नस्ल या जर्सी फ्रीजन गायें आप रखे हुए दूध देती है तो उसको 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर रोज दें।
1: अच्छा।
0: तीसरा काम आप कर सकते हैं कि सभी को नमक जो है 30-50 ग्राम, छोटे जानवर है तो 30 ग्राम से, बकरी है तो आप 5 से 10 ग्राम नमक दीजिए, बछड़ा है 20 ग्राम नमक दीजिए, और गायों को 30 से 50 ग्राम नमक प्रतिदिन या भैंस को रोज दें। इससे क्या होगा कि उसे शरीर में लवण की कमी नहीं होगी और वो स्वस्थ रहेंगे। तीसरा काम आप कर सकते हैं कि एक विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई का सिरप बाजार में उपलब्ध है कई नामों से, उस सिरप को 5-10 ml रोज अगर देते हैं तो उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो ज़्यादा रहेगी, तो वो कम हाँफेंगे।
1: अच्छा।
0: इस तरह से आप अगर इतनी सारी व्यवस्थाएं करते हैं तो आपके पशु ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। इसके बाद भी अगर आपके पशु को लगता है कि जो श्वसन दर 100 से ऊपर हो गया है और उसका बुखार हम देख रहे हैं तो 105 डिग्री फॉरेनहाइट से अधिक है, तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करके उन्हें जो बुखार की दवाएं हैं या पानी चढ़ाने की जरूरत है, डिहाइड्रेशन हुआ है तो वो डॉक्टर साहब अपना देख कर करके उसके हिसाब से उसको इलाज करें
1: जी। एक प्रश्न सर कि हाँ, भैंस पालक जो हमारे किसान भाई लोग हैं, भैंस काफ़ी देखा जाता है कि गर्मी के दिनों में वो तो ऐसे ही आपको तालाब उलाब में दिखाई देते हैं, गर्मी में तो उनके लिए और
0: बिल्कुल आपने सही कहा कि भैंस जो है वो पानी में तैरना पसंद करती है, और चूंकि आप देखिएगा कि गाय के सापेक्ष में गाय को पसीना निकलते आप देख सकते हैं, लेकिन भैंसों को पसीना नहीं निकलता है।
1: जी जी
0: तो जब पसीने नहीं निकलते हैं तो वो गर्मी को कैसे बाहर करें? तो उनके लिए आसान यही होता है कि कीचड़ में लोट कर करके अपने शरीर को ठंडा करें। तो किसान भाई ये कर सकते हैं कि उनको प्रतिदिन स्नान कराएं और उसको वही 9 बजे के पहले शेड के अंदर कर लें। अच्छा, एक और सावधानी बरतने की बात है कि जब आप गौशाला बनाए हुए हैं तो गौशाला के दीवार को पूरी तरह जुड़ाई नहीं करना चाहिए।
1: अच्छा
0: जैसे शहरों में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक 10 बाई 10 का रूम है, उसमें 2 गाय बांध दिया लोग, और वो गाय जब हम जाते हैं देखने के लिए तो देख रहे हैं या तो गाय मृत है या गाय बहुत हाँफ रही है, दूध नहीं दे रही है। तो आपको ये समझना चाहिए किसान भाइयों को कि एक गाय या एक भैंस लगभग जो 3 से 5 क्विंटल की होती है, वो 5 हीटर के बराबर गर्मी खुद पैदा करती है। और अगर उस रूम में 2 गाय बंधी हुई है और 10 हीटर की बराबर गर्मी पैदा हो रही है और दीवार के कारण वो गर्मी बाहर नहीं जा रही है, तो गाय जो है बाहर की गर्मी से नहीं, अपनी गर्मी जो पैदा की उसके कारण
1: उसे कारण
0: उसको गौशाला में अंदर लू लग जाएगा और उससे उस गाय की डेथ हो सकती है। तो अभी तक हमारा अपना मानना व्यक्तिगत तौर पर है कि आप वेंटिलेशन जो जाली है, खिड़की जाली, वो जरूर रखें कि एक तरफ से हवा जाए तो दूसरी तरफ से निकले। जब ऐसा होगा तो वो लू नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग रोड पर घूमने वाले जानवर को लू लगते हुए नहीं देख रहे हैं, बल्कि ज़्यादातर जानवर लू लग रहा है गौशाला के अंदर। तो वो गौशाला वही जो प्लास्टिक से ऊपर ढक दिए हैं और दीवार चारों तरफ से बंद कर दिए हैं, खास करके पॉलिथीन से, प्लास्टिक से या सिंथेटिक कपड़े से कर दिए जिसमें हवा आर पार नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर पशुओं को ज़्यादा परेशानी होती है। और भैंसों में तो ये ज़्यादा ही परेशानी है। तो उसको निश्चित रूप से सुबह शाम स्नान कराएं और रात में आप उसको खुले आसमान के नीचे भैंस को या गाय को भी बांध के रखेंगे तो ज़्यादा वो स्वस्थ महसूस करेगी और उससे ज़्यादा पागुर करेगी, तो आपका दूध का उत्पादन जो है वह नहीं घटेगा।
1: जी जी आप थे पलामू जिला के आदर्श ग्राम पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। सर, आप कार्यक्रम से जुड़े और हमारे ग्रामीण भाई बहन को किस प्रकार अभी अपने पशुओं की देखभाल करें, मुर्गियों की देखभाल करें, इससे संबंधित जानकारियां अभी साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी। हाँ, किसान भाई बहन, कार्यक्रम में अब बातें गांठदार त्वचा रोग की जो पशुओं में अक्सर लगते हैं।
2: किसान भाई, मुख्यतः गौ जाति एवं भैंस जाति के पशुओं को संक्रमित करने वाला एक विषाणु जनित छुआछूत की बीमारी है। यह बीमारी मुख्य रूप से संक्रमित मक्खियों, मच्छरों एवं चमोकन के काटने से होता है। बीमार पशु के आँख, नाक से स्राव, लार एवं घावों के स्राव एवं खूंटी के संपर्क में स्वस्थ पशु के आने पर भी इस बीमारी के प्रसार की संभावना रहती है। बीमार दुधारू गाय भैंस के थन में घाव हो जाने के कारण दूध पीने वाला जो बाछा बाछी है उसमें भी यह बीमारी फैल जाती है। कई तरह से इस रोग से पशु जो है संक्रमित हो जाते हैं और उनका जो जन्म लेने वाला जो बाछा या बाछी होता है वह भी इस बीमारी के चपेट में आ जाता है। तो इससे आप संक्रमण न फैले इसके लिए आप विशेष ध्यान दें, मच्छर, मक्खी, चमोकन और उन्हें स्वच्छ जगह पर रखें।
1: जी हाँ किसान बंधु, संक्रमण के प्रारंभ में आँख एवं नाक से स्राव, लसिका ग्रंथियों में सूजन, तेज बुखार, दुग्ध उत्पादन में गिरावट, त्वचा एवं गांठदार घाव का उभरना जो कुछ समय के बाद लगभग पूरे शरीर में फैल जाता है। आमतौर पर मादा पशुओं में थनैला होना भी देखा गया है। कुछ बीमार पशु इस रोग के संक्रमण से निमोनिया के शिकार हो जाते हैं। किसान भाई बहन, अब उपचार की बात हम जहाँ तक कर लें तो समय समय पर स्वस्थ पशुओं को टीका आप लगवाएं। पशुओं में इस बीमारी के लक्षण पाए जाने पर इसकी सूचना अविलंब आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक को दें। बीमारी के प्रारंभ में ही पशुओं का उपचार कराएं, बीमार पशु को अलग रखें, साफ सफाई का पूरा ध्यान दें, संक्रमित पशुओं को बाहर चारागाह में चरने के लिए नहीं भेजें। संक्रमण के दौरान पशुओं का क्रय विक्रय बिल्कुल बंद कर दें। गौशाला में आवाजाही पर भी कड़ा नियंत्रण रखें किसान भाई बंधु। और बीमार पशु द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले पुआल, बोरा वगैरह को जला दें एवं पशुओं को कीट रोधी घोल से सफाई जरूर करें और अपने जो पशुधन हैं उसे आप सुरक्षित रखिए किसान भाई बहन, यही लक्ष्मी है और इन्हीं से आपको आय की प्राप्ति होती है।
2: तो ये तो बात हुई गांठदार त्वचा रोग की,

0: बताते हैं आज का मौसम। हमारे किसान भाई, आज स्थानीय शहर डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह में आर्द्रता रही 75%, जबकि शाम की आर्द्रता 52% दर्ज की गई। वर्षापात शून्य। तो मौसम संबंधी इसी सूचना के साथ ही हमारा आज का किसानवाणी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इजाजत दें, नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

हमारे श्रोता सुन रहे थे किसान भाइयों को संबोधित हमारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे क्रमशः प्रादेशिक समाचार एवं जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। कृपया समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के

लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है, वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द की। केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। राज्यपाल ने बिहार आई बैंक का नाम बदलकर झारखंड आई बैंक करने का दिया निर्देश। संस्थान को आयुष्मान योजना से जोड़ने के भी आदेश। बिजली पानी संकट को लेकर राजधानी रांची समेत राज्यभर में भाजपा का जोरदार प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार को बताया संवेदनहीन। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि कार्यशाला संपन्न। कम बारिश की आशंका के बीच मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दिए सुखाड़ योजना बनाने के निर्देश। और राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में झमाझम बारिश और आंधी से मौसम बदला। कई जगहों पर पेड़ गिरने से बिजली और यातायात बाधित। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने शिक्षा में मेडिकल दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोक भवन में बिहार आई बैंक ट्रस्ट के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने इसका नाम जल्द बदलकर झारखंड आई बैंक करने और भूमि संबंधी समस्याओं को तुरंत सुलझाने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने संस्थान को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने तथा आधुनिक सुविधाओं के लिए सीएसआर फंड जुटाने पर जोर दिया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। धनबाद में प्रेस वार्ता कर श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते झारखंड में

0: में अवैध हथियारों की खेप पहुंच रही है, जो बेहद चिंताजनक है।
1: इस राज्य में पुलिस गुंडे और माफिया उन लोगों के हवाले कर रखा है, जो प्रिंस खान दो दो ऑडियो इधर वायरल हुआ, किस प्रकार से पाकिस्तान के रास्ते पंजाब के रास्ते इलीगल्स आर्म्स को मंगाया जा रहा, इसके बाद भी सरकार मौन। यानी ये गठजोड़ देश के अंदर ही अंतरराज्यीय ही गिरोह ये नहीं है बल्कि इंटरनेशनल गिरोह भी, तो इसमें से हेमंत सोरेन क्या कर सकते हैं।
0: राजधानी रांची समेत राज्यभर में बिजली पानी संकट को लेकर भाजपा ने आज विरोध प्रदर्शन किया। रांची में आयोजित विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बिजली कटौती और पेयजल किल्लत का जल्द समाधान नहीं हुआ तो भाजपा पूरे राज्य में आंदोलन और उग्र करेगी।
2: झारखंड से आजादी रांची में लोग पानी और बिजली को मांग को लेकर को लोग उतरने का काम किए हैं और उसी प्रकार का दृश्य पूरे राज्य में बनी हुई है और प्रत्येक प्रशासनिक जिले में इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से जनता सड़कों पर उतरने का काम किया है। लेकिन ये सरकार देवसुद सोई हुई है, इनको आम लोगों के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है।
0: जमशेदपुर में पहाड़ों और नदियों के संरक्षण को लेकर 22 और 23 मई को राष्ट्रीय स्तर की दो दिवसीय संगोष्ठी आयोजित होगी। इस कार्यक्रम में देश भर के पर्यावरणविद और विशेषज्ञ जुटेंगे। जल पुरुष राजेंद्र सिंह और विधायक सरयू राय के संरक्षण में होने वाले इस विमर्श का मुख्य उद्देश्य नदियों और पर्वतों के संवर्धन के लिए सशक्त कानून बनाने की ठोस पहल करना है।
3: पहाड़ों और नदियों के संरक्षण संवर्धन के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें एक सशक्त कानून बनाए। अब इसका संरक्षण संवर्धन जरूरी इसलिए है कि हमारा जो विकास हो रहा है उस विकास में सबसे अधिक खतरा पहाड़ों और नदियों पर ही है, तो जब तक कोई कानून ऐसा सशक्त नहीं रहेगा जिसके आधार पर जिला प्रशासन या कोई भी कठोर कानूनी कार्रवाई कर सके, इसलिए एक ही विषय रखा है सेमिनार में और वह है लॉ फॉर माउंटेन्स एंड लॉ फॉर रिवर्स।
0: रांची स्थित सेना भर्ती कार्यालय ने आज घोषणा की है कि अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2026 के तहत कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आयोजन 1 जून से 15 जून तक किया जाएगा। इस लिखित परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र के कोकर खोरहा टोली से 4 दिनों से लापता 18 महीने की अदिति पांडे की तलाश के बीच आज सुबह गाड़ी गांव नाले से कुछ क्षत विक्षत अवशेष बरामद हुए हैं। सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि फिलहाल इन अवशेषों की आधिकारिक पहचान नहीं हो सकी है।
4: हमारी टीम्स लगातार आज सर्च कर रही थी तो एनडीआरएफ की टीम और नगर निगम की टीम, उनके द्वारा देखा गया कि एक पॉइंट ऐसा है जहां मांस का और हड्डी का टुकड़ा वहां पड़ा है और काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में है और प्रथम दृष्टि देखने में वो वही लगता है, क्योंकि उस मांस के टुकड़े पर कोई भी हमें बाल या बाल होने की पुष्टि नहीं हुई और उसी आधार पर उस DNA सैंपलिंग के लिए भेजा गया है।
0: रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय कृषि कार्यशाला में आज कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुई। उन्होंने बताया कि अल नीनो के कारण कम बारिश की आशंका को देखते हुए सभी जिलों को आकस्मिक सुखाड़ योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। हजारीबाग में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट को लेकर सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार की अध्यक्षता में कार्यशाला आयोजित की गई। रांची से आई नोडल अधिकारी प्रियंका सांगा ने बताया कि इस ऐप से मरीज, डॉक्टर, लैब और फार्मेसी आपस में जुड़ेंगे।
5: एक रिव्यू मीटिंग रखा था हमारे सिविल सर्जन की अध्यक्षता में। इस फाइनेंशियल ईयर की जो रिपोर्ट थी उनसे हम लोगों ने साझा किया और उनको बताया कि अभी तक उन्होंने कितना इस मॉड्यूल को अच्छी रीति से स्टार्ट किया है, नहीं किया है, बीएसएनएल की कनेक्टिविटी

0: है, नहीं मिली है, उनको भी हम लोगों ने शामिल किया कि अपने प्रॉब्लम्स को रखे, जहाँ प्रॉब्लम्स हैं वो उनको नोट डाउन कराए।
1: अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर आज सदर अस्पताल में विधायक ममता देवी और सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली दर्जनों नर्सों को सम्मानित किया। विधायक ने अस्पताल की सफलताओं का श्रेय नर्सों के सेवा भाव को दिया।
2: आज इंटरनेशनल नर्सेस डे आज मनाया जा रहा, सभी हमारी नर्स बहनें उसको बहुत बहुत बधाई। हमारे रामगढ़ जिले में अगर हमारा सदर अस्पताल आज नई ऊंचाइयों को अगर छू रहा है, कई सारे अवार्ड अगर प्राप्त कर रहा है, तो निश्चित तौर पर हमारी नर्स बहनें वहां पर काबिले तारीफ हैं। यहां के स्टाफ, यहां के डॉक्टर सभी का भरपूर सहयोग रहता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले कल में भी ये सदर अस्पताल और भी विकसित हो।
1: मौसम। राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर बाद मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन आंधी के कारण शहर के कई इलाकों में पेड़ गिरने की खबर है। इससे बिजली के तार टूट गए और आवागमन पर असर पड़ा है। मौसम विभाग ने आगामी 17 मई तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ द्वारा 15 मई से बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम में अंडर 16 समर क्रिकेट कैंप का आयोजन किया जाएगा। महासचिव असीम कुमार सिंह ने बताया कि 20 दिनों के इस कैंप में खिलाड़ियों को फिजिकल फिटनेस और क्रिकेट की बारीकियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द की। केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। राज्यपाल ने बिहार आई बैंक का नाम बदलकर झारखंड आई बैंक करने का दिया निर्देश। संस्थान को आयुष्मान योजना से जोड़ने के भी आदेश। बिजली पानी संकट को लेकर राजधानी रांची समेत राज्यभर में भाजपा का जोरदार प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार को बताया संवेदनहीन। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि कार्यशाला संपन्न। कम बारिश की आशंका के बीच मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दिए सुखाड़ योजना बनाने के निर्देश। और राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में झमाझम बारिश और आंधी से मौसम बदला। कई जगहों पर पेड़ गिरने से बिजली और यातायात बाधित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गढ़वा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता।
1: गढ़वा जिले में बीते शनिवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न विभागों के 1,39,000 मामलों का निष्पादन किया गया। साथ ही इसमें 2,39,00,000 रुपए राजस्व की भी प्राप्ति हुई। इस अवसर पर गढ़वा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष मनोज प्रसाद ने लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरूक भी किया।
2: अपील है कि वो निर्भय होकर, निर्भीक होकर इस लोक अदालत में आगे बढ़कर आए। त्वरित न्याय दिलाने का हम आश्वासन देते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी हो, परेशानी का निपटारा कराया जाएगा।
1: विगत 10 मई रविवार को प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के 169वीं वर्षगांठ पर गढ़वा की सांस्कृतिक संस्था पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच की ओर से तिलक करो इस मिट्टी को नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने 169 दीपक जलाकर प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच के निदेशक नीरज श्रीधर ने बताया,
3: प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम में जितने भी हुतात्मा रहे, जिन वीरों ने, भारत माता के सपूतों ने जो बलिदान दिया है, उनको सादर समर्पित करते हुए प्रत्येक वर्ष हम लोग 10 मई को एक कार्यक्रम करते हैं जिसका नाम है तिलक करो इस मिट्टी से। 1857 के कालखंड की अमर शहीदों के गांव से मंगाई गई मिट्टी को कलश में रख कर हम लोग विधिवत उसका पूजन करते हैं और फिर अखंड भारत के मानचित्र पर दीप सजाकर जलाते हैं और उस मिट्टी से तिलक करके उन वीरों की गाथा

0: गीत संगीत भाषण उद्बोधन और शौर्य प्रदर्शन के माध्यम से ये कार्य कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी अपने पूर्वजों और उनके सुकृतियों के बारे में जान सके और गर्व से कह सके कि हम
1: गढ़वा जिले में बिजली पानी की समस्या को लेकर विगत 6 मई को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय पर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा के गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने किया। इस अवसर पर विधायक श्री तिवारी बिजली पानी की समस्या पर बहुत आक्रामक दिखे। उन्होंने कहा कि
0: 50,000 चापानल खराब है, 2,000-3,000 रुपया में जिसका मरम्मती हो सकता था उतना पैसा भी सरकार के पास नहीं है। पूरे देश में झारखंड और वेस्ट बंगाल एक नंबर और दो नंबर पर आता है, सबसे नीचे के पायदान पर। झारखंड में 8% लोगों को ही जल जीवन मिशन का लाभ मिल रहा है, ऐसे में 92% लोग आज बेचारे हताश है, निराश है, गंदा पानी पी के चुराने का पानी पीने को विवश है, इसे बीमारी के भी शिकार हो रहे हैं। आज यह सांकेतिक हड़ताल है कि सरकार जागे और लोगों को जल जीवन मिशन पैसे का जो घोटाला हुआ है उस पैसे को खोज करके बाहर ला करके और लोगों को शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम करे।
1: जिले में मौसम का उतार चढ़ाव लगातार जारी है। जिले का तापमान एक बार फिर बढ़ने लगा है। इस समय जिले का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग ने सप्ताह के अंत तक 42 डिग्री तक तापमान बढ़ने का पूर्वानुमान बताया है। इसको देखते हुए गढ़वा वासियों को फिलहाल भीषण गर्मी और लू से निजात मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा।
2: अभी आप सुन रहे थे गढ़वा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आ जा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके। हट तेरा

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग, और हम पेश कर रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्मी गीत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम खुला आकाश के अंतर्गत स्वरचित कहानी। कहानीकार हैं विजय प्रसाद शुक्ल।

नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय प्रसाद शुक्ल आज एक कहानी लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ। शीर्षक है सरहद के उस पार। सरहद केवल दो देशों के बीच की सीमा रेखा को नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच भी एक सरहद होती है। यह सरहद हमें अपने संस्कारों के माध्यम से दिखाई पड़ती है। समाज, राजा, देश अथवा देशांतर के बीच भी ऐसी ही सरहद होती है। इन सब के बावजूद एक सरहद विश्वास, सत्य, प्रेम व भाईचारे की भी होती है। हम इसे मानवता कहते हैं। अन्य सारी सरहदें टूट जाएं तो क्षति तो होती है, पर उस क्षति की भरपाई की जा सकती है। किंतु मानव मूल्य रूपी सरहद का उल्लंघन यदि हो जाए तो उसकी क्षतिपूर्ति केवल कठिन ही नहीं बल्कि असंभव हो जाती है। कदाचित सुदर्शन जी ने ऐसी ही क्षति को निकट से देखा था। फलतः खड्ग सिंह द्वारा बाबा भारती से छल पूर्वक सुल्तान को ले लेने पर इन्होंने बाबा भारती के मुख से कहलवाया था, इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना, नहीं तो आदमी के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा और कोई किसी की मदद नहीं करेगा। तत्कालीन परिवेश में तो युग युगांतर में कदाचित एकाध घटनाएं होती होंगी जिसका समाज की ओर से कड़ा प्रतिरोध हो रहा होगा, किंतु आज तो ऐसी घटनाएं दिनचर्या में शामिल हो गई हैं। आज मानव समुदाय इसे सहन करने का आदी हो गया है। एक छोटी सी कथा के माध्यम से इसे और स्पष्ट करने का प्रयास किया जा सकता है। घटना बिल्कुल सच्ची है, पर इसे आख्यायिका के रूप में नहीं बल्कि कथा के रूप में पाठकों एवं श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। हेमनगर और कुसुमनगर दो पड़ोसी देश थे। आरंभ में तो दोनों मिलकर एक ही देश का प्रतिनिधित्व करते थे, किंतु अति महत्वाकांक्षा के फलस्वरूप एक ही देश के दो हिस्से कर दिए गए। दोनों देशों के बीच एक सरहद बना दी गई। चूंकि हेमनगर कुसुमनगर से बड़ा था, अतः बड़े भाई की तरह उसने दरियादिली दिखाई और अपने छोटे भाई की सहायता में कोई कसर नहीं रखी। इधर कुसुमनगर उसकी समृद्धि देखकर मन ही मन जलता रहता था और किसी न किसी कुचक्र के प्रयास में लगा रहता था। इतना ही नहीं, वह हेमनगर की शालीनता को उसकी कमजोरी मानता था और अपनी शरारत को परम कर्तव्य। हेमनगर जितना दोस्ती का हाथ बढ़ाता, कुसुमनगर उतना ही छद्म युद्ध में लगा रहता था। फिर भी हेमनगर मानवता की सरहद का उल्लंघन अपनी ओर से नहीं करता था। दोनों देशों के बीच कई बार समझौते हुए, किंतु हर बार समझौते का उल्लंघन कुसुमनगर ही करता था। फलतः दोनों देशों के बीच युद्ध की विभीषिका से दो चार भी होना पड़ा। दोनों देशों के बीच जाने अनजाने सीमा का उल्लंघन होने पर न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात हेमनगर ससम्मान पड़ोसी नागरिकों को छोड़ देता था, जबकि गलती से हेमनगर का कोई नागरिक कहीं कुसुमनगर की सरहद में जाता

तो उसे कठोर यातना दी जाती थी। एक बार की बात है, हेमनगर का एक सीमावर्ती नागरिक अपनी ही सीमा में खेती कर रहा था। उधर पड़ोसी देश के सैनिकों ने उसे जबरदस्ती पकड़कर अपनी सीमा में खींच लाया। उसके ऊपर जासूसी करने का आरोप लगाया गया। न्यायिक प्रक्रिया के तहत जब उस पर कोई आरोप सिद्ध न हो सका तो स्वदेशी कैदियों द्वारा उसकी हत्या करवा दी गई। इतना ही नहीं, जब उसका शव हेमनगर भेजा गया तो उसके शरीर के कतिपय अंग निकाले हुए पाए गए। मानवता का सीमोल्लंघन इसके पूर्व कभी भी देखने को नहीं मिला था। यद्यपि पृथ्वी पर अनेकानेक युद्ध हुए हैं, युद्ध में दोनों पक्षों के लाखों की संख्या में सैनिक भी मारे जाते हैं, फिर भी ऐसी घिनौनी हरकत देखने को नहीं मिलती। मानव यदि मरता है तो कोई बात नहीं, अच्छे से अच्छा कर्म करने वाला मानव यदि उठ जाए तो उसकी भरपाई की जा सकती है। इतना ही नहीं, मानव के बदले महामानव भी मिल सकता है, किंतु मानवता मिटने के बाद पूरी धरती वीरान लगने लगती है। आज ऐसी स्थिति बन गई है कि पूरी दुनिया नश्वर पदार्थों की एशना में अपनी हदों की रक्षा नहीं कर पा रही है। यही कारण है कि सारी सुविधा होने के बावजूद, सुख की प्राप्ति के लिए दर दर भटकने के बावजूद, परम सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। इसके लिए लोग भौतिक संसाधनों के पीछे भागते हैं, किंतु मन की पीड़ा शांत होने के बदले और बढ़ती जाती है। यद्यपि अंत समय में सबको अपने किए पर पश्चाताप होता है, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक समय की बात है, हेमनगर के सिपाही सीमा पर गश्ती कर रहे थे। यह कार्य उनके दिनचर्या में शामिल था। दोनों देशों के सिपाही अपनी अपनी सरहदों की सुरक्षा के लिए गश्ती करते थे। दोनों देशों के सैनिकों का अपनी अपनी सीमा में मिलन भी होता था, किंतु किसी प्रकार की आशंका अथवा भय का माहौल नहीं था। एक समझौते के तहत दोनों देशों के सैनिक अपनी अपनी सीमा में गश्त लगा सकते थे। उस दिन भी अन्य दिनों की भांति हेमनगर के सैनिक बिना किसी भय अथवा संशय के अपनी सीमा में विचरण कर रहे थे। यद्यपि उनकी पलटन में सैनिकों की संख्या कम नहीं थी, फिर भी सामान्य स्थिति में घूमते हुए कुछ सैनिक अपनी पलटन से बहुत आगे निकल गए थे। इधर पड़ोसी देश के सैनिक लंबे अरसे से इन पर नजर रख रहे थे। ये इस मौके की तलाश में थे कि किस तरह इन्हें मारकर पिछली शिकस्त के कारण दिल में जो आग लगी है उसे ठंडा किया जाए। प्रायः लोकोपयोगी कार्यों की सिद्धि में देर लगती है, किंतु लोकक्षति के कार्यों के निष्पादन में देर नहीं लगती। एक दिन सीमा से सटे झुरमुट में पड़ोसी देश के सैनिक छिपे बैठे थे। ऐसे तो इनका यह घिनौना कार्य कई दिनों से चल रहा था, किंतु उस दिन उन्हें मांगी मुराद मिल गई। झुरमुट में छिपे सैनिकों की तादाद काफी अच्छी थी, इसके बदले हेमनगर के सैनिकों की संख्या 9 के बराबर थी। सरहद की निगाहबानी के पश्चात वे अपने शिविर की ओर लौट रहे थे। लौटने के क्रम में वे थोड़े असावधान भी थे। पहले इस प्रकार की घटना भी नहीं हुई थी, फलतः वे बिना किसी सावधानी के आगे बढ़ रहे थे। अचानक शत्रु सेना ने इन पर धावा बोल दिया। शत्रु सेना ने इन्हें संभलने तक का अवसर नहीं दिया, इन्हें पकड़ लिया गया। संख्या कम होने के बावजूद इन्होंने काफी दिलेरी दिखाई, किंतु हर तरह के प्रयास करने पर भी इन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। बड़ी निर्ममता पूर्वक इनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। हेमनगर शासन ने जब पड़ोसी देश से अपने सैनिकों का शव मांगा तो उसे अपने सैनिकों का सिर विहीन शरीर सौंपा गया। पड़ोसी देश के इस घिनौने कृत्य ने सारी हदें पार कर दी। सरहद के उस पार से जो सौगात दी गई वह कभी भूलने लायक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खुला आकाश के अंतर्गत कहानी। कहानीकार थे विजय प्रसाद शुक्ल। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से, अब से कुछ ही देर में। कृपया प्रतीक्षा करें।

भारत में हिंदुस्तानी सिनेमा के शुरुआती दौर में पौराणिक आख्यानों, जादूगरी की तिलस्मी दुनिया के आसपास बुनी गई कहानियों पर आधारित फिल्मों की अधिकता थी। आम दर्शकों की अभिरुचि, बाजार की मांग, बजट और तकनीक की सीमित उपलब्धता के दबाव के चलते फिल्म निर्माताओं ने कॉस्ट्यूम ड्रामा युक्त पीरियड फिल्मों को ज्यादा तवज्जो दी। महिपाल पौराणिक आख्यानों पर आधारित फिल्मों के नामचीन अभिनेता थे।

सन 1919 में जोधपुर राजस्थान में जन्मे महिपाल सिंह सन 1940 में मुंबई आ गए और पहली बार नजर आए 1942 में आई फिल्म नजराना में। अभिनेता महिपाल ने

0: तेरा मोर।
1: फिल्म नवरंग में अभिनेता महिपाल की भूमिका अभिनय कला के विविध रंगों में रंगी नजर आती है।
2: अटक अटक झट पट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलवेली कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हई ये ने पकड़ी बाह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा भोली परी हरी बोली।

नवरंग महिपाल की एक उल्लेखनीय फिल्म है। अभिनेत्री निरूपा रॉय, माला सिन्हा और मीना कुमारी के साथ भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। बाबू भाई मिस्त्री की फिल्म पारस मणि भी अभिनेता महिपाल की एक प्रसिद्ध फिल्म है।

अभिनेता महिपाल के अभिनय से सजी यूं तो अनेक फिल्में हैं, लेकिन उनमें भी प्रसिद्ध फिल्में हैं अल हिलाल, माया बाजार, जन्म जन्म के फेरे, आन बान, तुलसीदास, अली बाबा और 40 चोर, अल्लादीन और जादुई चिराग, जबक, संपूर्ण रामायण, सुनहरी नागिन, बीन का जादू, जंतर मंतर, वीर भीमसेन, सती सावित्री, वीर घटोत्कच, बालक ध्रुव, रानी और लालपरी, जय संतोषी मां, गोपाल कृष्ण और संत रविदास की अमर कहानी। अभिनेता महिपाल की मशहूर फिल्म का ये गीत आज भी बेहद लोकप्रिय है।

दर्शकों में अभिनेता महिपाल के लिए जबरदस्त दीवानगी थी। पर्दे पर कई पौराणिक चरित्रों की भूमिका में दर्शकों ने उन्हें सराहा। कई अवसरों पर लोग श्रद्धा में भरकर उनके चरण तक छू लिया करते थे। महिपाल हमारे भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।

0: तड़पता।
1: हृदय गति रुक जाने से मुंबई में अभिनेता महिपाल का निधन हो गया। उनकी फिल्में भारतीय सिनेमा की अनमोल धरोहर है।

0: जाओ कहीं भी सनम, तुझे इतनी पसंद, हमें याद रखना
1: तेरी दुनिया।
2: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म अभिनेता महिपाल पर। विविध भारती की ओर से यह कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती का प्रसारण हमारे मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रजनीगंधा सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है।

और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तर तर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: करिश्मा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी को मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अब से कुछ ही पलों में।
1: तथा FM 102.5 MHz पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप क्रमशः हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को